0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम करुणा जी के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको करुणा जी।
2: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। बोभा सराजिल का नया मेयर MMM के लुई ऑन्द्रे टूसें बने हैं। उन्होंने गैब्रिएला बाटू की जगह ली है। रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव की जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर बने रहेंगी। गंगा तालाब में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल है। गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशस नागरिकों के रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगले 2 वर्षों में 50 द्विभाषी मॉरिशस नागरिकों की भर्ती की जाएगी। और विदेश में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना तेज कर दिया है।

0: देश में ऊंची लहर की चेतावनी जारी है, जो कि सोमवार 25 मई को सुबह 4 बजे तक लागू रहेगी। मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवा पाई जाएगी। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और दिन के दौरान हल्की बारिश होगी, खासकर ऊंचाइयों और दक्षिण में। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा, खासकर रात के दौरान। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं। उच्च ज्वार के समय लहरें जो हैं पश्चिम एवं दक्षिणी इलाके में तटों से भी टकरा सकती हैं, इसलिए मछेरों, मनोरंजन नौकाओं तथा आम जनता से अपील की जाती है, ज़ोरदार अपील की जाती है कि वे लोग उच्च ज्वार के समय इन तटों पर न जाए। आज के लिए सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त होगा 5:38 पर।
1: NBC Radio.TV. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: नमस्कार, सुप्रभात। सुबह की ये बेला आप लोगों के लिए मंगलमय रहे। 6:04 हुए हैं और रेडियो मॉरिशस पर हमारा आपका साथ है और आप लोगों के लिए बस दिल में यही प्रार्थनाएं हैं कि आप लोगों का जीवन बहुत ही सफल रहे, आप लोगों का हर पल खुशियों से भरा रहे और सुबह की ये बेला शांतिमय हो आपके लिए, ताकि आज का दिन आप बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही सफलता के साथ गुजारें। सुबह की इस बेला में चलिए जरा हम सुनते हैं सर्वप्रथम आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम। और आज का ये कार्यक्रम आप सुनिएगा आर्य सभा मॉरिशस की पंडिता चमन जी से।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
3: ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अभक्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आर्य सभा की ओर से वैदिक वाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पठित मंत्र ऋग्वेद के 9वें मंडल सूक्त 63 का 5वां मंत्र है। इस मंत्र का ऋषि निध्रुवी कश्यप है, देवता पवमान सोम और छंद विराद गायत्री है। श्रोतागण, आइए मंत्र के शब्दार्थ एवं व्याख्या पर विचार करते हैं। हे अप्तुरह, सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, इंद्रम परमेश्वर्यशालियों को वर्धन्तः बढ़ाते हुए, अरावणः पापियों का अभग्नन्तः नाश करते हुए, विश्वम संपूर्ण संसार को आर्यम आर्य कृण्वन्तः बनाओ। व्याख्या, जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, तपस्वी हैं, उन्हें चाहिए कि वेद के आदेशों का

पालन कर सदा आगे बढ़ते और ऊपर उठते रहें। उन्हें चाहिए कि वे संसार के लोगों में उस जगत सम्राट जगदीश्वर के प्रति विश्वास पैदा करें, श्रद्धा उत्पन्न करें, निष्ठा उत्पन्न करें। इसके परिणाम में वे पुरुषार्थी बनकर पुरुषार्थ करने पर जो प्रभु कृपा से उपलब्ध होगा उस पर वे संतोष करेंगे और त्यागपूर्वक उपभोग करेंगे। जो ज्ञानी तपस्वी महापुरुष हैं वे सब लोगों को कर्मठ बनाएं, उद्यमी बनाएं, सतत सत्कर्मों में उन्हें प्रेरित करते रहें। यदि समाज और राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो अच्छे और कर्मठ लोगों की संख्या को बढ़ाएं। मानव के उत्थान में कर्मठता का बड़ा महत्व है क्योंकि इसी से राष्ट्र में उत्पादन बढ़ता है। इससे जहाँ राष्ट्र एवं संसार समृद्ध होता है वहाँ व्यक्ति भी समृद्ध और सुखी होता है और इससे व्यक्ति बुराइयों से बच जाता है। ज्ञानी तपस्वी बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि वे विश्व को आर्य बनाने का, श्रेष्ठ भद्र बनाने का संकल्प लेकर इस कार्य में जुट जाएं। यदि सब आर्य श्रेष्ठ होंगे तो विचार शुद्ध पवित्र होंगे, आहार और व्यवहार भी शुद्ध होंगे। सबके विचार व्यवहार एक दूसरे के प्रति शुद्ध पवित्र छल कपट रहित होंगे तो संसार में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जब तक संसार वैदिक शिक्षाओं को अपने आचरण में लाकर आर्य नहीं बनता तब तक संसार से ईर्ष्या द्वेष अशांति का विनाश कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। श्रोतागण, ये संपूर्ण संकीर्णताएं उदात्त उपदेश निर्मल ज्ञान और उदारता से समाप्त हो सकती हैं। यदि हम अपनी चिंतन शक्ति को किसी मत की चार दीवारी में बंद कर देते हैं तो हमारी दशा में और एक कुएं के मेंढक की दशा में कोई अंतर नहीं होता। कूप मंडूक की वृत्ति को दर्शाने के लिए लोक में रोचक चुटकुला प्रचलित है। एक तालाब का मेंढक कूदता कूदता एक कुएं में गिर गया। वहाँ रहने वाले मेंढकों ने उसका स्वागत करते हुए पूछा, आप कहाँ रहते थे? वह जलाशय कितना बड़ा था? तालाब से आए मेंढक ने कहा, वह तो बहुत बड़ा था। उस पर अपना बड़ाई करते हुए अपने जगह को इतना विशाल बताया कि संसार में ऐसा जलाशय है ही नहीं। यही हाल है वेद के अनुसार न चलने वाली का। खुद को श्रेष्ठ मानकर जो सत्य धर्म है, जो सच्चे लोग हैं उनका अपमान करने में अपना कीमती समय नष्ट कर पाप के वशीभूत हो जाते हैं। वेद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मनुष्य को उसका सर्वप्रथम उपदेश यह है कि वह विचार पूर्वक अपने और संसार के कल्याण के मार्ग पर चलें। इस मंत्र में आर्य बनने के लिए कहा गया है। आर्य श्रेष्ठ मनुष्य को कहते हैं, आर्य ईश्वर के पुत्र को कहते हैं। वह पिता का अनुव्रती होकर प्राणी मात्र के हित का ध्यान रखता है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते हैं। ऋग्वेद में आया है, अहम भूमि मद दाम आर्याय, मैं यह पृथ्वी आर्यों को देता हूँ। आर्यों के राज्य की झलक रामायण में देखने को मिलती है। सूची नाम मेक बुद्धि नाम सर्वेशाम संप्रजान नताम नासित पूरे वा राष्ट्रे वा ब्रेपावादी नरह क्वचित। अर्थात सभी लोग मन वचन और कर्म से पवित्र थे, परस्पर सबका एकमत्य था, सभी ज्ञानी थे। संपूर्ण अयोध्या और समस्त राष्ट्र में कोई मनुष्य

0: झूठ बोलने वाला नहीं था। यह आर्य राज्य का छोटा सा चित्रण है। श्रोतागण, आर्यों की उदात आदर्शवादिता को ध्यान में रखकर ही वेद ने कहा, कृण्वन्तु विश्वमार्यम्, संसार को आर्य बनाओ। प्रश्न है कि आर्य बनाने का उपाय क्या है तथा आर्य कौन होता है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मंत्र के पूर्व भाग और उत्तर भाग में दे दिए गए हैं। मंत्र में पहली बात कही गई है, इंद्रम वर्धन्तः, इंद्र गुण विशिष्ट व्यक्तियों का संरक्षण करो, उनको बढ़ाओ। और अरावनः अभग्नन्तः, कृपण अदानी अनुदार ईर्ष्यालु और स्वार्थियों का सर्वदा उच्छेद करो। श्रोतागण, जो इंद्र हैं वे आर्य हैं और जो अदानी आदि दुर्गुण युक्त हैं वो दस्यु हैं, अनार्य हैं। संसार में शांति के साम्राज्य के लिए आर्यों की वृद्धि होनी चाहिए और दस्युओं का विनाश होना चाहिए। इंद्र शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार इदि धातु से, जिसका अर्थ परमेश्वर्य है, यह शब्द बना है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ हुआ परम ऐश्वर्य युक्त। इंद्र को बढ़ाने का अर्थ भी यही हुआ कि परमेश्वर्यशालियों को बढ़ाओ। सांसारिक धन धान्य को परमेश्वर्य नहीं कह सकते, उसका स्थान सबसे पीछे है। इस शब्द का मुख्यार्थ यहाँ आत्मज्ञानी है। श्रोतागण, ज्ञानी जन यह कह सकते हैं कि अपने ज्ञान द्वारा विचार में समानता उत्पन्न करके उच्चारों आचारों में समानता ला दें, किंतु अज्ञानियों के विचारों में एकता नहीं हो सकती। ऋग्वेद के संगठन सूक्त में आया है, संवो मनांसी जानताम, तुम ज्ञानियों के मन एक समान हो। उच्चार और आचार का मूल विचार है, क्योंकि जो कुछ मन में होता है वही वाणी पर आता है और जो वाणी से बोला जाता है वही कर्म में परिणत होता है। आर्य उसको कहते हैं जिसके कठनी और करनी में अंतर नहीं होता है। वेद माता ने आज्ञा दी कि संसार में ज्ञान विज्ञान के विस्तार के लिए अपने समार्जित द्रव्य को बांटकर खाने के लिए और भ्रातृभाव की स्थापना के लिए संसार को आर्य बनाना चाहिए। अरावनः अपग्नन्तः, अदानी कृपण कंजूस को हटाते हुए आगे बढ़ते हुए उन्नत समाज की उन्नति के लिए विश्व को आर्य अर्थात भद्र बनाओ, यही इस मंत्र का सार है। आइए इस मंत्र को पुनः सुनते हैं। ओम इंद्रं वर्तन्तो अप्तुरः, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, अभग्नन्तो अरावनः। ओम शांति शांति शांति। ध्यान के लिए धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी,
2: और आज आप सुन रहे थे पंडिता सत्यम चमन जी को।

इस समय 6:16 हुए हैं और भाव गीतों का ये सफर है। भाव जो हमने वैदिक वाणी में सुना, उन भावों को अपने अंदर तो हम समाए रखेंगे और जीवन की इन धाराओं को हम आगे बढ़ाते रखेंगे।

0: MBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: इस समय 6:21 हुए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से सुनिएगा कुछ विज्ञप्तियाँ। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉरेस्ट साइड के निवासियों को सूचित करता है कि आज रविवार 24 मई को मोसेलमा ओंतेम, मोसेलमा देवायन, मोसेलमा मुनियन, मोसेलमा मुराबी, मोसेलमा ओसेनी, कॉम बम्बई, मोसेल

मपियात के एक भाग में, कॉलेजीज के एक भाग में, डेबी स्ट्रीट के एक भाग में, रेजिडेंस सैन लुक, रेजिडेंस बोग, रेजिडेंस ला ब्रासरी, रेजिडेंस ला कोलंब, रेजिडेंस जासमिन, रेजिडेंस आतली और आसपास के इलाकों में आज 24 मई को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाक्वा के निवासियों को सूचित करता है कि मोसेलमॉ वीआरएस कॉम मापू ओरिएटा में और आसपास की गलियों में आज रविवार 24 मई को सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर सीबी उत्तर इलाकों में के निवासियों को सूचित करता है, उत्तर इलाकों के निवासियों को सूचित करता है कि ला शामोज, सी डब्ल्यू आ रुया, एस्पास मेजों, सर्कल स्क्वायर में आज रविवार 24 मई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में, वाक्वा में, फोरसाइड और नोफ के इन इलाकों में भी, में बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है, उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सुबह के 6:23 हुए हैं और भाव भरे गानों का प्रोग्राम हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए 6:30 बजे तक। बस यही उम्मीद रखते हैं कि जीवन में जो चुनौतियां आएंगी आप उनका स्वागत करेंगे। हाँ जी, इन चुनौतियों का स्वागत कीजिएगा। चुनौतियों का आना हम रोक नहीं सकते, उनसे घबरा कर कुछ हासिल कर नहीं सकते। जो पा सकते हैं वो है जीत, अगर हम चुनौतियों का सामना करने की ठान लें। तो चलिए, जीवन के ये दिन जो हैं आपके लिए बहुत मंगलमय हो, जीवन के ये दिन आपके लिए बहुत बड़े हो, बस उनको बड़ा बनाने की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसी गाने के साथ 6:30 बजेंगे और 6:30 बजे आप सुन पाएंगे आज का समाचार बुलेटिन करुणा से।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: नमस्कार। 6:30 हैं, पेश है समाचार बुलेटिन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बोबासा रोजहिल का नया मेयर एमएमएम के लुई ऑन्द्रे टुसें, उन्होंने गैब्रियल बाटू की जगह ली। गंगा तालाब में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए, इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेने का भी प्रस्ताव। गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशस नागरिकों के रोजगार को बढ़ावा दे रहा, खासकर फ्रांकोफोनी मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगले 2 वर्षों में 50 द्विभाषी मॉरिशस नागरिकों की भर्ती। और विदेश में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना तेज कर दिया। और अब समाचार विस्तार से। बोबासा रोजहिल को नया मेयर मिल गया है। एमएमएम के लुई ऑन्द्रे टुसें को शनिवार दोपहर नगर परिषद की विशेष बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के तहत चुना गया। उन्होंने गैब्रियला बाटू की जगह ली है। रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव की जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर बनी रहेंगी। सिते बॉकली के निवासी लुई ऑन्द्रे टुसें इससे पहले 2012 में भी मेयर रह चुकी हैं। आस्था गोबिंद।
2: कई वर्षों बाद नगरपालिका राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा फिर से बोबासा

पजल की कमान संभाल रहा है। लुई टुसें ओंद्रे एक दशक से अधिक समय बाद दोबारा मेयर बनी हैं। सीते बॉकली से आने वाले लुई टुसें ओंद्रे खुद को जमीनी नेता मानते हैं और उनका कहना है कि वे लोगों की बात सुनने, सादगी बनाए रखने और काम पर ध्यान देने को प्राथमिकता देंगी। तीन बच्चों के पिता और चार पोते पोतियों के दादा लुई टुसें ओंद्रे लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि

0: Grand, grand projet, Valérie Dizou, mais il y a beaucoup de travail à faire. C'est tout le monde qui est allé là dans le discours. Il y a problème de chikungunya, beaucoup de problèmes. Et nous vous avons bien sûr l'aide de nos citadins, nous vous avons l'aide de nos habitants de la ville pour capable améliorer la situation.
1: बौकली इलाके में उनकी पहचान लोगों के करीब रहने वाले नेता के रूप में रही है। अपने दूसरे कार्यकाल को लेकर लुई टुसैं ओंद्रे का कहना है कि वे बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहते, बल्कि व्यवहारिक और जरूरी कामों पर ध्यान देंगी। उनकी प्राथमिकताओं में सार्वजनिक स्थलों को बेहतर बनाना, सांस्कृतिक गतिविधियों को फिर से सक्रिय करना और नगर पालिका की हॉटलाइन सेवा को अधिक प्रभावी बनाना शामिल है।
2: तो आपको बताते चले कि सोमवार को काठरबोन में दिन के 1 बजे, पोर्ट ट्विस में शाम 5 बजे, बाकवा फिनिक्स में शाम 5 बजे और क्यूपिप में 5:30 बजे चुनाव होंगे, नगर पालिका चुनाव। गंगा तलाव और कौटोगल की घटनाओं पर शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकील कविराज बकोरी ने शनिवार को कला एवं संस्कृति मंत्री महेन गुनिया से मुलाकात की। इस बैठक में गंगा तालाब में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए। इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल है। कविराज बकोड़ी के अनुसार इस व्यवस्था को किसी संस्था के सहयोग से संचालित किया जा सकता है ताकि स्थल का बेहतर प्रबंधन और संरक्षण हो सके। निर्मा नारायण रेड्डी ने उनसे बात की, विवरण आस्था गोबिंद का है।
1: हमने मंत्री महेन गुनिया के साथ मिलकर छोटे और लंबे अरसे वाली मांगों पर बात की है। प्रवेश पर SMF की मौजूदगी, ज्यादा निगरानी के लिए, गंगा तालाब की पवित्रता को बनाए रखने पर जोर दिया गया। हमने ये भी मांग की कि पर्यटकों के लिए गंगा तालाब के प्रवेश पर शुल्क लगाया जाए। इसका संचालन एक संगठन द्वारा किया जाएगा।
2: शुक्रवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई वक्ताओं ने शांति, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की अपील की। कविराज बकोड़ी ने सामाजिक सद्भाव और देश की शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से विभाजन और उकसावे से बचने की अपील की और कहा कि मॉरिशस की एकता और साथ मिलकर रहने की भावना को मजबूत करना सबकी जिम्मेदारी है। एक बार फिर से उनको सुनते हैं, विवरण आस्था गोबिंद का।
1: गंगा तालाब की पवित्रता, वहाँ का शांत वातावरण और हमारे बहु सांस्कृतिक तथा बहु धार्मिक देश में आपसी सम्मान और सहिष्णुता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाल की घटना और उससे उठे विवाद के बाद हम यही कहना चाहते हैं कि गंगा तालाब एक पूजा स्थल है, एक आस्था का स्थान है। ये स्थल नेशनल हेरिटेज फंड के अंतर्गत आता है और कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। हर सोमवार को हमारी युवा टीम वहाँ पर जाती है पूजा आराधना के लिए और हमारी यही अपील है कि जो भी पर्यटक या आगंतुक गंगा तालाब आए, वे इस पवित्र स्थल और वहाँ की धार्मिक भावना का सम्मान करें।
2: मॉरिशस में मराठी समुदाय के प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की मांग पर किया गया। संघ के मुख्य पंडित शांताराम राजू के अनुसार हिंदू पंचांग से परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। हालांकि 16 सितंबर की तारीख पहले ही सरकार की 2026 की आधिकारिक छुट्टियों की सूची में शामिल की जा चुकी थी, इसलिए अब आधिकारिक संशोधन किया जाएगा। मॉरिशस मराठी महामंडल के मुख्य पुरोहित शांताराम राजू को सुनते हैं।
3: मॉरिशस मराठी महामंडली के अध्यक्ष, पुरोहितों और सब मंदिरों के प्रतिनिधि के बैठक लगाने के बाद और हमारी मराठी पंचांग परामर्श करने के बाद मॉरिशस मराठी महामंडल ने इस साल गणेश चतुर्थी का विसर्जन दिन यानी सार्वजनिक छुट्टी यानी पब्लिक हॉलीडे बुधवार 16 सितंबर के बजाय मंगलवार 15 सितंबर को होना चाहिए, क्योंकि हम विसर्जन पंचमी तिथि में करते हैं और पंचमी तिथि मंगलवार ही को सुबह 6:15 पर शुरू हो रहा है। गणेश पूजा तिथि यानी चतुर्थी

0: तिथि सोमवार 14 सितंबर को सुबह 5:36 पर शुरू हो रहा है यानी सैकेतांशिस, और मंगलवार सुबह 15 सितंबर को 6:14 पर समाप्त हो रहा है, और पूजा गणेश पूजा तिथि में करना चाहिए।
1: रिफोम पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई, खाद्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी श्रमिकों की स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। पार्टी के महासचिव रियाद सुबराटी ने बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त की, जो उनके अनुसार कई मौर्शन परिवारों को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी कामगारों के बेहतर नियमन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने, विवरण आस्था गुमिन का।
2: Sa produit là fin vendé hier au Lankan, dans une moyenne de 70 roupies kilo.
3: होलसेल में 17 रुपए किलो में मिलने वाला वही सामान सुपरमार्केट में 240 रुपए में बिक रहा है। लोग अब कानून और अधिकारियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, पुलिस का भी डर कम होता जा रहा है। इसी वजह से रोड रेज जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आपकी गलती ना भी हो तब भी आपको मारपीट का सामना करना पड़ सकता है। लोगों में सहनशीलता कम होती जा रही है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे युवा कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कई युवा काम नहीं करना चाहती, बहुत से युवा विदेश चले जा रहे हैं और बहुत सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि मॉरिशस में आखिर कितने युवा नशे की गिरफ्त में हैं।
1: श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशस नागरिकों के रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के जरिए। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगले 2 वर्षों में 50 द्विभाषी मॉरिशस नागरिकों की भर्ती की जाएगी। निर्माण, शिक्षा, होटल, उद्योग प्रमुख क्षेत्र होंगे। इस निर्णय को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी भी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य कनाडा में फ्रेंच भाषी प्रवासन को मजबूत करना है। श्रम मंत्री रेजा उतिम के अनुसार ये पहल मॉरिशस नागरिकों को फर्जी नौकरियों से बचाने में मदद करेगी। उनसे बात की राजमिला सीतामुनि ने, विवरण आस्था गोविंद का।
3: कनाडा के साथ एक साझेदारी कायम की गई है। शुरुआती स्तर पर मैनुअल वर्कर्स की भर्ती की जाएगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आदि कामों के लिए मंत्रालय के जरिए ये भर्ती की जाएगी। ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि कनाडा में इन लोगों को अच्छी नौकरियां मिले और वहां उनके क्वालिफिकेशन को पहचाना जाए। ये नौकरी मिलने का एक सुरक्षित तरीका है।
1: सर्दी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन ठंड के साथ साथ श्वसन संक्रमण के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 11 से 17 मई के बीच 4,174 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि उससे पहले वाले सप्ताह में इस संख्या लगभग 3,750 थी। डॉक्टर फाजिल कोडाबोकस के अनुसार तापमान में गिरावट और मौसमी वायरसों के प्रकार के कारण आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फ्लू होने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति दोबारा संक्रमित नहीं होगा, क्योंकि इस समय कई प्रकार के वायरस फैल रहे हैं। उनसे बात की जीनी ये लापा ने, विवरण रजनी बीकर का।
4: डॉक्टर फाजिल कोडाबकस ने कहा, सर्दी जुकाम के कई वायरस हैं, H1N1, H3N2। अगर किसी व्यक्ति ने एक वायरस से बचाव कर लिया है, टीका लगवाया है, संभवतः एक अन्य वायरस से प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं। जब सर्दी हो जाती है तो टीका नहीं लगवाया जा सकता। एक दो सप्ताह बाद जब स्वस्थ हो जाए तब वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जब उसके डॉक्टर ने कहा कि वो टीका लगवा सकता है तब ऐसा कर सकता है। इससे व्यक्ति अन्य वायरस से सुरक्षित रहेगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि चिकनगुनिया के मामले भी फैल रहे हैं। अतः अगर किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया है, सर्दी है, तो अच्छा नहीं है। इन दोनों बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं, परेशानियां भी हो सकती हैं। अतः सर्दी जुकाम से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए, तो इससे हमें मदद मिलेगी।
1: तो विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लू और मौसमी संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय।

0: उपायों में से एक हैं। हालांकि टीका बीमारी होने से पहले लगवाना चाहिए, न कि लक्षण आने के बाद। इसके साथ ही अच्छी जीवन शैली, पर्याप्त नींद, नियमित पानी पीना और संतुलित आहार भी सर्दियों में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। सर्दी में स्वस्थ रहने के लिए उचित खान पान आवश्यक है। विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, जैसा कि न्यूट्रिशनिस्ट वंदना गजाधर हमें बता रही हैं। विवरण रजनी बिकर का।
1: Quand nous mangeons bien équilibré et varié avec beaucoup de fruits et de légumes de différentes couleurs avec
2: न्यूट्रिशनिस्ट वंदना गजाधर ने कहा, जब हम ठीक से खाते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, अलग अलग रंग के फल एवं सब्जियां खाते हैं, तो प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का भी सेवन करते हैं, तो इन सब से हमें विटामिन सी, जिंक आदि प्राप्त होता है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, इससे भारी संख्या में और अच्छी किस्म के इम्यून सेल्स कायम होते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि नींद बहुत जरूरी है। इससे हम आराम करते हैं, हमारे शरीर को आराम मिलता है, सेल्स भी फिर से मजबूत होते हैं। इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मदद मिलती है। इसके अलावा व्यायाम से भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अतः संतुलित भोजन करना, अच्छी तरह से सोना और व्यायाम करना आवश्यक है।
0: विदेशी स्तर पर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना तेज कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रणनीति काफी हद तक वैसी दिख रही है जिसे अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अपनाया था। हालांकि जानकार मानते हैं कि क्यूबा का मामला वेनेजुएला से कहीं ज्यादा जटिल, जोखिम भरा और महंगा साबित हो सकता है। और लगभग 3 महीने से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में प्रगति के संकेत मिले हैं। ईरान अमेरिका और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और अगले कुछ दिन बेहद अहम हो सकते हैं। इसके साथ ही दोनों देश युद्ध विराम को 60 दिन तक बढ़ाने पर भी सहमत नजर आ रहे हैं। भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उम्मीद जताई कि आज नहीं तो कल ईरान समझौता स्वीकार कर लेगा। रूबियो ने कहा कि कूटनीतिक प्रयास जारी हैं और अच्छी खबर मिलने की जल्दी उम्मीद है। मौसम की रिपोर्ट। देश में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है सोमवार 25 मई को सुबह 4 बजे तक। मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवा पाई जाएगी। अनुमान है कि सुबह के वक्त आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे दिन के दौरान भी और हल्की बारिश हो सकती है, खासकर ऊंचाइयों एवं दक्षिण में। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं और उच्च ज्वार के समय पश्चिमी एवं दक्षिणी निचले तटों पर भी लहरें टकरा सकती हैं। इसलिए मच्छरों, मनोरंजन नौकाओं और आम जनता से जोरदार अपील की जाती है कि वे लोग उच्च ज्वार के समय इन तटों पर न जाएं। आज सूर्योदय हुआ 6:35 पर, सूर्यास्त होगा 5:38 पर।

खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। बोबा से रोजिल का नया मेयर एमएमएम के लुई और टूसे बने, उन्होंने गैब्रिएला बाटो की जगह।

0: चली। गंगा तालाब में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए। इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल। गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशस नागरिकों के रोजगार को बढ़ावा दे रहा, खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के जरिए। विदेश में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना तेज कर दिया। 6:48 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है कारियर के सहयोग से। जुड़े रहे हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: रुद्रवाया ला फ्लोरा में 66 साल के 66-year-old श्री देवानंद जोकुआ जो सुनील से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके मकान रुद्रवाया ला फ्लोरा से उठाकर दाह संस्कार के लिए मारिजाने रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। रॉयल रोड पालमाओ में 62 साल के 62-year-old श्री गीनानाथ बोजुनोत जो जिनाथ भगत से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती रागिनी बोजुनोत के मकान रॉयल रोड पालमाओ से उठाकर दाह संस्कार के लिए मौलाशो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे आट 2 PM। मेजोनेट रोड रिविया डिजाउगी में 80 साल के 80-year-old श्री सुबाया जुगनादन जो रामदास से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 11 बजे इनके बेटे जेसन जुगनादन के मकान मिजोनेट रोड रिविया डिजाउगी से उठाकर दाह संस्कार के लिए तायाक की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रामदू रोड बुनाकय में 92 साल के 92-year-old श्री दुदिल मुनि शंकर जो रामानंद से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके बेटे बेबे शंकर के मकान रामडू रोड बुनाकय से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुनाकय की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। केवल नगर बेलगीव में 57 साल के 57-year-old श्री धर्मराज भगीरथी जो आडू से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान केवल नगर बेलगीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाजिलो ओलिविया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। एरोस्लेन प्लेंडे पपाई में 47 साल के 47-year-old श्री सुरेंद्र भिकारी जो अजय से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 इनके मकान एगोस्लेन प्लेंडे पापाई से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लेंडे पापाई की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टू डेथ ऑफ पर्स 10 AM। नंबर 25 ओकिले स्ट्रीट बोवालो में बर्ग में 81 साल के 81-year-old श्री फाजले हक जगेसर जो फाजलिन से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इसे फिर से सुन लीजिए। नंबर 25 ओकिडे स्ट्रीट बोवालो में बर्ग में 81 साल की 81-year-old जनाब फाजले हक जागेसर जो फाजलिन से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन

कि 10 बजे इनकी बेटी नूरबी उगबाली के मकान नंबर 25 ओकीडे स्ट्रीट बोवालो में बर्ग से निकालकर दफनाने के लिए पॉइंट बोक्यूस रिवियर डी क्रियोल का कब्रिस्तान जा जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गेंट्स हिल इलफोर्ड इंग्लैंड में 57 साल की 57-year-old श्री राजीव कुमार गोपुल। श्री राजीव कुमार गोपुल जो राजीव से जाने जाते थे और पहले HSBC के मैनेजर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं बुधवार 27 मई को सपहर 3:30 बजे इनके मकान नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गेंट्स हिल इलफोर्ड से उठाकर दाह संस्कार के लिए फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड में ही इंग्लैंड की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 3:30 PM। मोरेल रोड रिवियर जुरापा में 71 साल की 71-year-old श्रीमती सुजावंती लोबिन। श्रीमती सुजावंती लोबिन पैदाइश नाम जगू जो सुजिया से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान मोहल गौर गिव्या जुगापा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जाएगी। अतिरिक्त सूचना जो है समय बल्कि स्मशान भूमि बाद में सूचित किया जाएगा। शिवाला रोड मोगू में 74 साल की 74-year-old श्रीमती लक्ष्मी बेचू। श्रीमती लक्ष्मी बाचू। श्रीमती लक्ष्मी बाचू पैदाश नाम रामलगन जो इंद्रानी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 3:00 बजे इनके बेटे धीरज बाचू के मकान शिवाला रोड मोगू से पॉम्पलेमुस से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोगू पॉम्पलेमुस की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और हनुमान रोड रिश्मा में 88 साल की 81-year-old श्रीमती सावित्री दोमन। श्रीमती सावित्री दोमन जो सावित्री से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 3:00 बजे इनके मकान हनुमान रोड रिश्मा से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 6:56 हुए हैं।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। आज रविवार को यूरोप भर में विभिन्न चैंपियनशिप के आखिरी मैच आखिरी सप्ताह खेले जाएंगे, खासतौर पे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जहां एक आखिरी स्थान अभी भी दाव पे है, जबकि सारा ध्यान टोटेनहम हॉटस्पर और वेस्ट हैम यूनाइटेड पर भी है। मोहम्मद सलाह लिवरपूल के साथ आज अपना आखिरी मैच खेलेगा। द एजिप्शियन किंग क्या आज खेलेगा नहीं खेलेगा, ये वक्त ही बताएगा। एंडी रॉबर्टसन भी आज अपना आखिरी मैच खेलने वाला है। और इस बीच हल सिटी वापस प्रीमियर लीग में अपना हल ढूंढकर, सो सबसे पहले नतीजे सुनिए। कल चैंपियनशिप के प्रमोशन प्लेऑफ का फाइनल खेला गया। हल सिटी ने एन मौके पे इंजरी टाइम के 5वें मिनट पर जाकर मिडल्सब्रो को 1-0 से हराकर वापस प्रीमियर लीग में अपना टिकट प्राप्त किया। हल सिटी 1, मिडल्सब्रो 0, मैकबर्नी

ने खेल के 95वें 95 मिनट पर वेम्बले स्टेडियम को हिला दिया और इस प्रकार हल सिटी वापस, लेकिन कौन जाएगा कौन उतरेगा भी ये आज पता चलेगा वेस्ट हैम यूनाइटेड और टोटनहम हॉटस्पर के बीच। हल सिटी 1 मिडलसब्रो 0, हल सिटी को हार्दिक बधाई। स्कॉटिश कप में सेल्टिक की फिर जीत हुई, सेल्टिक ने कल डनफर्मलाइन को 3-1 से परास्त किया, यानी एक स्कॉटिश प्रीमियरशिप जीतने के बाद सेल्टिक ने अपना डबल पूरा किया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल मेक्सिको ने वर्ल्ड कप की तैयारी के रूप में गाना को 2-0 से परास्त किया। स्पेन के लालीगा में बस एक मैच आज के लिए रखा गया है, बाकी सभी मैच कल रात खेले गए। चैंपियन बार्सिलोना की हार हुई, वेलेंशिया ने उसे 3-1 से परास्त किया। बार्सिलोना के लिए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का एक गोल पर्याप्त नहीं रहा, गावी गेरा, लुइस रोया और रोड्रिगेज का एक एक गोल वेलेंशिया की ओर से। इस बीच रियल मैड्रिड की भी जीत हुई 4-2 से अपने होम मैदान पे। एथलेटिको को रियल मैड्रिड ने हराया 4-2 से। और गोंजालो गार्सिया के बाद जूड बेलिंगम, किलियान एम्बापे, ब्राहिम दियाज ने भी आखिरी कील ठोंकी। रियल मैड्रिड 4, एथलेटिक 2। बाकी मैचों में कल बेटिस की भी जीत हुई 2-1 से लेवांते के विरुद्ध। मलोका 3, ओविएदो 0, जिरोना 1, एल्चे 1, गेटाफे 1, ओसासुना 0, एस्पान्योल 1, रियल सोसिएदाद 1 और सेल्टा विगो 1, सेविलिया 0। तो अलावेस की हार हुई, अलावेस 1, रेयो वालेकानो 2। जर्मनी के जर्मन कप में डीएफबी पोकल के फाइनल में कल बायर्न म्यूनिख ने स्टुटगार्ट को 3-0 से परास्त कर ये कप जीत लिया। 2019 के बाद पहली बार बायर्न म्यूनिख ने ये कप जीता है, एक डबल पूरा किया बुंडेसलीगा जीतने के बाद। और ये तीनों ही गोल कल हैरी केन ने स्कोर किए 55वें 80वें और 92वें 92nd मिनट पर जाकर। हैरी केन 3, स्टुटगार्ट 0। बंदा कमाल कर रहा है, यानी हैरी केन ने यहाँ पर आकर पिछले 3 वर्षों में सब कुछ जीता है, उसको भी हार्दिक बधाई। इतनी के सीरिया में इंटर मिलान, चैंपियन टीम इंटर मिलान ने एवे जाकर बोलोनिया के साथ मैच ड्रॉ किया 3-3। एसएस लाजियो 2, पिज़ा 1। सो इतना सब कुछ कल के खेले गए मैचों को लेकर। बात करें अब आज के मैचों की। आज आखिरी सप्ताह है, 38वां सप्ताह, 38th वीक इंग्लिश प्रीमियर लीग में। सबसे पहले बता दें कि आर्सेनल चैंपियन बन चुका है, आज वो एवे जाकर अपनी चैंपियनशिप, अपना टाइटल सेलिब्रेट करेगा। आर्सेनल 82 पॉइंट्स, मैनचेस्टर सिटी के पास 78, मैनचेस्टर यूनाइटेड तीसरे स्थान पर 68। ये तीनों जगह पक्की है क्योंकि 3 टीमें पहुंच चुकी हैं। एस्टन विला भी यूरोपियन चैंपियंस लीग में पहुंच गया है, 62 अंक लिए 62। लिवरपूल के पास 59, लेकिन एस्टन विला की हार और लिवरपूल की जीत की स्थिति में द विलेंस 5वें स्थान पर पहुंच जाएंगे, लिवरपूल 4थे स्थान पर। और ऐसी स्थिति में यदि एस्टन विला 5वें स्थान पर पहुंचा तो बोर्नमुथ की जीत की स्थिति में वो भी यूरोपियन चैंपियंस लीग में जा सकता है। यानी कि बहुत सारे इधर उधर की बातें हैं। सो इस बार पहली बार के लिए इंग्लैंड से 6 टीमें क्वालिफाइड हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे गणित, मैथमेटिक्स की आवश्यकता है। सो फिलहाल बढ़ते हैं आज के फिक्स्चर्स की ओर। रात 7 बजे सभी के सभी मैच खेले जाएंगे, ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, बर्नली का मुकाबला वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स से, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस आर्सेनल। सो पैलेस के सेलहर्स्ट पार्क में जाकर आज 22 साल बाद आर्सेनल ये ट्रॉफी, ये प्रीमियर लीग ट्रॉफी उठाएगा। द गनर्स को हार्दिक बधाई। फुलहम वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड, लिवरपूल एनफील्ड में खेलेगा ब्रेंटफोर्ड के विरुद्ध, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एस्टन विला। खासतौर पे द विलेंस के लिए ये मैच बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उनको अपना 4था स्थान बरकरार रखना है, लेकिन 5वें स्थान की स्थिति में भी वो तो जाएगा ही जाएगा यूरोपियन चैंपियंस लीग में। लिवरपूल 4थे स्थान पर पहुंच सकता है यदि उसने ब्रेंटफोर्ड को हराया और एस्टन विला हार गया तो। बता दें कि पेप गार्डियोला का भी आज आखिरी मैच है मैनचेस्टर सिटी के साथ 10 साल यहां बिताने के बाद। नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस बोर्नमुथ, सन्डरलैंड का मुकाबला चेल्सी से,
टोटेनहम हॉटस्पर वर्सेस एवर्टन, ये बड़ा

मायना रखता है स्पर्स के लिए। अभी वे दो अंक आगे हैं वेस्ट हैम के साथ, वेस्ट हैम अभी दो अंक पीछे हैं। वेस्ट हैम का मुकाबला आज लीड्स यूनाइटेड से, बहुत कुछ हो सकता है स्पर्स की जीत की स्थिति में, या एक अंक उसको मिलेगा तब भी वो क्वालिफाइड वो बरकरार रहेगा। लेकिन वेस्ट हैम जीत गया और टोटेनहम हार गया, तो टोटेनहम आउट, वेस्ट हैम यूनाइटेड इन प्रीमियर लीग में। लीग वन के प्रमोशन प्लेऑफ में भी कल आज एक मैच खेला जाएगा, फाइनल बोल्टन वर्सेस स्टॉकपोर्ट। सो प्रीमियर लीग में बहुत सारे मैच आज खेले जाएंगे और रात 7 बजे एक से बढ़कर एक मुकाबले कल सुबह इसी समय आपको हम देंगे अधिक जानकारी और अधिक नतीजे। बता दें कि फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में जॉर्ज रसेल ने पोल पोजिशन हासिल किया और उसने एंटोनेली को एन मौके पे कल हरा दिया। सो आज जॉर्ज रसेल ही पोल पोजिशन से ये कैनेडियन ग्रां प्री शुरू करेगा। एंटोनेली फिलहाल उससे 18 अंक आगे है जनरल रैंकिंग में, रसेल दूसरे स्थान पर, लेक्लेयर तीसरे स्थान पर है, नोरिस चौथे और हैमिल्टन अभी 5वें स्थान पर है। बात करें अब क्रिकेट की, क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग में अभी भी मैच जारी है। कल जो मैच खेले गए, एक मैच कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स से है ईडन गार्डन्स में, आज ही मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से, ये दो मैच आज शाम खेले जाएंगे। कल जो मात्र मैच खेला गया उसमें पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से परास्त किया। सो इतना सब कुछ फुटबॉल और क्रिकेट को लेकर, स्थानीय तौर पर भी बहुत कुछ हो रहा है और टेनिस में भी। आप सुनते रहिए, आज से टेनिस में रोलां गारोस फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता आरंभ हो रही है। 15 मिनटों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 15% का प्राइज मनी, इन सब को लेकर क्या ये एक वन हॉर्स रेस है फ्रेंच ओपन, क्या यानिक सिन्हा को कोई रोक पाएगा लड़कों में और अरीना सबलेंका वर्ल्ड नंबर 1 लड़कियों में। सुनते रहिए और देखते रहिए सुबह के 7:05 और 5 सेकंड। विकास रामधेनी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: À l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir la chance des grands gagnants pour remporter des tickets chacun pour un helicopter joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé votre compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play avec vous partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
2: Dil ki bahar, subah ka nazrana, Radio Mauritius par.
3: नमस्कार। एक बार फिर अगर आपने अभी अभी रेडियो ऑन किया हो और हमारी आपकी मुलाकात अभी शुरू हो रही हो तो हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं। सुबह की ये बेला है संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह, और ये सुबह कुछ अलग ही होती है वीकडेज के मुकाबले। आज की सुबह किसी के लिए कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है, किसी के लिए कुछ ज़्यादा रिलैक्स समय लेकर आता है। सो जहाँ भी होंगे आप, जैसे भी होंगे आप, जिस तरह से भी आप अपना ये दिन गुजारना चाहते हो, बस सक्सेसफुल रहे, यही हमारी उम्मीद है। और शांति के साथ आपके दिन की शुरुआत हो, शांति के साथ आपके हर पल में बढ़ोतरी आए, आपके हर पल में सक्सेस आए।

7:07 हुए हैं, सुबह का नजराना है ये, और सुबह के इस नजराने को कबूल कीजिएगा। सुबह का ये नजराना आप लोगों के लिए बहुत प्यारा रहे। चलिए, अगर घूमने फिरने का सिलसिला हो आपके जीवन में आज, तो इस गाने को सुनकर ज़रा आप अपना मूड और भी ताज़ा कर लीजिएगा, अपना मूड और भी प्यारा कर लीजिएगा। ये है आपके लिए चेन्नई एक्सप्रेस। चलिए चढ़ जाते हैं और सैर करना शुरू कर देते हैं आज।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। अपनी भावनाओं को और अपने जीवन को नियंत्रण में रखना आत्मनियंत्रण कहलाता है। क्या हम स्वयं पर नियंत्रण रख पाते हैं या फिर हम दूसरों के वश में होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परिस्थितियों के सामने लाचार हो जाते हैं? आइए विचार करें। एक व्यक्ति ने एक नई गाड़ी खरीदी। वह गाड़ी में बैठा और उसे चलाने लगा। बीच रास्ते पर उसे एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। व्यक्ति ने गाड़ी को रोकना चाहा, परंतु गाड़ी रुकी नहीं क्योंकि उसमें ब्रेक ही नहीं था। परिणाम यह हुआ कि वह गाड़ी सीधे बड़े गड्ढे में जा गिरी। इसी तरह अगर मनुष्य अपनी भावनाओं पर ब्रेक नहीं लगा पाएगा तो वह भी आगे चलकर किसी भारी समस्या में पड़ जाएगा। श्रोताओं, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि दुर्भावनाएं मनुष्य के मन में पनपती रहती हैं। एक नल को यदि खोला जाए तो पानी नीचे की ओर बहता है। उस पानी को ऊपर की ओर ले जाने के लिए हमें पंप लगाना पड़ता है, अर्थात जोड़ लगाना पड़ता है। मनुष्य का मन बुराई की ओर अधिक जाता है। यदि मन को अच्छाई की ओर ले जाना है तो मनुष्य को जोड़ लगाना पड़ेगा। शास्त्र कहता है, मनोविजेता जगतो विजेता। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त करें, उसे नियंत्रण में कैसे रखें। खेल के मैदान में कुछ सीमाएं होती हैं और प्रत्येक खिलाड़ी सीमा के भीतर रहकर खेलने की कोशिश करता है। इसी प्रकार मनुष्य के अपने जीवन में भी कुछ मर्यादाएं होती हैं जिनके भीतर रहकर उसे अपना जीवन व्यतीत करना होता है। एक घर में एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैं आज रात को अपने मित्रों को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे बता दो कि भोजन में क्या तैयार करना है। पति ने कहा, तुम जैसा चाहो वैसा भोजन तैयार कर सकती हो, पर हाँ एक बात है, मेरे मित्र शराब पीना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भले ही मैं शराब नहीं पीता परंतु कम से कम मित्रों को खुश करने के लिए मैं केवल उनके लिए शराब खरीद लाऊं। पत्नी ने आश्चर्य से कहा, हमने तो नियम बनाया था कि हम न शराब पिएंगे और ना ही दूसरों को पिलाएंगे। पति ने कहा, बात तो सही है, पर अगर मैं मित्रों को शराब देकर उन्हें खुश कर दूंगा तो उनके साथ मेरा रिश्ता मजबूत हो जाएगा। पत्नी ने पूछा, क्या किसी को शराब पिलाने से रिश्ता मजबूत होता है या फिर व्यक्ति के अपने अच्छे बर्ताव से रिश्ता बनता है? इस प्रश्न पर पति ने सिर झुका लिया। वह आगे कुछ नहीं कह पाया। श्रोताओं, जीवन में नियंत्रण रखना तभी संभव होता है जब हम अपने नियमों का पालन करने में दृढ़ रहते हैं।

0: क्यों न हम अपने भीतर संकल्प जगाएं कि दुनिया की चाल चाहे जैसी भी हो, पर हम अपने नियमों पर अटल रहेंगे, अपनी भावनाओं पर और अपने जीवन पर हमारा अपना वश होगा, हम वशी बनेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

इस समय 7:18 हुए हैं। हमारा आपका साथ रेडियो मॉर्चेस पर है और अभी आप जो भाव भरी कहानियाँ सुनते हैं, भाव भरी कथाएं और भाव भरे ये संदेश सुनते हैं, इन संदेशों के आधार पर मन आपका बहुत ही शांत रहे ऐसी प्रार्थना ऐसी दुआ करते हैं हम। और सक्सेसफुल होने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो कदम आप उठाने की हिम्मत रखेंगे, यही हमारी उम्मीद रहती है। उम्मीद हमारी यही रहती है कि खुशियां हम बांट पाएँ, खुशियां हम आप तक पहुंचा पाएँ। तो चलिए हम ज़रा आपको डोली सजा के रखना मूवी का ये गाना सुनवाते हैं। MG श्री कुमार अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों का ये गाना है, इसे गुनगुनाते रहिए, सुबह को बहुत ही मिठास से भर दीजिएगा, अपनी सुबह को बहुत ही खुशी के साथ शुरू कीजिएगा।

0: झलकियां।
1: तो इस समय 7:23 हुए हैं। चलिए जरा देखिए आज रात्रि के 12 बजे तक हमारे रेडियो मॉरिशस में कौन कौन से प्रोग्राम होंगे। अभी तो हमारा आपका साथ है सुबह का नजराना शो में, और इसके दौरान आपके लिए अच्छे प्यारे गाने हम पेश कर ही रहे हैं। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुनिएगा, उसके बाद हम लेकर आएंगे पैगाम आपके नाम प्रोग्राम आपके लिए। पैगाम आपके नाम प्रोग्राम में आप अपने अपनों के नाम अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 5251-7005। इस पर आप अभी से ही मैसेजेस भेज सकते हैं। भेज सकते क्या है, अभी हमारे श्रोताओं ने भेजना शुरू कर दिया है। ये हमारे रेगुलर लिसनर्स, हमारे फिडेल ऑडिटर, उनको पता है हमारा प्रोग्राम आप के लिए वो ज़रूर हम पेश करेंगे 9 बजे तक। और ऐसे में आप भी अपने मैसेजेस भेजना शुरू कर सकते हैं। चलिए 9 बजे तक का ये सफ़र हमारा आपका रहेगा, और आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार 9 बजे, जिसके बाद आप सुनिएगा आज का मंगल आचरण कार्यक्रम जिसे लेकर आएंगी वेदिता। फिर 10 बजे संक्षिप्त समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज का उर्दू प्रोग्राम निसार की प्रस्तुति में। 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद तमिल प्रोग्राम सुंदरम पेश करेंगे, और तेलुगु प्रोग्राम राजेंद्र पेश करेंगे 12 बजे। 1 बजे मराठी प्रोग्राम शिरीष लेकर आएंगे, और चाइनीज प्रोग्राम जिन पेश करेंगे 2 बजे। 3:30 बजे से आप सुन पाएंगे आज का गुजराती कार्यक्रम जिसे रत्ना लेकर आएंगी 4 बजे तक। 4 से 6 बजे तक आपका साथ रहेगा पूजा के साथ, जो 4 से 5 तक पेश करेंगी आप और हम प्रोग्राम, और 5 से 6 तक पेश करेंगी तोहर पसीन, आज भोजपुरी की फरमाइशों का प्रोग्राम। और फिर 6 बजे के संग्रह समाचारों के बाद आप 6:30 बजे चाइनीज प्रोग्राम सुनिएगा, जिसे लेकर होंग आएंगी कलेवानी मुर्गन लेकर आएंगे आज का तमिल प्रोग्राम। शाम के 7 बजे 7:30 बजे आप सुनिएगा तेलुगु प्रोग्राम वंदना से, शिरीष मराठी प्रोग्राम दोबारा लेकर आएंगे 7:50 पर, और 8:10 पर भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम रोशनी लेकर आएंगी। समीर पेश करेंगे आज का उर्दू कार्यक्रम महफिली शब रात्रि के 8:40 पर, और 9 बजे भोजपुरी का समय होता है, और 9 से 11 बजे तक भोजपुरी तड़का सुनिएगा आप सुमिता की प्रस्तुति में। पुराने गानों का पल, सुनहरे पल, ये होगा 11 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गिनीशा की प्रस्तुति में। तो ये रहा एक छोटा सा डिटेल हमारे रेडियो मॉरिशस के प्रोग्रामों के बारे में, और डिटेल के बाद आपका एंटरटेनमेंट तो बनता ही बनता है। चलिए जरा आपको सुनवाते हैं हम चमत्कार मूवी का गाना।

0: सीसीटीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: तुम हर साल रावण को इसलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता।
2: तुम्हें विलन अच्छे लगते हैं ना, तो मैं आज जाकर एक ऐसा गेम बनाऊंगा जिसमें विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल हो।
3: रावण गेम के बाहर कैसे आ सकता है?
4: रावण को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जीवन।
0: रविवार 24 मई को NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म रावण 2011 की मूवी। इस फिल्म में नजर आएंगे शाहरुख खान और करीना कपूर। रावण। NBC TV प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
5: घनश्याम तिवारी आज सुबह दिल्ली मुंबई मालगाड़ी की बोगी में अपने ऑटो रिक्शा के साथ पाए गए।
6: अगर ऑटो वाले आम आदमी को तंग करना बंद नहीं करेंगे तो अगली बार उनको एक ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ जाने के लिए वीजा भी लगता है और प्लेन की टिकट भी।
7: ओ, बाकी सारे।
0: रविवार 24 मई को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म उंगली। 2014 की ये मूवी इमरान हाशमी और कंगना रनौत पर फिल्माई गई उंगली।
8: सात बजकर 36 मिनट हुए हैं। बस आप मुस्कुराने की कोशिश करते रहिएगा, आप मुस्कुराहट की वजह बन जाएगा किसी और के लिए। ये मुस्कान जितनी मूल्यवान होती है उतनी मूल्यवान इस जहां में कुछ नहीं होता। इस मुस्कान के ज़रिए आप औरों के होंठों पे भी मुस्कुराहट पैदा कर सकते हैं। तो चलिए एक बार तो हमसे मुस्कुरा लीजिएगा और इसके बाद आप मुस्कुराते ही जाइएगा, मुस्कुराते ही जाइएगा।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: अब चलिए एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक अधेड़ आदमी ने एक ज्ञानी आदमी से पूछा, मैंने इतनी सफलता प्राप्त की है अपनी जिंदगी में, पर समझ में नहीं आता कि मेरे मन के अंदर मुझे संतोष महसूस क्यों नहीं होता। ज्ञानी ने उसे एक आईना दिखाया और उसने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? जाहिर है आदमी को अपना चेहरा ही दिखेगा। फिर ज्ञानी ने आदमी को खिड़की के जरिए बाहर दिखाया और पूछा, क्या दिख रहा है अब? आदमी ने बाहर के नज़ारे का वर्णन बड़ी खूबसूरती के साथ किया और ऐसे में उसके चेहरे पर भी एक चमक सी आ गई। तब ज्ञानी ने उसे समझाया, ये जो आईना है वह एक ऐसा शीशा है जिसके पीछे चांदी के मटेरियल से ब्लॉक किया गया है, इस वजह से इसमें तुम्हें केवल अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह अगर अपने आप को देखोगे तो तुमको सिर्फ अपना ही चेहरा नज़र आएगा। तो बस ये खिड़की बिल्कुल खुली हुई है, उसके ज़रिए तुम्हें दुनिया की खूबसूरती नज़र आ रही है। तुम भी अपने जीवन में अगर अपनी आँखों के सामने केवल अपना संघर्ष, अपना बोझ, अपना सक्सेस, अपनी दौलत रखोगे तो उसमें तुम्हें घुटन सी होने लगेगी। अगर आँखों को थोड़ी दूर तक का नज़ारा दिखाओ और सक्सेस और अचीवमेंट को दुनिया के साथ बांटो तो तुम्हारा मन संतुष्ट रहेगा। वो चैन जो तुम ढूंढ रहे हो उसे पा जाओगे।

तो चलिए सीखें इस कहानी से कि जो पाया है खुद के लिए रखकर जो संतोष नहीं मिलता, वो संतोष बांटने और औरों को खुशी देने से अवश्य मिल जाता है। कहानी अच्छी लगी होगी, यही उम्मीद हमारी। और आपको जो गाना सुनवाएंगे वो भी पसंद आए, ये भी उम्मीद हमारी। चलिए ज़रा जब मैं वी मेट मूवी का ये गाना सुनते हैं, शान और उस्ताद सुल्तान अली खान की आवाज़ें।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस
1: परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। हर कदम पर आपका धैर्य भगवान बनाए रखे, यही आपके लिए दुआएं।

0: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: सूरज की ये जो किरणें आप लोगों तक पहुंच रही हैं, इसको भगवान का वरदान मान के इसको एंजॉय कीजिएगा। सूरज की ये चमचमाती किरणें आप लोगों के जीवन में चमक लाए, ऐसी दुआ के साथ हम अंतिम गाना सुबह का नजराना का पेश कर रहे हैं आपके लिए। के की आवाज़ का ये गाना है। इसके साथ ही हम आपको ले चलेंगे 8 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। भोजपुरी में ये समाचार आप सुनिएगा करुणा से। हमारी आपकी मुलाकात ठीक समाचारों के बाद होगी।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 8 बजे बाद पेश बा भोजपुरी समाचार। सब लोग इनके नमस्ते। बोबा सरोजिल के नवा मेयर मिलल बाते एमएमएम के लुई ऑंड्रे टुसें के सामडी दोपहर के नगर परिषद के खास बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के तहत चुनल गल। गैब्रिएला बाटू के जगह ले ली हवन। रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव के जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर पद पर बनल रहेलन। सिते बौकली के निवासी लुई ऑंड्रे टुसें एकर से अक्टे 2012 में भी मेयर रहल रहलन। आप लोग के बता दिया जा कि लैंडी के काठबोन पोर्ट लुइस वाक्वा फिनिक्स और क्यूपिप नगर पालिका में चुनाव हुई। गंगा तालाब और कौटोगल के घटना पर सुक्के गो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकील कविराज बकोरी सामडी के कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंडिया संगे मुलाकात कर लन। इ बैठक में गंगा तालाब में पर्यटन यात्रा के बेहतर ढंग से नियंत्रित करे खातिर कईन गो सुझाव दिवल गल। इ पवित्र स्थल पर आये हुआ पर्यटक से प्रवेश शुल्क लेवे के भी प्रस्ताव शामिल बाते। कविराज बकोरी के अनुसार इ व्यवस्था के कोनो संस्था के सहयोग से संचालित करल जाय सकी, जिमें स्थल के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण हो सकी। सुख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कईन गो वक्ता लोग शांति, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की अपील कर लें जा। कविराज बकोरी सामाजिक सद्भाव और देश की शांति बनाए रखे की आवश्यकता पर जोर दिलन। उ लोगन से विभाजन और उकसावे से बचे के अपील करलन और बोलन कि मॉरिशस के एकता और साथ मिल के रहे की भावना के मजबूत करे की जिम्मेदारी सब कोई की हा। मॉरिशस में मराठी समुदाय के प्रमुख धार्मिक उत्सव में से गो गणेश चतुर्थी इबरिस मंगर 15 सितंबर के मनावल जाए, जबकि अगते 16 सितंबर बतावल गए रहल। इ बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के मांग पर करल गल। संघ के मुख्य पंडित शांताराम राजू के अनुसार हिंदू पंचांग से परामर्श के बाद इ निर्णय लेवल गल। रिफॉर्म पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई, खाद्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी श्रमिक के स्थिति जैसन मुद्दा पर चर्चा करल गल। पार्टी के महासचिव रियाद सुब्राती बरहल महंगाई पर चिंता व्यक्त करलन, जिनकी उनकर अनुसार कईन गो मॉरिशन परिवार के प्रभावित करता। वो खाद्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी कामगार के बेहतर नियमन के आवश्यकता पर जोर दिलन। श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशन नागरिक के रोजगार के बढ़ावा देवता, खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आवत डुबरिस में

0: राजगुड विभाष में और नागरिक के भर्ती करल जाए। निर्माण शिक्षा और होटल उद्योग प्रमुख क्षेत्र रही। इन निर्णय के सुक्के कैबिनेट मंजूरी दिला। कार्यक्रम के मकसद कनाडा में फ्रेंच भाषी प्रवासन के मजबूत करेगी। हाँ, श्रम मंत्री रजा उत्तम के अनुसार ये पहल मौर्ष नागरिक के फर्जी नौकरी से बचाए में मदद करी। सर्दी के मौसम अभी शुरू हो ही बातें बके ठंड के संगे संगे श्वसन संक्रमण के मामला में भी तेजी से बढ़ोतरी हुआ था। 11 से 17 मई के बीच 4174 से जस्ती मामला दर्ज करल गल बा, जबकि उकर से अगते के सप्ताह में इस संख्या लगभग 3750 रहल। डॉक्टर फाजिल कोडा बुकस के अनुसार तापमान में गिरावट और मौसमी वायरस के प्रसार के कारण आए हुआ दिन में स्थिति और गंभीर हो सकी। वो ये भी बोलन कि एक बार फ्लू होला के मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति दोबारा संक्रमित नहीं हुई, काहे कि इस समय कई प्रकार के वायरस फैलता। विशेषज्ञ ये बोलन जा कि फ्लू और मौसमी संक्रमण से बचाव खातिर टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय में से एगो है। हालांकि टीका बीमारी होला से अगते लगवाए के चाहिए, नहीं कि लक्षण अला के बाद। एक साथ ही अच्छा जीवन शैली, पर्याप्त नींद, नियमित पानी पिए के और संतुलित आहार भी सर्दी में शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए में मदद करेला। दूसरे देश के समाचार में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व होला सरकार क्यूबा पर दबाव बढ़ाए के तेज कर दिले बा। विशेषज्ञ बुलथवंजा की रणनीति काफी हद तक वैसे ही दिखता जिसे कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ अपने ले रहा। हालांकि जानकार के अनुसार क्यूबा के मामला वेनेजुएला से कहीं ज़्यादा जटिल, जोखिम भरा और महंगा साबित हो सकी। और लगभग 3 महीना से जारी संघर्ष के खत्म करे खातिर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा बातचीत में प्रगति के संकेत मिलल बा। ईरान अमेरिका और मध्यस्थ के भूमिका निभाए होला पाकिस्तान सामरी के बुलंजा की वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता और आवत कुछ दिन बेहद अहम हो सके। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मोरेल रोड रिविया जुरा पर में 71 बरिस के 71 ओं के श्रीमती सुजावंती लुबिन पैराज नाम जगू जिनका लोग सुजिया से जाने तरलन जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 12:30 इनकर मकान मोरेल रोड रिविया जुरा पर से उठा के दाह संस्कार खातिर पितों के स्मशान भूमि ले जल जाए। मोसलमा रामफुल बुआमोंग प्लैन डी पपाय में 33 बरिस के 33 ओं के श्री वानी सेन अपादू जिनका रालोक चिबरीली से जाने तरलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1:30 इनकर्मा कावेरी अपादू के मकान मोसलमा रामफुल बुआमोंग प्लैन डी पपाय से उठा के दाह संस्कार खातिर थ्रियोली के शमशान भूमि ले जल जाए। रेजिडेंस लामारी रोड ग्लैन पार्क वाकुआ में 74 बरिस के 74 ओं के जनाब महमूद सईद कोदादिन जिनका लोग सईद से जानत रलंजा इंतकाल कर गल हमन। जनाजा आज दिन के 10 बजे इनकर मकान रेजिडेंस लामारी रोड ग्लैन पार्क वाकुआ से निकाल के दफनावे खातिर फिनिक्स के कब्रिस्तान निजाल जाए। हनुमान गली रिश्मा में 88 बरिस के काथोवें वीतों के श्रीमती सावित्री दुमन जिनका लोग सावित्री से जाने तरलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थिया आज 3 बजे इनकर मकान हनुमान गली रिश्माओं से उठा के दाह संस्कार खातिर बुशों के शमशान भूमि ले जाल जाए। शिवाला गली मोंगू पाँपलेमुस में 74 बरिस के 74 के श्रीमती लक्ष्मी बाचू पैदाश नाम राम लगन जिनका लोग इंद्रानी से जाने तरलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थिया।

आज सांझ के 3 बजे इनका बेटा धीरज बाचू के मकान शिवाला गली मोगू पाउप्लेमुस से उठा के दाह संस्कार खातिर मोगू पाउप्लेमुस के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गन्स हिल इलफोर्ड इंग्लैंड में 57 बरिस के सेकंड सेतों के श्री राजीव कुमार गोपल। श्री राजीव कुमार गोपल जिनका लोग राजीव से जानित रलंजा और जिनके अक्ते HSBC के मैनेजर रहलन के मृत्यु हो गल बा। अर्थी बुध 27 मई के इनकर मकान नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गन्स हिल इलफोर्ड इंग्लैंड से उठा के दाह संस्कार खातिर फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 25 ओकीडे स्ट्रीट बोवालों मेबर्ग में 81 बरिस के काथोवैन के जनाब फाजल हक जागीसर। जनाब फाजल हक जागीसर जिनका लोग फाजलिन से जानत रलंजा इंतकाल कर गल हुआ। जनाजा आज दिन के 11 बजे कर बेटी नूरबी उगबाराली के मकान नंबर 25 ओकीडे स्ट्रीट बोवालों मेबर्ग से निकाल के दफनावे खातिर पॉइंट ब्रोक्यूस रिविया डे क्रियोल के कब्रिस्तान ले जाल जाए। एगोसलिन प्लैन डे पपाई में 47 बरिस के कहानसितों के श्री सुरेंद्र भिखारी। श्री सुरेंद्र भिखारी जिनका लोग अजय से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10 बज के 18 इनकर मकान एगोसलिन प्लैन डे पपाई से उठा के दाह संस्कार खातिर प्लैन डे पपाई के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। केवल नगर बिलगीव में 57 बरिस के सेकंड सितों के श्री धर्मराज भगीरथी। श्री धर्मराज भगीरथी जिनका लोग आडू से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर मकान केवल नगर बिलगीव से उठा के अंतिम संस्कार खातिर ख्वाजिलो ओलिविया के शमशान भूमि ले जल जाए। रामडू गली बुनाकय में 52 बरिस के काथोवें डूजों के श्री डोडिलमणि शंकर। श्री डोडिलमणि शंकर जिनका लोग रामानंद से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज सांझ के 4 बजे इनकर बेटा बेबे शंकर के मकान रामडू रोड बुनाकय से उठा के दाह संस्कार खातिर बुनाकई के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। मेजोनेट गली रिविया डे जाओगी में 80 बरिस के काथोवैजों के श्री सुबाया जगनंदन। श्री सुबाया जगनंदन जिनका लोग रामदास से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 11 बजे कर बेटा जेसन जगनादन के मकान मेजोनेट रोड रिविया डे जाओगी से उठा के दाह संस्कार खातिर तायाक के शमशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड पालमाओ में 62 बरिस के स्वासन डेजों के श्री गीनानाथ बैजुनोत। श्री गीनानाथ बैजुनोत जिनका लोग जीनाथ भगत से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2 बजे कर पत्नी श्रीमती रागिनी बैजुनोत के मकान रॉयल रोड पालमाओ से उठा के दाह संस्कार खातिर मौलाशो के शमशान भूमि ले जाल जाए। गुटवाया लाफ्लोगा में 66 बरिस के स्वासन सीजों के श्री देवानंद जुकवा। श्री देवानंद जुकवा जिनका लोग सुनील से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज सांझ के 4 बजे इनकर मकान गुटवाया लाफ्लोगा से उठा के दाह संस्कार खातिर माघजानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड पालमाओ में 62 बरिस के स्वासनदीजों के गिजानाथ बैजुनोत। श्री गिनानाथ बैजुनोत जिनका लोग जेनाथ और भगत से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पत्नी श्रीमती रागिनी बैजुनोत के मकान रॉयल रोड पालमाओ से उठा के दाह संस्कार खातिर मौलाशो के शमशान भूमि ले जाल जाए। तो शोक में डूबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमी के दीदी हमदर्दी आती।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: तो आप लोगों के नाम करेंगे हम आप लोगों का प्रोग्राम पैगाम आपके नाम। इस समय रेडियो मॉरिशस पर हमारा आपका साथ जो है बहुत प्यारा, बहुत मीठा सा रहेगा। हम हैं सुरेखा आपके साथ और लेकर आए हैं पैगाम आपके नाम। जो भी पैगाम आपके मन में है उसे आप SMS या फिर WhatsApp बना लीजिएगा और उन्हें हम तक पहुंचाइए। हम ये मैसेजेस आपके अपनों तक पहुंचाएंगे। हमारी आपकी इस मुलाकात में हम वही दौर लेकर आए हैं जहां पर खुशियों का नज़ारा नज़र आएगा आपको, जहां पर आपको अपने अपनों तक अपने मैसेजेस पहुंचाने का बहुत प्यारा सा सुनहरा सा मौका मिलेगा। चलिए ज़रा हमारे इस प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं सुमारू परिवार की खुशी। आज है बेटे उत्तम सुमारू का जन्मदिन और उनके पापा सूर्यदेव, उनके तीन भाई कृष्ण, सुयश, शिरवान और तीन बच्चे शिरवानी, दक्ष, कशिश तथा सभी सुमारू परिवार उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और माला सुमारू जी की तरफ से ये जो मैसेज आया है हम सीधा पहुंचाते हैं बेटे उत्तम सुमारू की तरफ। वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू उत्तम सुमारू जी।

और चलिए ज़रा हम पैगामों का ये गुलदस्ता आप तक पहुंचाते हैं। आज जन्मदिन है प्यारी सी मनशिका का। ख्वाबुची की मनशिका सुंदर अपना बर्थडे मना रही है बड़े प्यार से, बड़ी खुशी के साथ। उनकी मामा माला, दीदी नीत तू निशना, जीजा जी संतोष, सुदेश, आयुष, खुशी, मौसी रानी, कवि, युवराज, किश्ती और प्यारी सी छोटी सी गिड़िया सी चेष्विका तुलसी मौदालबिया की, उनको हैप्पी बर्थडे कह रही हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन, और मनशिका जी आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले।

और खुशियों की दुआएं हम दे रहे हैं प्यारी सी सलीना जी को, और सलीना जी भी अपना जन्मदिन मना रही है बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही शोर शराबे के साथ। सो मौदालबिया की अनीता जी ने हमें बताया है कि सलीना हरंगी जी अपना बर्थडे मना रही है, और उनके पापा कुणाल, उनकी मम्मा केविना, उनके भाई आयान, सभी इतू गोगा लालजी परिवार उनको ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। बहुत प्यार से उन्होंने ये मैसेज उनको उन लोगों के लिए उनके लिए भेजा है। हैप्पी बर्थडे थी।

नन्ही नन्ही परियों की नन्ही नन्ही सी आँखें, उनके नन्हे नन्हे से हाथ, नन्हे नन्हे से प्यार बहुत प्यारे होते हैं, और जिनके किस्मत में ये नन्ही परी होती है उनकी किस्मत बहुत ही आनंदमय होती है। इस समय 8:26 हुए हैं और हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस वाला प्रोग्राम, इवेंट्स में खुशियों की दुआओं वाला प्रोग्राम। चलिए, हमारा साथ तो लक्ष्मी जी दे रही हैं बॉम्बू से। उन्होंने सभी माताओं को प्रणाम किया है और सभी माताओं को शुभकामनाएं दी हैं। त्रियोली के सूरज शर्मा सजादा जी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए सूरज जी। और विश्वानी दुमन जी वाकवा से मैसेज भेज रही है, बहुत प्यारा सा ताज़ा सा और उन्होंने अपनी सहेली नीला को हैप्पी बर्थडे कहा है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू नीला जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मिली हैं पूरे दुमन परिवार की तरफ से, और आपके पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और नीला जी को शुभकामनाओं का गुलदस्ता हमारी पूरी टीम की तरफ से। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू नीला जी, आपके बच्चों की तरफ से आपके नाम प्यारा सा मम्मा वाला बर्थडे वाला ये गाना।

तो बस हम जन्मदिन की मंगल कामनाओं का मैसेज ही पढ़ रहे थे। इनफैक्ट सुदेवी जी ने मालेगा से भेजा है हमें मैसेज कि उनके परिवार में भी बहुत खुशियों का मौका है। असल में 22 मई को प्यारी सी बेटी कीर्ति ने अपना जन्मदिन मनाया और उन्हें विश मिल रहा है, बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है मामा इंद्राणी की तरफ से, भैया अक्षय, बहन स्नेहा की तरफ से, याशना की तरफ से, बहन नीरज की तरफ से, नीसेज हैं लक्षिका, कृषिका, केशनी, प्रणीता और जो बिलहौज के रहने वाले हैं उनकी उनके पूरे परिवार के सदस्यों की तरफ से, नानी, मामू, मामी, मौसी, मालिनी की तरफ से, स्वीटी भी हैं साथ में और पूरा परिवार भी है, राम रतन, राम गुलाम और कुआकू, रिद्दो, जितन, कुशल परिवार, पूरा परिवार मिलकर कह रहा है वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कृति। और हमारी पूरी टीम तो आपको ढेर सारी दुआएं दे रही हैं, खुशियों का सिलसिला आपके जीवन में बरकरार रहे।

तो हैप्पी बर्थडे का ये सिलसिला जारी रहे। हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे आकाश चेतन मनसुख जी की तरफ से, जो बाबू के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश वे भेजना चाह रहे हैं अपने माऊ केशव जी को, जो क्यूपिप फॉरसाइड के रहने वाले हैं। तो पूरे परिवार की तरफ से, मनसुख परिवार और बॉम्बू और बंधु परिवार की तरफ से, अ वेरी वेरी स्पेशल विश टू मामू केशव। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मामू केशव जी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मिली है इतने परिवारों की तरफ से और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं केशव जी।

बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी होती है हमें जब हमारा साथ देने वाले हमारे श्रोता हमें मैसेजेस भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए अनीता जी, फ्लिकॉफ्लैक्स से अनीता जी हमारा साथ दे रही हैं, बकवास से लक्ष्मण सिगोबिन जी हमारा साथ दे रहे हैं और प्लान मानियों से अमृता जी हमारा साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ शादी की शुभकामनाओं का ये गुलदस्ता जो हमें मिला है वो हम तो पहुँचाएँगे जहाँ जाना है उसको। आज सृष्टि और रितेश की शादी हो रही है, वे शादी के इस पवित्र बंधन में बंध कर सदा खुश रहें, सदा एक दूसरे के सपोर्ट बने रहे, ऐसी दुआ पूरे परिवार की है। उन दोनों को हार्दिक शुभकामनाएँ और आशीर्वाद दे रहे हैं दागुच्छिया से चाची सुनीता, भाभी प्रिया।

लवलेश, शाहिल, सभी बिहारी परिवार, गोबुदन परिवार, बुद्धिया परिवार और उनकी शादी की इस जीवन में, उनकी शादीशुदा जिंदगी में हर तरह से खुशियां, हर तरह की खुशियां आए, हर तरह का संतोष आए, ये दुआ पूरे परिवार की है।

दुल्हन ले जाने वाले दुल्हन ले जाते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बड़े प्यार से बिताने के लिए नौकरी भी करते हैं। सो नौकरी पर गए हुए पति अभी मिस किए जा रहे हैं। इनफैक्ट ये संदेश है पत्नी दिया का, जो अपने पति कुमार को मिस कर रही हैं इस वक्त, और जो नौकरी पर गए हुए हैं। बस संदेशा ये है पति देव जी आपको, आपके लिए, कि आपकी पत्नी दिया आपको बहुत मिस कर रही हैं, बहुत प्यार करती हैं आपको। चलिए जरा संदेशों का ये गुलदस्ता हम इस बार नानी अम्मा के लिए पेश करते हैं। नानी अनीता रामजीतन जी जो फोंजी साक रहती हैं, अभी फूले नहीं समा रही हैं, पहली बार नानी बनी हुई है और ट्विंस बच्चे आए हुए हैं आपको नानी मां नानी मां पुकारने के लिए। सो स्वीट, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। अनीता रामजीतन जी, आपकी उंगली थाम के दो प्यारे प्यारे बच्चे आर्य और अरवी अभी ठुमक ठुमक कर कुछ दिनों में चलने वाले हैं। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं बेटी करिश्मा की तरफ से, दामाद अरुण की तरफ से, आपके नाती पोतों की तरफ से, अंश, शैना, शनाया, आहाना, कैशा, अर्नव, रेहान, सिबालक परिवार, रघुबर, रामजीतन, गुलाम, जगरू और जोलिम परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये पल बहुत ही सुनहरा होगा, ये पल बहुत ही प्यारा होगा, आपके जीवन में फुलवारी ही फुलवारी नज़र आएगी। आपको प्यारे बच्चों के साथ आप बहुत अच्छे पल बिताइएगा और नानी माँ जी आपके प्यारे बच्चों की सेहत हमेशा अच्छी रहे, हमारी दुआ है।

और चलिए ज़रा हम अंतिम गाना पेश करें संदेशों का ये सिलसिला। इस बार थोड़े दर्द से भरा हुआ है, हमें ज्योति जी ने मैसेज भेजा है बुआ शेखी से। ज्योति जी ने अपने पति की याद में एक संदेश भेजा है कि वे मिस कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, 11 साल हुए मिस कर रहे हैं अपने पति को, सभी बच्चों की तरफ से और बंधु परिवार की तरफ से उन्हें प्रणाम, उन्हें श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ चांदनी जी हैं, कह रही हैं बल्कि अपने मैसेज में, अगर मेरे पापा प्रेम चौधरी होते तो 20th को अपने 80th जन्मदिन की खुशियां मनाते, और इस दुनिया को छोड़ने के एक साल बाद भी उन्हें अपने पापा की याद बहुत आती है। तो चलिए हम ये गाना पेश करते हैं चांदनी जी की तरफ से, और उम्मीद यही करते हैं कि हर किसी के जीवन में सुख शांति हमेशा रहे, और जिन्हें मिस किया जाता है उनके लिए प्रेम का ये सिलसिला हमेशा बरकरार रहे।

तो बस महेन जी भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया महेन भाई पालमा से आप हमारा साथ दे रहे हैं। और ऐसे में हमारी आपकी मुलाकात यहाँ समाप्त होने जा रही है। पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में आपने हमारा इतना साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 9 बजे हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद आप मंगलाचरण कार्यक्रम सुनिएगा जिसे लेकर आ रही है वेदिता। हमारी आपकी अगली मुलाकात तक शुभ शाम, शुभ दिन, शुभ संडे। नमस्कार।

0: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा से। करुणा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। बोबासा रोज हिल को नया मेयर मिला है। एमएमएम के लुई ऑंड्रे टुसें को शनिवार दोपहर को नगर परिषद की विशेष बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के तहत चुना गया। उन्होंने गैब्रियल बाटू की जगह ली है। रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव की जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर बनी रहती हैं। इस सोमवार को काठोबोन, पोर्ट लुइस, वाकवा फिनिक्स और क्यूपिप नगर पालिकाओं में भी चुनाव होंगे। गंगा तालाब और कौटोगल की घटनाओं पर शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकील कविराज बकोरी ने शनिवार को कला एवं संस्कृति मंत्री महिन गुनिया से मुलाकात की। इस बैठक में गंगा तालाब में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए। इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों में प्रवेश शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल है। कविराज बकुड़ू के अनुसार इस व्यवस्था को किसी संस्था के सहयोग से संचालित किया जा सकता है ताकि स्थल का बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण हो सके। शुक्रवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई वक्ताओं ने शांति, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की अपील की। कविराज बखोरी ने सामाजिक सद्भाव और देश की शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से विभाजन और उकसावे से बचने की अपील की और कहा कि मॉरिशस की एकता और साथ मिलकर रहने की भावना को मजबूत करना सबकी जिम्मेदारी है। मॉरिशस में मराठी समुदाय के प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की मांग पर किया गया है। संघ के मुख्य पंडित शांताराम राजू के अनुसार हिंदू पंचांग से परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। विदेश में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग ने शनिवार रात सनसनी फैला दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस परिसर के अंदर मौजूद थे। संदिग्ध हमलावर की पहचान 21 वर्षीय नसीर बेस्त के तौर पर हुई। खबर है कि उसने व्हाइट हाउस के बेहद करीब पहुंचकर फायरिंग की करने की कोशिश की, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और इसे मार गिराया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। मुगल रोड रिविया जोरापा में 71 साल की 71-year-old श्रीमती सुजावंती लुबिन जो जगू से जान बल्कि पैदाइशी नाम जगू और जो सुजा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के साथ ही 12 बजे इनके मकान मोगल रोड रिविया जोरापा से उठाकर दाह संस्कार के लिए पिटों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन

0: at half past noon. Moselmo Ramphel Boamong plan de papaime, 30 salki, 33-year-old Shrivani Sen Apadu, Shrivani Sen Apadu, jo chibri se jani jati thi, ki mrityu ho gayi hai. Arthi aaj din ke 1:30 baje inki ma Kaveri Apadu ke makan Moselmo Ramphel Boamong plan de papai se utha kar dah sanskar ke liye Triole ki smashan bhumi le jayi jayegi. Cremation to death, 1:30 p.m. Residence La Marie Road, Glen Park, Vakwa mein 74 saal ke 74-year-old Janab Mahmood Saeed Kodadin, Janab Mahmood Saeed Kodadin, jo Saeed se jaane jaate the, intikal kar gayi hain. Janaza aaj din ke 10 baje ke makan Residence La Marie Road, Glen Park, Vakwa se nikal kar dafnane ke liye Phoenix ka kabristan le jaaya jayega. Funeral today at 10 a.m. शोक में डूबे हुए इन परिवारों के प्रति हमारी दीदी हमदर्दी है.
1: This is Radio Voices.
2: अस्सलाम वालेकुम.
3: Kim to Mauritius.
4: नमस्कार.
5: श्रोतृंदरिकी हृदय पूर्वक नमस्कारम.
6: उंगल अनेवरकम वणक्कम.
7: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का.

0: सभी श्रोताओं को विविधा की ओर से सादर नमस्ते। मंगलाचरण कार्यक्रम में आपका अभिवादन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपके लिए सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है और देर न करते हुए चलिए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं इस भजन के साथ।
1: वक्त

0: श्रोताओं, मंगलाचरण कार्यक्रम में मैं विदिता आपका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक हैं। चलिए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। आज जैसे मैंने बताया कि कार्यक्रम आपके लिए सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे बीच हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास शिव मंदिर चित्रकूट वालिदिपद के आचार्य श्री नरेंद्र कुमार व्यास जी, उनका हम कार्यक्रम में अभिवादन करते हैं। आपको प्रणाम।
1: धन्यवाद विदिता जी, प्रणाम, नमस्कार, जय सियाराम।
0: तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है, आचार्य जी, आपने कहा कि आप वालिदिपद के मंदिर में वहाँ पे आचार्य हैं, और आप कब से वहाँ पे कार्यरत हैं, कब से काम कर रहे हैं?
1: मैं पिछले 14 सालों से उस मंदिर में कार्य कर रहा हूँ और वहीं पे हूँ अभी तक मैं, और अभी भी सेवा दे रहा हूँ
0: जी। तो आचार्य जी, जब हम बात करते हैं मंदिर की, एक मंदिर

0: क्या होती है, आप हमें बताएंगे?
1: जी, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। हमारे सनातन धर्म में मंदिर का बड़ा महत्व होता है।
0: जी
1: मंदिर को हम कहते हैं एक पूजा का केंद्र, या तो एक कह सकते हैं कि ऊर्जा का केंद्र।
0: जी
1: हम हर रोज के जीवन में जहाँ पर कार्य करते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं, किसी की यहाँ पर काम करते हैं ऑफिस में या कहीं पे भी, तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है।
0: जी
1: उस ऊर्जा को फिर से संचार करने के लिए हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में संचार करने के लिए मंदिर बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: तो मंदिर जो है एक प्रकार से एक ऊर्जा का केंद्र, अभी की भाषा में या इंग्लिश में कहे तो एक जैसे एक पावर बैंक होता है,
0: चार्ज करते हैं
1: जैसे
0: हमारी
1: शरीर को वो पावर बैंक मोबाइल को चार्ज करता है, उसी तरह हमारे शरीर को, हमारे मन को चार्ज करने के लिए एक मंदिर होता है।
0: जी
1: तो मंदिर जो है एक ऊर्जा का केंद्र होता है, और वही मंदिर के अंदर में बैठे हुए देवता जो है ऊर्जा का एक प्रकाश पुंज, जिसको कहे कि ऊर्जा का एक गोला कहे, तो वो देवता जो है विग्रह, वो मूर्ति, वो
0: जी
1: भगवान का, वो एक ऊर्जा का केंद्र होता है। उससे हम जब मिलते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो वही ऊर्जा जो है मंत्रों के द्वारा और वो पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा हमारे शरीर में संचार करती है।
0: आचार्य जी, जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर में मूर्तियां होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ध्वजा, कलश इत्यादि हम सब देखते हैं कि मंदिरों में होती हैं। तो ये मंदिर में ध्वजा और कलश का क्या काम होता है?
1: तो हमारे सनातन धर्म के अंदर में एक पुस्तक है, उसका नाम है शिल्प शास्त्र। उस
0: जी
1: पुस्तक में मंदिर के बारे में विस्तार से बताया गया है कि मंदिर क्या है, और मंदिर के अलग अलग जो है शिखर है, कलश है, फिर जो है ध्वजा है, गर्भगृह है, मंडपम है और गोपुरम,
0: जी
1: इसके बारे में सब बताया गया है। वो मंदिर जो है एक प्रकार से आप कहे कि अगर आप मंदिर के अंदर न जाए, आपके
0: जी
1: पास समय न हो, बाहर से अगर मंदिर का भी दर्शन हो जाए
0: जी
1: तो वो भगवान का दर्शन होने के बराबर है। तो शिल्प शास्त्र में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है, उसमें
0: जी
1: सबसे पहले ऊपर में आती है ध्वजा।
0: जी
1: तो ध्वजा जो है भगवान के केस कहे गए हैं, केस यानी बाल, जैसे हमारे शरीर में सबसे ऊपर में बाल होते हैं,
0: जी जी
1: उसी
0: जी
1: तरह ध्वजा को बाल का निरूपण कहा गया है। उसके बाद उसके नीचे आता है शिखर कलश, शिखर के ऊपर जो कलश जैसा एक चिन्ह होता है, आकार होता है,
0: जी
1: वो शिखर कलर भगवान का जो है सर कहा गया है।
0: जी
1: उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो पिरामिड जैसा शिखर का आकार होता है, वो भगवान का कंठ कहा गया है। उसके नीचे में गर्भगृह होता है, सबसे नीचे में, तो
0: जी
1: गर्भगृह जो है वो भगवान का पेट कहा गया है। जैसे
0: जी
1: हमारे शरीर को चलाने के लिए पेट की ज़रूरत पड़ती है, हम भोजन करते हैं, उसी भोजन वो पेट में जाता है, पचता है, और वही पचा हुआ भोजन जो है हमारे शरीर को चलाता है। उसी तरह गर्भगृह के अंदर में भी देवताओं को बिठाया जाता है,
0: जी
1: विग्रह को बिठाया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। तो वो विग्रह जो है उस पूरे मंदिर की ऊर्जा को संभालता है। तो वो विग्रह को वहाँ पर विराजमान किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा। उसके बाद आता है मंडपम।
0: जी
1: अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार, शिल्प शास्त्र के अनुसार कहे तो जहाँ पर नंदी भगवान होते हैं उसको मंडपम कहा जाता है, और सबसे जहाँ पर मंदिर का प्रवेश द्वार होता है उसको
0: जी
1: गोपुरम कहा जाता है। तो वो गोपुरम जो है वो भगवान के पैर है। तो गोपुरम भगवान के पैर है, मंडप जो है भगवान, जैसे एक आप पलाती मार के बैठेंगे तो आपके जो पैरों का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मंडपम।
0: जी
1: तो उस प्रकार पूरे मंदिर को भगवान का विग्रह कहा गया है। अगर आपके पास समय नहीं, अगर मंदिर के पास से आप गुजरे तो दो हाथ जोड़ करके मंदिर को प्रणाम करने से या ध्वजा का दर्शन करने से अनेक प्रकार के पाप नाश होते हैं।
0: जी
1: भगवान का स्वरूप मानकर ही मंदिर को जो है प्रणाम करने से वो पूरा जो है विग्रह रूपी मंदिर जो है वो आपको आशीर्वाद देता है, इसलिए मंदिर का शिल्प शास्त्र में इस प्रकार से वर्णन आता है।
0: जी तो हम जब मंदिर में, जब हम जो कहते हैं ना कि जो ईश्वर की जो मूर्तियां होती हैं तो उनको हम रखते हैं वहां पर पूजा करने के लिए, ऐसे ही नहीं रखते, बस खरीद के लाके रख के नहीं
1: प्राण
0: रखते।
1: प्रतिष्ठा किया
0: हाँ,
1: जाता
0: प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और इनकी कई सारी विधियां भी होती हैं ये सब करने के लिए।
1: है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो है हमारे शास्त्रों में कई सारी पुस्तकें हैं, एक है पुस्तक का नाम है सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश, और एक दूसरा पुस्तक है प्रतिष्ठा मौक्तिकम।
0: जी
1: दोनों पुस्तकों में और भी कई सारी पुस्तकें हैं जिसमें मंदिर के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया है, लेकिन ये दो मुख्य पुस्तकें हैं। तो सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश में ऐसा लिखा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है दो

0: प्रकार की होती है
1: जी।
0: मंदिर के लिए कोई प्राण प्रतिष्ठा करे, मूर्तियों को आप, विग्रह को आप विराजमान करें, तो उसमें अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है। और घर में जब कोई मूर्ति का हम स्थापना करते हैं तो उसको चल प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। चल और अचल, अचल का मतलब कि एक बार जब भगवान को वहां पर स्थापित किया जाए तो वो उसको वहां से हटा नहीं सकते हैं। और दूसरा होता है चल, चल यानी भगवान को हम चलायमान कर सकते हैं। उनको जब समय अनुसार जब पूजा हो घर में तो उस पूजा के निमित्त भगवान को वहां से निकाल कर अभिषेक पूजा सब कर करके भगवान को वापस उसी जगह पर बिठाया जाए, उसको बोलते हैं चल प्रतिष्ठा। तो चल और अचल, हमारे मंदिरों में जो पूजा हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसको अचल प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। उसमें विधियों में मुख्य विधियां जो है तीन प्रकार की होती है। पहले होता है जलाधिवास।
1: जलाधिवास
0: जो जलाधिवास का मतलब ये होता है कि जैसे हम हमारे शरीर के अंदर में सबसे ज्यादा हिस्सा पानी का होता है
1: जी,
0: उसी तरह भगवान के उस विग्रह में पत्थर तो सभी सेम है, आप एक पत्थर जो खेत के बीच में पड़ा है और एक मूर्ति के रूप में मंदिर में है, पत्थर तो सेम ही है लेकिन उस मूर्ति के अंदर में देवत्व लाने के लिए उसमें जल का वास किया जाता है, मतलब उस मूर्तियों को जल में सुलाया जाता है एक रात्रि तक।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जल ही जीवन है, जल से ही हमारा शरीर चलता है, उसी तरह भगवान को भी जल तत्व की जरूरत है। तो पहले जल यात्रा पूजन करके वो जल को, पवित्र नदियों का जल, गंगा जल आदि जल में उसको एक रात्रि तक सुलाया जाता है
1: जी।
0: उसको बोलते हैं जलाधिवास। उसके बाद आता है धान्याधिवास। धान्याधिवास यानी अनाज
1: जी।
0: चावल है, दाल है, गेहूं है, उस प्रकार अलग अलग अनाज में उसको सुलाया जाता है।
1: अच्छा, यानी कि मूर्तियों को पहले जल में रखा जाता है फिर उसके बाद उनको अनाज में रखा जाता है।
0: तो धान्याधिवास, तो धान्य भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है
1: जी।
0: हमारे शास्त्र में एक पंक्ति आती है कि यथा देहे तथा देवे
1: जी,
0: मतलब कि जितना हम अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं उतना ही हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस जलाधिवास के बाद जो है धान्याधिवास यानी धान में सुलाया जाता है। भगवान ने उनके शरीर में हमने जल तो ग्रहण करवा दिया लेकिन उसके बाद धान यानी भोजन के लिए हम भगवान को आजीवन का भी भोजन न करना पड़े इसलिए धान्य में उसको सुलाया जाता है। अच्छा। पूरी मूर्ति को धान के अंदर में ढक दिया जाता है और उसको भी एक रात्रि तक सुलाया जाता है।
1: अच्छा।
0: अगर कम से कम एक रात्रि न हो तो कम से कम एक मुहूर्त यानी 1.5 घंटे तक, एक मुहूर्त तक को उनको सुलाया ही जाना चाहिए। उसमें मंत्रों के द्वारा कई सारी विधियां आती है, उसमें भगवान को सुलाया जाता है,
1: होती है वो सब करने के लिए।
0: वो धान्याधिवास में सीधा ऐसे ही नहीं सुलाया जाता है, उसके अंदर में कई सारे मंत्र होती है, कई सारी विधियां होती है, उसमें विधियों को करने के बाद भगवान की मूर्तियों को, विग्रह को उसमें सुलाया जाता है। और तीसरा होता है शयनाधिवास, क्योंकि शयनाधिवास यानी शयन करना, सोना
1: जी।
0: जैसे हम भी जब थक जाते हैं तो रात्रि को सो जाते हैं, उसी प्रकार उस विग्रह को भी वहां पर आजीवन वो विग्रह हमारे लिए जागता रहता है। जो भी भगवान का विग्रह हो, फिर शिवलिंग हो, राधा कृष्ण की मूर्ति हो, लक्ष्मी नारायण, कोई भी, वो कभी नहीं सोते, वो हमेशा के लिए जागते रहते हैं। हमारी ऐसी लोकाचार है कि हम मंदिर को शाम को बंद कर देते हैं लेकिन भगवान हमेशा जागते रहते हैं। हम
1: इसलिए मंदिर में भी जागते रहते,
0: मंदिर में भी जागते रहते।
1: और मंदिर, आपको लगता है कि मंदिर को हमेशा खुला छोड़ना चाहिए?
0: हाँ, भारत में तो शिव मंदिर तो कभी बंद ही नहीं होता है
1: जी।
0: जो हमारे गांवों में पहले के समय में जो शिव मंदिर में तो पहले दरवाजा ही नहीं बनाया जाता है, गर्भगृह का दरवाजा होता है लेकिन उसको कभी, उसमें वो जो किवाड़ होते हैं, किवाड़ नहीं होते, शिव मंदिर के किवाड़ हमेशा खुले रहते हैं। और जो है मर्यादा मार्ग के मंदिर यानी राधा कृष्णा का मंदिर हो, यानी विष्णु के कोई भी अवतार का मंदिर हो, उसमें मर्यादा का पालन करते हैं, यानी उसको जो है हम शाम को बंद करते हैं, वो एक मर्यादा के रूप में हम बंद करते हैं। लेकिन शिव मंदिर ऐसा होता है कि शिव मंदिर तो कभी बंद ही नहीं होता, शिव मंदिर हमेशा खुला रहता है। भारत में आप जाओगे कभी तीर्थ यात्रा करने, आप देखोगे जो पुराने मंदिर है वो तो रात्रि भर, पूरे रात 24 घंटे खुले रहते हैं। तो मंदिर जो है उसमें भगवान देवता हमेशा के लिए जागते रहते हैं, इसलिए एक रात्रि तक उसको शयनाधिवास कराया जाता है। जब शयन कराया जाता है तब जैसे हम गद्दे पर, तकिया पर हम सोते हैं, उसी तरह भगवान के विग्रहों को भी, मूर्तियों को भी हम उस पर सुलाया जाता है।
1: उसमें एक रात सुलाया जाता है फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए जागते हैं।
0: हाँ, फिर एक ऐसा होता है कि हम रात में नींद लेते हैं तो हमारे शास्त्रों में एक देवी का नाम है निद्रा देवी, हम बोलते हैं ना या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, तो निद्रा देवी का आह्वान किया जाता है। निद्रा देवी को मंत्र के द्वारा कलश में बुलाया जाता है और वही निद्रा कलश जो बोलते हैं, वो निद्रा कलश को भगवान के विग्रह के सर के पास रखा जाता है, यानी भगवान शांति से सोए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुना करके सुलाती है, उसी तरह जो है हम भी वहां पर देवताओं को सुलाने के समय कई सूक्त का पाठ होता है, जैसे रात्रि सूक्त का पाठ होता है, रक्षोग्न सूक्त का पाठ होता है, रात भर उनकी रक्षा हो। और भारत में तो ऐसी प्रथा है

0: कि जब प्राण प्रतिष्ठा के समय में मूर्ति को सेना दिवास कराया जाता है तो वहां दो पहरेदार भी रखे जाते हैं
1: रात को।
0: हाँ रात को, उस एक रात्रि तक वहां पर कोई आवाज नहीं हो, कोई कोई किसी भी प्रकार का जो है ध्वनि उत्पन्न न हो, उसकी खास ध्यान रखा जाता है निद्रा देवी। और सवेरे जब भगवान उठेंगे
1: जी।
0: जब हर बार जब वास कराते हैं तो भगवान को जगाया जाता है।
1: हाँ।
0: घंटा शंख बजा करके, तो इसमें भी सैनादिवास में भगवान को सवेरे जब जगाया जाता है तो भगवान के पास दत्वन रखा जाता है।
1: अच्छा।
0: जल रखा जाता है, भगवान उठ करके अपना मुंह भी देखते हैं आईने में, तो आईना भी रखा जाता है और दिया दिया भी रखा जाता है। रात्रि पर जैसे हम नाइट लैंप जलाते हैं तो भगवान के पास दिया भी रखा जाता है
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने कहा ना कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यथा देहे तथा देव, हम जितना अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं उतना हम भगवान को देते हैं
1: जी।
0: इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते, उसके बाद भी कई सारे वास है, कई सारी चीजों में भगवान को सोला जाता है, लेकिन ये तीन मुख्य है। फिर उसमें चंदन भी भगवान के शरीर पर, जैसे हम लोग हल्दी लगाते हैं तो उसी तरह भगवान के शरीर पर अष्टगंध यानी आठ प्रकार के अलग अलग चंदनों को लगाया जाता है
1: जी।
0: हम दवाई लेते हैं तो भगवान को पूरे शरीर पर औषधि लगाई जाती है, अलग अलग प्रकार की 108 प्रकार की औषधियाँ होती है और औषधियों का चूर्ण बना करके उनके शरीर पर लगाया जाता है। और भगवान को मूर्ति को बिठाने से पहले महास्नपन, महास्नपन यानी जिसको बोलते हैं महाअभिषेक, मंत्रों के द्वारा उसमें अलग अलग वस्तु डाल करके उस विग्रह के ऊपर जो है अभिषेक किया जाता है, जिससे उसके अंदर में देव तत्व आए। और एक चीज खास कि जैसे हम बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा के समय में जब भगवान को सेना दिवास कराया जाता है तब भगवान के ऊपर जो है अनेक प्रकार के मंत्रों से न्यास किया जाता है। न्यास यानी हमारे शरीर में भगवान ने जैसा प्राण दिया है वैसा ही प्राण हम मंत्रों के द्वारा उस मूर्ति में डालते हैं। भगवान ने हमारे शरीर में जैसा जीव दिया है वैसा ही जीव मंत्रों के द्वारा उस विग्रह में हम डालते हैं। और भगवान ने हमारे शरीर में जितने भी अंग दिए हैं, जैसे आँख है, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, जितने भी अंग दिए उस अंगों में जितनी ताकत होती है, जितनी शक्ति होती है, उतनी ही शक्ति उतनी ही ताकत उस मंत्रों के द्वारा न्यास के द्वारा उस विग्रह के अंदर में एक कुश लेकर के, जिसको यहाँ पर बोलते ना वेचवेय, कुश से उनके ऊपर घुमा घुमा करके अलग अलग अंगों को छुआ करके मंत्रों के द्वारा उसके अंदर में न्यास किया जाता है, तब उसके अंदर में देव तत्व आता है। फिर एक यहाँ पर एक बहुत प्रचलित है, कहीं पे हम जाते हैं हमारे पास भी लोग आते हैं मंदिर में कि आचार्य जी मुनई मूर्ति लिए आप इनको बेनी कर दीजिए।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
0: बेनी मतलब आँख खोलना।
1: हाँ,
0: तो आँख खोलना मतलब इसको संस्कृत में कहते हैं नेत्रोन्मिलन। नेत्रोन्मिलन मतलब कि भगवान के मूर्तियों के ऊपर जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब पूजा उपचार होते हैं, तब उनके आंखों पर पट्टी लगाई जाती है
1: जी।
0: जब भगवान को स्थापित किया जाए मंदिर में, तब उस मंदिर के अंदर में स्थापित करने के बाद भगवान के आंखों की पट्टी खोली जाती है और उनको मधु और घी उनसे उनके आंख में काजल लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं नेत्रोन्मिलन। सोने की सुई और चांदी की कटोरी में मधु और घी उनको मिला करके उस सोने की सुई से जैसे हम आंख में काजल लगाते हैं उसी तरह मंत्रों के द्वारा उसको लगाया जाता है और भगवान की आंख खोली जाती है
1: जी।
0: उसके बाद जो भी भक्त उनके पास आता है, जो भी प्रणाम करता है, जितने मंत्रों से ये उपचार किए हैं, वो उपचार के शक्ति, मंत्रों की शक्ति उस विग्रह में रहती है और वो शक्ति हमको आशीर्वाद देती है।
1: आचार्य जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि जब हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो इतनी सारी विधियां होती हैं। जानकर बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, जी।
1: आपने हमें इतनी सारी जानकारियां दी हैं। तो श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं इस समय और आपको पता चल गया होगा कि जब मंदिर में हम मूर्ति बिठाते हैं, जैसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। चलिए इसके बारे में हम और बात करेंगे थोड़ी ही देर में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंगल आचरण। आचार्य जी, हम एक भजन सुन लेते हैं,
0: जरूर जरूर,
1: फिर उसके बाद कार्यक्रम को जारी रखेंगे।

0: प्रिय श्रोताओं, मंगलाचरण कार्यक्रम में आपका हम एक बार फिर से अभिवादन करते हैं। इस समय आप विदिता का साथ दे रहे हैं और मंगलाचरण कार्यक्रम आपके लिए सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे साथ हैं आचार्य नरेंद्र कुमार व्यास जी, और आपने सुना कि मंदिर क्या होती हैं, मंदिर में जो ध्वजा कलश होती हैं तो क्यों होती हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हमने बात की। अभी आचार्य जी से हम ये जानना चाहेंगे कि मंदिर में कौन कौन सी हम पूजा करते हैं। आचार्य जी,
1: जी अभी जो सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से जितने भी मंदिर रजिस्टर्ड हैं
0: जी,
1: और साथ में और भी कई सारी सभाओं से मंदिर में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और लगभग जो है 400-450 मंदिर है। उस मंदिरों में अभी हर सोमवार को शिव अभिषेक तो होता ही है सभी मंदिरों में। कई मंदिरों में दोनों टाइम होता है, सवेरे और शाम, और कई मंदिरों में सिर्फ शाम में अभिषेक होता है। दूसरा कि मासिक शिवरात्रि, हर महीने में जो एक मासिक शिवरात्रि आती है उसमें भी पूजा हर एक मंदिरों में होती है। फिर अलग अलग त्यौहार जैसे रामनवमी है, नवरात्रि है, जो जो भी त्यौहार आते हैं उस प्रकार से उस मंदिरों में पूजा का आयोजन होता है
0: जी।
1: लेकिन जो है खास एक कहूँ कि सभी मंदिरों में जो है नवरात्रि, रामनवमी, महाशिवरात्रि, सोमवार और मासिक शिवरात्रि, ये तो सभी मंदिरों में होता ही है। बाकी अपने अपने मंदिरों के जो है नियम के अनुसार जो है पूर्णिमा पूजा है और अलग अलग पूजा है, काली अभिषेक, दुर्गा अभिषेक सब करते हैं, लेकिन ये मैंने बताया उतनी पूजा तो मुख्य है, मेन है। तो सोमवार को तो शिव अभिषेक सब लोग करते ही है।
0: तो जब हम शिव अभिषेक की ही बात करते हैं, तो जब हम शिव अभिषेक करते हैं आचार्य जी, तो इसकी भी कई सारी विधियां होती हैं, क्या चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, कब करना है, शिव अभिषेक हम किस समय करते हैं।
1: जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों पुराणों में शिव जी का एक नाम है रुद्र
0: जी,
1: उसके नाम से हम जानते हैं रुद्राभिषेक
0: जी।
1: तो संस्कृत में एक वाक्य आता है, शुक्ल यजुर्वेद का एक वाक्य है, रुतम द्रावयते इति रुद्र। रुद्र का मतलब क्या होता है, जिसके पास जाने से या जिसकी पूजा करने से, रुतम द्रावयते मतलब आपके जीव पिछले जितने भी पाप हैं वो पापों को नष्ट करने वाले जो भगवान है उसको बोलते हैं रुद्र
0: जी।
1: रुतम द्रावयते इति रुद्र। फिर भगवान का एक शिव जी का एक नाम है, उसका नाम है शंकर।
0: शंकर,
1: शंकर का मतलब होता है, संस्कृत ग्रामर का ये शब्द है व्याकरण का, शंकर का मतलब होता है सम यानी कल्याण, कर यानी करने वाले, जो कल्याण करने वाले है वो है शंकर
0: जी।
1: और हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि शंकर यानी देव के देव महादेव है
0: जी,
1: सबसे बड़े देवता है। तो सभी मंदिरों में शिव अभिषेक तो होता ही है, जहां जहां शिवलिंग स्थापित है वहां पर शिव अभिषेक होता है। अभिषेक में कई सारी वस्तुएं हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उसमें दूध, दही, घी, मधु, चीनी, पंचामृत, चंदन वाला जल, गुलाब जल या तो सुगंधित जल, फिर फल का रस, गन्ने का रस और नारियल का पानी, और जो है गंगा जल आदि सब वस्तुओं से भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो सभी वस्तु चढ़ाने से भगवान अलग अलग प्रकार के फल देते हैं। दूध चढ़ाने से ऐसा कहते हैं कि जिसको संतान की समस्या हो, जो भी दंपति हो उनको संतान की समस्या हो, उसको दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए
0: जी।
1: जिनको जीवन में शांति चाहिए, शांति के लिए भी दूध का अभिषेक किया जाना चाहिए, और शरीर में अच्छा आरोग्य पाने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए दूध का अभिषेक किया जाता है। फिर दही, दही का स्वभाव होता है शीतलता, ठंडा, तो दही का अभिषेक करने से भगवान मन की शांति देते हैं। फिर घी होता है, घी से आदमी को शरीर में ताकत मिलती है, घी खाने से शक्ति, तो घी चढ़ाने से भगवान जो है हमारे शरीर में तंदुरुस्ती और बढ़ाता है, और खास कहे तो इम्यूनिटी, अंदर की जो पावर है वो घी चढ़ाने से भगवान

बढ़ाते हैं, मधु नाम ही मधु, मधु यानी स्वीटनेस, हाँ तो मधु का मतलब होता है मिठास, तो मधु चढ़ाने से भगवान हमारी वाणी में बोली में मिठास देते हैं। कई कई होते हैं ना कि कोई व्यक्ति बात करा तो ऐसा लगता है कि अब ये बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, और कोई व्यक्ति बोलता है तो लगता है कि और 15 मिनट उसको सुनते रहे सुनते रहे, तो मधुरता मिठास जो है मधु देता है। और चीनी शक्कर जिसको बोलते हैं शास्त्रों में, तो मिश्री का

0: तो हमारे जीवन में, हमारे अंदर में जितने मैल हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्षा, माया, अभिमान
1: जी।
0: और खास करके अभी के समय में ईगो बहुत रहता है सभी
1: बहुत
0: को
1: ज्यादा
0: तो उनको दूर करने वाली जो है चीनी है
1: जी।
0: और पंचामृत जो है उसको पांच चीजों से मिलाकर बनाया जाता है, दूध, दही, घी, मधु और चीनी।
1: और इसको कहते हैं पंचामृत, इसमें हाँ, अमृत भी है।
0: अमृत तो ये पांच जो है इस पृथ्वी पर के अमृत है।
1: और इसमें क्या होता है?
0: तो पंचामृत चढ़ाने से हमारे अंदर में पांच, हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना है
1: जी,
0: फाइव एलिमेंट्स बोलते हैं जिसको
1: जी, जी, जी।
0: तो पंच तत्व से बना शरीर है, तो पंचामृत चढ़ाने से वही पंच तत्वों का बना शरीर उसको भगवान शुद्ध करते हैं।
1: इसमें दही होती है
0: हाँ, दूध पहला आता है, दूध, दही, घी, मधु और चीनी
1: जी।
0: ये पांच चीजें होती है
1: जी।
0: और चीनी यहाँ तो चीनी बोलते हैं लेकिन उसमें डाली जाती है मिश्री। मिश्री और चीनी में बहुत फर्क है
1: जी।
0: मिश्री जो है वो शुद्ध होती है, वो शरीर को ठंडक देती है, लेकिन चीनी गर्म होती है
1: जी।
0: उसमें थोड़ी केमिकल भी आते हैं तभी चीनी बनती है
1: जी।
0: तो मिश्री डालने से वो पंचामृत बनता है
1: जी।
0: फिर आता है चंदन वाला जल, जैसे हम सभी को सौभाग्य चाहिए, सौभाग्य यानी जितने भी ऐश्वर्य है, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, पैसा, हाँ, तो चंदन जो है सौभाग्य देता है, मतलब कि सभी प्रकार के सुख देता है। अत्तर यानी सुगंधित, हमारा जीवन और सुगंधित बने, ऊर्जावान बने, इसलिए जो है सुगंधित जल भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद फल का रस, जैसे गन्ने का रस है,
1: कोई गन्ने का रस क्यों चढ़ाया जाता
0: है? गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता है।
1: अच्छा जी,
0: गन्ने का रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
1: बहुत बारी मैंने सुना है कि अगर आप गन्ने का रस नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो जो गुड़ होता है उसको पानी में घोल के चढ़ा
0: जी, इसलिए क्योंकि गुड़ जो है गन्ने के रस से ही बनता है। हाँ, गन्ने के रस को उबाल करके उसको बनाया जाता है, जब वो उबल करके एकदम गाढ़ा बन जाता है फिर उसको ठंडा किया तो वो गुड़ बन जाता है। तो इसलिए अगर गन्ने का रस उपलब्ध न हो तो आप गुड़ को भी पानी में घोल करके भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। फिर आता है फल का रस, तो फल का रस इसलिए चढ़ाया जाता है कि हम सभी को जीवन में अच्छे फल चाहिए ना। हम पूजा करते हैं, कोई कार्य करते तो चार फलों के लिए करते हैं, उसमें पहला आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चारों फल देने वाले जो है ये फल का रस है। फल भगवान को हम फल अर्पण करेंगे तो भगवान हमको अच्छे फल देंगे
1: जी। तो गन्ने का रस हो गया, फिर उसके बाद
0: फल का रस
1: हम हाँ। क्या कहते हैं, नारियल का जल चढ़ाते हैं उसमें,
0: तो नारियल भी एक फल का ही रस है
1: जी।
0: तो नारियल को चढ़ाने, नारियल को संस्कृत में बोला जाता है श्रीफल हाँ, श्रीफल उसका नाम है, लेकिन ये हम नारियल बोलते हैं
1: जी।
0: उसका ओरिजिनल नाम श्रीफल कहा गया है। तो श्री यानी लक्ष्मी
1: जी,
0: नाम ही श्री से शुरू होता है।
1: अच्छा, तो ये भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए,
0: लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी होता है। और सभी देवताओं में, देवताओं को नारियल बहुत पसंद है
1: जी।
0: आप कोई भी पूजा करो सब में नारियल की जरूरत पड़ती
1: है, होता है।
0: हाँ, तो नारियल इसीलिए क्योंकि नारियल चढ़ाने से उसको एक, उसका जो जल होता है वो गर्भ के अंदर रहता है
1: जी।
0: तो नारियल का जल चढ़ाने से हमारे अंदर में, हमारे गर्भ में यानी हमारे मन के अंदर में जो बुरे विचार है उनको वो दूर करता है
1: जी।
0: और गंगा जल चढ़ाने से भगवान मोक्ष देते हैं। हम सब मोक्ष के लिए ही भगवान की पूजा करते हैं
1: जी,
0: क्योंकि जो जीवन मरण का चक्र है, जो मृत्यु होती है फिर हम कहीं जन्म लेते, सनातन धर्म में हम विश्वास रखते पुनर्जन्म का
1: जी।
0: तो पुनर्जन्म के विश्वास को टालने के लिए, पुनर्जन्म हमारा न हो, फिर से इस पृथ्वी पर आना न पड़े और बार बार पाप करके किसी दूसरे योनि में भोगना नहीं पड़े,
1: भागीदार ना बने,
0: इसलिए जो है गंगा जल चढ़ाया जाता है जिससे हमको भगवान मोक्ष देते हैं। तो ये सभी वस्तुएं है। और मैंने कहा कि वैसे तो भगवान की पूजा चार प्रकार के फल पाने के लिए ही हम करते हैं
1: जी।
0: भगवान की पूजा जब भी करो, हम लोग, मैं तो सब जगह बोलता हूँ कि भगवान की पूजा जब करो, ये तो भगवान देते ही है, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है ना, सबको देते हैं, सब जानते हैं। और हम भी एक यहाँ पर मॉरिशस में सब जगह सब लोग, छोटे से छोटा बच्चा से लेकर बड़े से बुजुर्ग तक में एक प्रार्थना हम सभी लोग बोलते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोलते हैं ना
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो उसमें हम भगवान को कहते हैं आप मेरे माता है, आप मेरे पिता है, आप मेरे भाई है, आप मेरे बंधु है, सब कुछ आप भगवान को कहते हैं। तो भगवान से ये सब मांगने की, बोलने की जरूरत ही नहीं, भगवान को सब पता है। क्योंकि आप याद कीजिए, आप सभी लोग जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, याद कीजिए कि जो आप छोटे थे आपको बोलना भी नहीं आता था तो बिना बोले आपके माता पिता समझ जाते थे कि आपको भूख लगा है, आपको नींद आ रही है, आपको सोना है, आपको खाना है, आपको बैठना है, आपको
1: घूमने, पेट में दर्द है,
0: हाँ,
1: आपको दर्द हो रहा है।
0: तो इस प्रकार जो है सभी बिना बोले ही आपके जो मनुष्य रूप में जो माता पिता है उसको पता चल जाता है। तो ये शिव जी और पार्वती जगत के माता पिता है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कालिदास जी ने भी लिखा है कि जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत के माता पिता है
1: जी।
0: तो इस जगत के माता पिता को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप निस्वार्थ भाव से पूजा कीजिए। भगवान शंकर जो है कल्याण करने वाले, मैंने कहा ना सम करो तो इति शंकर, सम यानी कल्याण, कल्याण करने वाले ही शंकर है, उनके ऊपर आप निस्वार्थ भाव से कुछ भी चढ़ाइए, सब सुनता है, नाम ही भोला बाबा है।
1: मैं आपसे जानना

0: चाहती हूँ कि जब हम पूजा करते हैं तो इनका सही समय क्या होता है?
1: पूजा का सही समय जो है, यहाँ पर तो मंदिर के अनुसार अलग अलग टाइम होता है, तो वैसे शिव जी की पूजा आप एनी टाइम कर सकते हैं, कभी भी, रात्रि में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, सवेरे भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मंदिरों में अलग अलग टाइम होता है। जैसे हमारे मंदिर की बात करें तो हम लोग सवेरे 5:30 बजे सोमवार को अभिषेक करते हैं, बाकी नॉर्मल टाइम में 6 बजे मंदिर खुल जाता है, पूजा पाठ हो सकता है। अपने घर में भी वैसे तो हमारे शास्त्रों में तो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे का जो टाइम होता है, 6-6:30 बजे का टाइम जैसे सूर्योदय होता है तब तक का जो मुहूर्त कहते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा की जाती है। फिर संध्या काल, शाम को संध्या काल यानी 6 बजे से लेकर 7:30 बजे का जो टाइम होता है उसको संध्या काल कहते हैं। उसमें भी भगवान की पूजा अर्चना जो है, और अभी तो बहुत अच्छा समय है, अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के लिए कहा गया कि अधिक अस्य अधिकम फलम, अधिक मास में जितना आप करेंगे उसका अधिक फल मिलता है। नॉर्मल दिनों की बजाय इस अधिक मास में जितना भी आप कुछ करेंगे उसका 100 गुना पुण्य है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि अभी अगर हम लोग शिव अभिषेक करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सोमवार को नहीं, कभी भी हम शिव अभिषेक कर सकते हैं।
1: शिव अभिषेक कभी भी कर सकते हैं, शिव अभिषेक के लिए कोई टाइम नहीं है,
0: तो हम कभी भी कर सकते हैं। और जाकर जैसे आपने अभी विधि बताया कि क्या करते हैं, तो इसमें कभी कभी होता है कि हम पहले दूध डाल देते हैं या पहले दही डाल देते हैं या पहले हमने कुछ भी चढ़ा दिया, तो शिव जी सब माफ कर देते हैं, बस एक बार आप कर रहे हो, या इसकी पूरी विधि के साथ होना चाहिए?
1: एक अच्छी बात कही आपने, एक कथा आपको एक सुना देता हूँ, शिव पुराण की कथा, एक छोटी सी कथा आपको सुना देता हूँ कि एक शिकारी था, शिकार करने के लिए गया था, शिव पुराण में ये कथा है, शिव पुराण की विंध्येश्वर संहिता में महात्म्य के कथा में भी है कि वो शिकारी शिकार करने गया था, शिकार करते करते शाम हो गई, कोई शिकार नहीं मिला, और वो गया था बुरा काम करने के लिए, शिकार करने के लिए, किसी को मारने के लिए, शिकार नहीं मिला तो वो एक पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ करके वहाँ बैठ करके वो शिकार की राह देखने लगा। अभी रात्रि होगी, रात्रि में सब जानवर बाहर निकलेंगे, रात्रि में वो किसी जानवर को देखेगा तो शिकार करेगा, तो पेड़ पर चढ़ गया। अब वो पेड़ था बिलीपत्र का पेड़, बिलीपत्र के पेड़ पर बैठा बैठा शिकार में राह देखता देखता एक एक पत्ते को तोड़ तोड़ करके नीचे डालता गया। उसको पता नहीं था उसी पेड़ के नीचे में जो है शिवलिंग था, तो कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर वो पत्ते डालते डालते डालते शिव जी प्रसन्न हो गए। तो भगवान, मैंने कहा ना भोले बाबा है, एकदम भोले हैं, लेकिन हाँ हमारे कर्मकांड के अंदर में विषय में ऐसा लिखा गया कि लाइन से सब जो है दूध दही घी मधु चीनी ये कर्मकांड के अनुसार जो है ये सब लाइन से चढ़ाना होता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो भगवान को आप चढ़ाएंगे तो भगवान तो भोले बाबा है, सब ग्रहण कर लेता है
0: जी।
1: और दूसरी बात कि जब अभिषेक करें, अगर मंदिरों में कोई पंडित जी पुरोहित जी करे तो पंडित जी जो है एक मंत्रों से अभिषेक कराते, उसको बोलते हैं रुद्राष्टाध्यायी। हो सके तो सभी मंदिरों से हम अनुरोध करते हैं सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से कि मंदिरों में रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक के समय पाठ जरूर करें। उसमें 8 अध्याय होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद का कुछ मंत्रों के पाठ होते हैं, उसमें 8 अध्याय होते हैं। उसमें पहला शिव संकल्प सूक्त होता है, दूसरा पुरुष सूक्त होता है, तीसरा जो है मैत्रेय सूक्त कहते हैं, चौथा जो है तीसरा इंद्र सूक्त कहते हैं, चौथा जो है सूर्य सूक्त कहते हैं, पांचवा जिसको बोलते हैं रुद्र सूक्त, यानी भगवान शिव जी का ही 66 मंत्रों का एक सूक्त होता है, पाठ होता है
0: जी।
1: उसको रुद्र सूक्त कहते हैं। फिर 6ठा अध्याय होता है और 7वां अध्याय नमकम कहते हैं, उसको नमक चमक, उसमें चमय चमय बार बार शब्द आता है। इसका मतलब उस भगवान से हम सब मांगते हैं कि भगवान आप हमको ये दीजिए, जमीन दीजिए, सब प्रकार की चीज़ें उसमें मांग ली जाती है
0: जी।
1: तो नमकम का पाठ होता है और 8वां अध्याय होता है, उसमें कल्याणकारी कई प्रकार के मंत्र हैं जिसमें हमारा कल्याण होता है। अंत में आता है स्वस्ति प्रार्थना आदि, यानी भगवान की प्रार्थना के मंत्र
0: जी।
1: तो ये 8 अध्याय होते हैं। हो सकता है तो रुद्राष्टाध्याय का पूरा पाठ करें अभिषेक के समय, और न हो सके तो कम से कम 2 अध्याय का पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त का तो पाठ जरूर होना चाहिए अभिषेक के समय
0: जी। अभी आप हमें बता रहे थे कि हम जब शिव जी के रुद्र रूप की पूजा करते हैं तो हमारे पाप जो हैं वो सारे धुल जाते हैं। अब हमने पिछले जन्म में क्या पाप किया हमें तो नहीं पता, फिर भी इस जन्म में हमें भुगतना पड़ता है
1: जरूर।
0: अब अगर हम अपने पापों को मिटाना चाहते हैं, उनसे हम निकलना चाहते हैं, तो हम ऐसी कौन सी प्रार्थना करें शिव जी से और कैसे करें कि वो हमारी सारी पाप धुल जाए?
1: जैसे अगर आपको कोई वेद मंत्र नहीं आते हो, यहाँ पर सभी लोग त्र्यंबकम मंत्र तो सभी लोग जानते ही हैं।
0: जी जी जी,
1: इसको बोलते महामृत्युंजय मंत्र, उसमें आगे पीछे कई सारे बीज मंत्र लगाने से, जैसे ओम होम, ओम झूम, ओम सह, ओम भूर्भुव स्वः, ऐसे बीज मंत्र आगे पीछे लगाने से वो महामृत्युंजय, एक होता है मृत्युंजय मंत्र जो त्र्यंबकम यजामहे हम बोलते हैं, उसको आगे पीछे

0: बीज मंत्र लगाया जाए तो हो जाता है महामृत्युंजय मंत्र
1: जी।
0: तो ये महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय
1: जी,
0: ये सबसे आसान और सिंपल है, जिसमें कोई गलती नहीं। अगर मृत्युंजय मंत्र बोले तो उसमें कोई ह्रस्व दीर्घ की या तो कोई भी संधि की भूल हो सकती है, शब्द की भूल हो सकती है, लेकिन ये नमः शिवाय मंत्र ऐसा, इसमें किसी भी प्रकार की भूल नहीं हो सकती। और ये पांच अक्षर जो है शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, वही एक एक एलिमेंट को जो है प्रेजेंट करता है
1: जी।
0: एक एक अक्षर जैसे न म शिवाय, तो ये पांच मंत्र जो है, और बाकी कई सारी स्तुतियां है, कई लोगों को लिंगाष्टकम आता है तो लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं, पंचाक्षर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं आता है तो मैंने कहा जैसे ओम नमः शिवाय
1: जी,
0: तो ये मंत्र का तो आप पाठ कर,
1: तो कोई भी कर सकता, हाँ,
0: कोई
1: ये
0: भी
1: तो
0: कर सकता,
1: बच्चा करता
0: हाँ,
1: है।
0: तो कोई भी पूजा करते समय, कोई भी स्तुति करते समय, प्रार्थना करते समय ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं।
1: चलिए, तो इसी के साथ हम आचार्य जी, हम शिव जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं, एक भजन सुनते हैं, कार्यक्रम को हम थोड़ी देर में जारी रखेंगे। श्रोताओं,

0: हर हर महादेव। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंगलाचरण, इसे सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे बीच आचार्य नरेंद्र कुमार व्यास जी हैं और इनसे हम आज बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत सारी विधियां हमने सीखी, कैसे पूजा की जाती है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और आचार्य जी, आज तो हम धन्य हो गए, अब हमें पता चल गया है कि जब हम अभिषेक करने जाएंगे तो हमें कौन सी जो वस्तुएं चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हमें चाहिए अभिषेक करने के लिए, हमें ये तो पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कौन सा मंत्र जो है उनका उच्चारण कर सकते हैं। तो आचार्य जी, अभी हमने सुना है कि ये गुरुकुल शिक्षा जो है ये शुरू हो गया है। गुरुकुल तो मुझे पता है, पहले राम जी के समय पर मुझे पता है कि उनको गुरुकुल भेजा गया था, जहाँ पे वे ऋषियों से सीखते थे शस्त्र चलाना और बहुत कुछ, जैसे उनका स्कूल हुआ करता था वो सीखते थे। अभी तो भारत में तो हॉस्टल है, लेकिन मॉरिशस में तो नहीं है। तो अभी आप लोग जब गुरुकुल शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें बताइए कि ये गुरुकुल शिक्षा कोर्स क्या है।
1: तो अभी पहले हम समझेंगे पुराने गुरुकुल सिस्टम को
0: जी।
1: पहले गुरुकुल पद्धति ऐसी होती थी कि पहले के समय में स्कूल ही गुरुकुल थे
0: जी।
1: उस समय क्या होता था, राजा महाराजा से लेकर के कोई भी अंत्य से अंत्य वर्ण का भी व्यक्ति जो है गुरुकुल में प्रवेश पा सकता था,
0: हर एक बच्चा।
1: तो उस गुरुकुल में एक गुरु होते थे और गुरु के पास ही, गुरु के घर पर ही वो विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए जाता था
0: जी,
1: और वहीं पे रहता था। और पुरानी गुरुकुल पद्धति में आपने नाम सुना होगा नालंदा विश्वविद्यापीठ
0: जी,
1: जो बिहार में आज उनके अवशेष है
0: जी।
1: और एक विद्यापीठ थी तक्षशिला जो पाकिस्तान में रावलपिंडी में, उसके अवशेष अभी तक है। तो ये दो गुरुकुल जो है सबसे बड़े होते थे
0: जी।
1: और भारत में अभी हाल ही में भी कई सारे, हम भी गुरुकुल से ही पढ़े हैं, तो कई सारे गुरुकुल हैं तो वो भी उसी पद्धति से काम करते। उसमें जो है संस्कृत से लेकर व्याकरण, साहित्य, अर्थशास्त्र जो है, इस प्रकार की अलग अलग शिक्षाएं दी जाती है। खगोल शास्त्र है, ज्योतिष है, विज्ञान है। और आपने सुना होगा महर्षि चरक के बारे में, जिसने आयुर्वेद में एक ग्रंथ लिखा चरक संहिता
0: जी,
1: वो भी गुरुकुल के ही छात्र थे। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा
0: जी, जी, जी।
1: तो चाणक्य जो है सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, उसने इकोनॉमिक्स की रचना की, वो भी गुरुकुल के ही गुरु थे। तो चाणक्य जी है, कई सारे राजा, चंद्रगुप्त मौर्य है और कई सारे जो है राजा उस समय गुरुकुल में पढ़े थे।
0: भगवान श्री राम भी तो
1: हाँ। और दूसरे देशों में हम समझे तो ह्यूएन सांग जो चाइना के बहुत बड़े विद्वान थे उस समय, वो भी भारत गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए थे। और जापान से भी लोग आते थे, कई सारे सीरिया दूसरे देशों में से भारत में गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते। तो गुरुकुल इतना बड़ा था, गुरुकुल की विद्या इतनी बड़ी थी, उसमें सब कुछ सिखाया जाता था। लेकिन आज के समय में ये सब संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है

0: में भी पढ़ते हैं, तो स्कूल के साथ साथ में यहाँ पर मॉरिशियस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन ने गुरुकुल शिक्षा कोर्स का जो है आयोजन किया है। उस शिक्षा के अंदर में संस्कार सिखाए जाते हैं, उसमें जो है मंत्र सिखाए जाते हैं। कई सारे बच्चे जो है मंत्र नहीं जानते, तो उनको मंत्र बोलना, भगवान की स्तुति कराना, स्तुति सीखना, ये सब सिखाया जाता है। साथ में योगा भी चलता है और धार्मिक शिक्षा है। आजकल के बच्चे जो है इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ बुरी आदतों में लग गए हैं, तो उनको जो है धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसमें। और साथ में जो है संगीत, संगीत जो है हमारे गुरु जी कहते थे कि जीवन में कोई भी एक संगीत का वाद्य यंत्र आपको बजाना आना चाहिए, जीवन में कुछ भी हो, कुछ नहीं तो झाल बजाना भी आ जाना चाहिए आपको। जीवन में एक संगीत का साधन जो है आपको जीवन में सीखना चाहिए।
1: गाना नहीं आता तो बजाना आना चाहिए,
0: बजाना आना चाहिए। तो कहने का मतलब जो है इसमें धर्म संगीत भी सिखाया जाता है, भजन कीर्तन आदि। और अभी हाल ही में जो है ये शिक्षा कोर्स जो सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से बनाया गया है वो 23 मंदिरों में कार्यरत है। तो नॉर्थ रीजन में जो है विश्वनाथ मंदिर वालिदेपुरी में है, महेश्वरनाथ मंदिर त्रियोले में है, शिवराम मंदिर फोंजीसाक में है, नीलकंठ मंदिर लॉन्ग माउंटेन में है, गोकुला में एक मंदिर है गोकुला टेम्पल सोसाइटी, रामेश्वरनाथ सोसाइटी रोंपो में है, और शिव शक्ति मंदिर कोंडेमास में है, पापले मुसस में शिव शक्ति मंदिर। उसके बाद साउथ रीजन में जो है विश्वनाथ मंदिर प्लेन मायो में, सिद्धेश्वर मंदिर त्याक में, और त्र्यंबकेश्वर मंदिर रोजबेल में, नागेश्वर मंदिर जो है रिवेडियो सांगली उसमें है, मोका रीजन में केदारनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर जो है दागोचिया में है। ईस्ट रीजन के अंदर में आप देखेंगे तो गयानाथ मंदिर बोनाके में, पुष्पलोचन मंदिर बेलेर में, महेश्वरनाथ मंदिर जो है कोंडेमास पावे में, सनातन धर्म सभा लाल माटी में। उसके बाद जो है मोटाई ब्लॉस में श्री कृष्णा एक गौरी शंकर मंदिर है, और गणेश्वरी सभा बेलमौर में है, महेश्वरनाथ मंदिर रिशमाव में है, और प्लेन विलियन रीजन में गीता मंदिर जो है फॉरेस्ट साइड में, रामायण मंडल हिंदी स्कूल जो है ग्लेन पार्क में है, और निर्वाण मंदिर काट्रोबोन में। इस प्रकार 23 मंदिरों में अभी गुरुकुल शिक्षा कोर्स जो है कार्यरत है।
1: जी, तो यहाँ पर बच्चे आते हैं और सीखते हैं।
0: जी, तो यहाँ पर सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से कुछ शिक्षक है, कुछ सिखाने वाले गुरु जी है जो गुरुजन आते हैं और वहाँ बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं।
1: वैसे आज तो हमने भी बहुत कुछ सीखा आपसे, आभारी हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बहुत सारी विधियाँ सिखाई, और मनुष्य यही चाहता ना कि उसके पाप जो है वो धुल जाए।
0: जी जी,
1: इसलिए कहते हैं गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। आज तो आपने हमें ये भी बता दिया कि हमें अगर अपने पाप धोने हैं तो शिव जी के रुद्र रूप की पूजा करो, और मंत्र अगर ज़्यादा नहीं आता तो ओम नमः शिवाय बोल दो, इससे हमारे पाप धुल जाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो रहा है, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप?
0: जी, जाने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा धर्म है, धर्मों को आप धर्म की रक्षा करेंगे धर्म आपकी रक्षा करेगा।
1: जी।
0: हम कहते हैं ना धर्मो रक्षति रक्षिता, तो धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म के अंदर में रहिए, धार्मिक बनिए, धार्मिक यानी प्रामाणिक ऑनेस्ट बनिए, और धर्म का पालन करते रहिए और धर्म में लगे रहिए। यही आज की शिक्षा है। सभी को प्रणाम, सभी को जय सियाराम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो प्रिय श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम मंगलाचरण यहाँ पर समाप्त होता है। इसे आपके लिए सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से प्रस्तुत किया गया, और हमारे बीच आचार्य नरेंद्र कुमार व्यास जी जो श्री गोस्वामी तुलसीदास शिव मंदिर चित्रकूट वालिदेवहट से यहाँ आए थे, काफ़ी कुछ सिखाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी प्रेम से सुना हमें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन,

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा से। करुणा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशियनों के रोजगार को सुविधाजनक बना रहा है, खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत। दो वर्षों में पायलट आधार पर 50 द्विभाषी मॉरिशियनों की भर्ती की जाएगी। निर्माण, शिक्षा और होटल उद्योग प्रमुख होंगे। श्रम मंत्री रेजा उद्दीम के अनुसार ये पहल मॉरिशियन नागरिकों को फर्जी नौकरियों से बचाने में मदद करेगी। मोबासा रोजिल का नया मेयर एमएमएम के लुई ऑन्द्रे टुसें बने हैं, जिन्हें कल नगर परिषद द्वारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के तहत चुना गया। उन्होंने गाब्रिएला बाटू की जगह ली है। रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव की जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर बनी रहती हैं। गौरतलब है कि इस सोमवार को काटरबोन, पोर्टविस, वाक्वाफिनिक्स और क्यूपिप नगर परिषदों में भी मेयर और उप मेयर के चुनाव होंगे। मॉरिशस में मराठी समुदाय के प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की मांग पर किया गया। विदेश में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और 21 लोग घायल हुए हैं। शहर के मेयर ने बताया कि रिहायशी इमारतों, स्कूल, दफ्तरों और मेट्रो ढांचे को नुकसान पहुंचा है और लगभग 3 महीने से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में प्रगति के संकेत मिले हैं। ईरान अमेरिका और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और अगले कुछ दिन बेहद अहम हो सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

सामिन कराम, अभी आपने सूरा मुल्क की तिलावत समात फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, दुल्हिज्जा का बाबरकत महीना जारी व सारी है। दुल्हिज्जा इस्लामी साल का वो 12वां महीना है जो हुरमत वाले महीनों में शामिल होता है। इस माह मुकद्दस के इब्तदाई 10 दिन बरकतों और रहमतों वाले होते हैं, जिनमें रब कदीर की रहमत बंदों पर हर वक्त बरसती है। इस महीने के पहले 10 दिनों में जितना हो सके हमें अपनी नेकियों में इजाफा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। सामईन, याद रहें, आप अपने पैगामात, अपनी दुआएं हम तक पहुंचा सकते हैं इस नंबर पर 5251705251705। आइए तिलावत कलाम पाक के बाद कसीदा बुर्दा शरीफ मुलायजा फरमाएं।

सामईन कराम, वाकये कुर्बानी से हमें बहुत सारी नसीहतें मिलती हैं। हज़रत सैदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में इताअत इलाही का कैसा जज्बा था कि वो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अपना वो बच्चा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए जिसको बड़ी दुआओं के बाद बुढ़ापे में पाया था, जो उनकी आँखों का नूर और दिल का सुरूर था। दूसरी तरफ बेटा हो तो ऐसा, हज़रत सैदना इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म सुनकर गमगीन और गमज़दा खौफजदा होने के बजाय बखुशी अल्लाह पाक की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। बिलाशुबा ये सब्र और रज़ा का ऐसा मंज़र था जिसकी मिसाल नहीं मिलती।

मोहतरम सामईन, आइए चंद पैगामात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। त्रियोले और कौमाली फैमिलीज़, त्रियोले से कौमाली और बंधु फैमिलीज़ की तरफ से ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो। वाकवा से मोहतरमा शहनाज़ हमें लिखती हैं कि उनके मामू का इंतकाल माह दुल्हिज्जा की 7 तारीख को हुआ था, यानि कल की तारीख। अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत फरमाए। अल्लाह ताला पेश किरदा सूरा मुल्क की तिलावत को उनके हक़ में बल्कि तमाम मरहूमीन के हक़ में कबूल फरमाए। आमीन।

मोहतरम सामईन, इस वक्त आप निसार के साथ उर्दू नशरियात बज़्म अकीदत समाअत कर रहे हैं। आइए एक ऐलान गौर फरमाइए। बुध 27 मई को सुबह के 10 बजे अलमदीना हॉल कौफुको फिनिक्स में उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में ख़ास महफिल अरफात मुनाकिद होगी। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है और उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो बराए करम सफ़ेद लिबास पहन कर आएँ। सामईन, रिविय जुगोंपा से मोहतरमा ज़ैदा हमें लिखती हैं कि वो तमाम हुज्जाज कराम के लिए दुआएं पेश करती हैं। अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान फरमाए और उनकी इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए। आखिर में उन्होंने एक कलाम की फरमाइश की है, काबा दिखा दे मौला। तो आइए ये अगला कलाम आपके नाम। और सामईन, याद रखिए आप भी अपनी फरमाइशें, अपने पैगामात, अपनी दुआएं हमें भेज सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं 5251700552517005 पर

सामईन हमें भी अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हुए उनकी इताअत में ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। सामईन, अगला पैगाम हमें क्यूपिप से मौसूल हुआ है। मोहतरमा फौजिया हमें लिखती हैं कि वो अपने मरहूम शौहर रिशाद तुगाबाली के लिए इस साल सवाब की दुआ पेश करती हैं। उनके बच्चे बिलखसूस मुस्लिमा, यासीन, मुजफ़र, मरियम और नवासी जिन्नारा और इम्मारा की तरफ से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अगला पैगाम भी क्यूपिप से हमें मौसूल हुआ है। मोहतरमा बेन मुहंग हमें लिखती हैं कि उनके भाई, उनके मरहूम भाई अबू साले मुहंग को इंतकाल हुए 12 दिन गुज़र चुके हैं, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, बल्कि तमाम मरहूमिन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमिन को अपनी बेपाया रहमत के साए में जगाता फरमाए, उनकी लग्जिशों को दरगुजर फरमाए और उनकी कब्रों को नूर, सकीनत और दायमी रहमत का गहवारा बनाए।

सामईन इकराम, आइए चंद और पैगामात आपकी नज़र पेश करते हैं। क्यूपिप से हमें एक और पैगाम मौसूल हुआ है। मोहतरमा रुबीना हमें लिखती हैं कि वो अपने वालिद मरहूम अब्दुल मन्नान चोनू और अपने मरहूम भाई रियाज ख़ान चोनू के हक़ में इस ताले सवाब की दुआ पेश करती हैं। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगला पैगाम हमें पोटली से मौसूल हुआ है। मोहतरमा नाजमुन हमें लिखती हैं कि वो कि ख़ास इस आले सवाब मरहूम सकूर, मरहूम और मरहूम नदीम पियाबुकस के लिए, जिनका इंतकाल माह दुल्हिज्जा को ही हुआ था। अल्लाह पाक मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और अगला पैगाम हमें लाविनिया से हासिल हुआ है। कालाचन ने दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की हैं अपने नवासे मोहम्मद शहज़ाद के लिए। तो हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, वालिदे ब्रिज से मोहतरमा सकीना हमें लिखती हैं कि वो अपने मरहूम अबू तालिब मुदाबक्स के हक़ में दुआ इसाले सवाब पेश करती हैं, जिनको इंतकाल हुए 7 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मगफ़रत फरमाए और उनको बेहतर जगह अता फरमाए। अगला पैगाम पोटलवी से ही मौसूल हुआ है। मोहतरमा शबनीज़ अपनी बेटी रिमशा सिदरा और बेटे इजहान के लिए ढेर सारी दुआएं पेश करती हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए।

मोहतरम सामईन, इसी खूबसूरत कलाम के साथ हमारा आज का बज़्म-ए-अक़ीदत प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद है आज की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अब निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार हैं। रुख्सत होने से पहले आप सभी को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व ताला हमारी कुर्बानियों को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इस ईद को हमारे लिए रहमत, मोहब्बत और खुशियों का पैगाम लेकर आए और हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सब्र और रज़ा का ज़र्रा भर भी नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह निगहबान।

பரிபுற நிறுத்த பதம் வைத்து பயிர விதி கொட்க நடிக்க

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: प्रिय श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। ओंस, जोंशे, तेर कासे और बोंपू वीरिये के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 25 मई को दिन के 11:30 बजे से शाम के 3 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और दो फ्रेयर और कत्र सेर के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 25 मई को दिन के 9 बजे से दिन के 11:30 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर मौसेलमो फेयर व्यू और मौसेलमो ग्रीन व्यू मौदार बेयर के रहने वाले लोगों

0: को सूचित किया जाता है कि आगामी मंगलवार 26 मई को दिन के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई जारी कर दी जाएगी। सीबीएन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
1: ముత్యాల స్వరాలు।

चल रहा है।

नमस्कार और प्रणाम श्रोताओं, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय शाम के 4:12 हो चुके हैं। आप सभी का स्वागत करती हैं पूजा हम और आप कार्यक्रम में, एक ऐसा मंच जहां सिर्फ आवाजें नहीं दिल भी बोलते हैं, जहां हर एहसास की अपनी कहानी होती है। श्रोताओं, जीवन में हम रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। कुछ हमें मुस्कान देते हैं, कुछ आंसू, कुछ लोग हमारी दुआ बन जाते हैं।

0: जाते हैं और कुछ जीवन भर का दर्द। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। क्योंकि शब्द हवा में खो जाते हैं, लेकिन कर्म समय की किताब में हमेशा लिखे जाते हैं। आज का हमारा विषय कर्म है, जो लौट कर जरूर आता है। कभी सोचा है, जिस दर्द को हम किसी और की झोली में डालते हैं, शायद वही दर्द किसी मोर पर हमारा इंतजार कर रहा होता है। और कभी किसी भूखे को खिलाया हुआ एक निवाला, किसी रोते हुए इंसान को दिया गया एक सहारा, भगवान उसी को हमारी खुशियों की वजह बना देती है। आज हम बात करेंगे उन कर्मों की, जो रिश्ते बनाते हैं, जो रिश्ते तोड़ते हैं, जो इंसान को ऊपर उठाते हैं और कभी अकेला भी छोड़ जाते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज दिल खोल कर बात करते हैं। क्या सच में कर्म लौट कर आते हैं? क्या अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है? और क्या किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है? फ़ोन उठाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ हम और आप कार्यक्रम में। नंबर वही है 4028085 92 80 85। आइए, लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। चलिए, मैं सभी को 3-3 मिनट दूंगी। विषय बड़ा ही गंभीर है और सभी को हम अवसर देते हैं। हेलो,
1: नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार हरि जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, ऊपर वाला का दया है। तो आपके जो विषय है जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। क्योंकि जो भी इंसान आता है इस धरती पर, वो एक मिशन के लिए आता है। भगवान जो हमको इस दुनिया में हमको जन्म देते हैं, तो एक प्लान के मुताबिक, एक मिशन के मुताबिक हम इस जीवन को जीते हैं। कुछ कर्म हमको करना है, हम ही नहीं जीते हैं। तो जब हम सोच समझ कर किसे एज पर आते हैं, मैच्योरिटी, जब 19-20 ईयर्स, अब हमको सब कुछ मिल जाता है, एजुकेशन से, अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, तो हमको अपने डिसीजन लेना चाहिए किस तरह से अपने जीवन जीते हैं, जिएंगे। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अवश्य हमको अच्छे फल मिलेंगे। व्हाट यू सो यू रीप। अगर अच्छे कर्म यू सो, अगर प्लांटिंग कर रहे हैं ओम दामु, तो आप रोपेंगे ओम दामु। एक लाख आप डालेंगे लाते में, तो कितने ओम दामु मिलेगा, कितने लाख है, 100,000। तो ये हमारा विचार है कि हम जो जीवन जिए हैं अभी तक, एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपने अनुभव के मुताबिक, जो कुछ हमने किया है ठीक से किया है, किसी के जीवन को, किसी के मदद की है, वो सब हमारे जीवन, हमारे बच्चों, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को रीप करना करते हैं, वापस आते हैं। लास्ट वर्ड आई विल टेल यू पूजा जी, ये हम वाइब्स कहते हैं, जो यूनिवर्स में हम जो वाइब्स बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ जो हम बोलते हैं, हमारे मुंह से निकलता है जो वाइब्स, यूनिवर्स में ये जाता है, हमारे जीवन में लौट के आते हैं 100 टाइम्स। ये हम पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड हम लेंगे तो ये हमको अवश्य मिलेगा। और अगर अच्छे बोलेंगे तो अच्छाई हमारे जीवन में आएगा वापस, कुछ मोमेंट्स के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ 20 ईयर्स 20 40 ईयर्स बाद हमको रोकना मिलता है, रोकने के लिए। वी रिपीट, दिस इज व्हाट आई थिंक पूजा जी, आई थिंक यू मे कमेंट ऑन दैट। थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी इस विचार के लिए। और आपको कहेंगे शुभ संध्या, आपने सही कहा है कि जो भी हम

0: रुपाई करते हैं वही फल बनकर हमारे जीवन में आते हैं। इंदिरा जी प्रणाम।
1: नमस्ते। प्रणाम पूजा जी।
0: प्रणाम।
1: मैं खुश हूँ आपसे कि आप बात कर रहे हैं कर्म के लिए। कर्म तो होते हैं क्या, जो कर्म कैसे पहचानते हैं, क्या करते हैं हम, तो क्या करते हैं, क्या नहीं लाते हैं अपने जीवन में, लाते हैं बढ़ते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं, और फिर जब उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ता है तो छोड़ देते हैं बदलते रिश्ते के लिए। सही है ना, कर्म जो कहे जाते हैं। ठीक है पूजा जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी आपके इस विचार के लिए, और आपको कहेंगे शुभ संध्या।
1: बात करने के लिए तो मौका नहीं मिलते हैं, और देर बात करने से क्या फायदा, जो जो किया है वो ही करना चाहिए।
0: अवश्य अवश्य, बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। हेलो प्रणाम अंगिरा जी।
2: जी बेटी, समाचार?
0: समाचार ठीक दादाजी, आप कैसे हैं?
2: तनी बीमार लिए अच्छा है।
0: चलिए हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएं।
2: और हमारे जितना मित्र द्वार सरुता है सुनने वाला सब कोई के भी हमारे प्रणाम।
0: आपको भी
2: जान लेना पूजा बेटी।
0: हाँ जी बोलिए।
2: कर्म जो है एकर से बच के रहा, चाहे तोरा बुरा काम भी करवा दे, एकर से धर्म के काम कर ले चला। कर्म उ कर जो कि तोरा के फल के इंतजार नहीं कर, फल देवे वाला बा ऊपर वाला दियन, पर धीरज से हर कदम उठेबर तो उ कर्म कर जो कि नाम तोर रह जाए अमर। ये करला से हमने के सब देश के भी भला बा, तोहर परिवार के भी भला बा। कर्म से बाकी नहीं रहेगी, कर्म कर ले जाएगी बेटी पूजा, और मांग ला कि सब कोई आनंद रहे और कर्म करते चलिए हमने के देश में। नमस्ते बेटी।
0: प्रणाम दादाजी, और आपको शुभ संध्या। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम अवसर देते हैं। प्रणाम।
3: हेलो नमस्ते। नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते विजय जी, प्रणाम आपको। कैसे हैं आप?
3: सब ठीक बात, सब ठीक बात, तू अच्छा हुआ ना?
0: अच्छा है, बोला।
3: पहला जितना जना सुन रहा था, जितना जना अभी बतिया बतिया अभी सब भाई बहन के मुझे प्रणाम हाथ जोड़ के ऐसा प्रोग्राम लेके आवेला सब लोकेशन भाग लेके मैं लोकाजन में अच्छा ना बतिया गया मन से बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमने के सबले बड़ा बात है यही बात एक मजा कि भगवत गीता में भगवान कृष्णा कर ले बारे कर्म कर ले जा और फल की इच्छा नहीं कर, वो मिली तोरा अपन कर्म तू कर ले चले जा और फल की इच्छा नहीं कर तू, वो मिले के रही तो मिली जिंदगी में जैसा कर उससे मिले रहते। मैं हमने के बड़ा निरूप सिखेले हमने के क्षण भर तक अच्छा करेगी कि जे हमने फिर कथी सपन कर्म कर ले जाती हमने के आज आज कर से काल मिली तो नहीं मिली ना, हमने के चला इंतजार करेगी आज जीवन में चाहला कब कोई के दिल नहीं तोड़ेगी, कब ने चाहला कोई के बुरा चाहेगी चाहला हमेशा अपन कर्म कर ले जाएगी। बस कि हम यहाँ नहीं से दो दिन के मेहमान आने से दुनिया में हम यहाँ नहीं से दो दिन के मेहमान सब संग चाहे मिलजुल के रहेगा अपन कर्म कर ले चले गए चाहला के मैं आर बटे आर इंसान बटे आर वो नहीं सोचे लाई सब बोला नहीं उकरा बुरे कर्म करी अच्छा लगे ला। मैं अवश्य नहीं जीवन में चला अच्छा कर्म कर ले चले के जहाँ फल के इच्छा नहीं कर जहाँ मिले के नहीं हमने मिली हमने की जब हम कर्म करे थी सब आपकी जे यहाँ पर आल बात यहाँ पर जितना इंसान यहाँ जन्म ले बटे सब आल बात धले गो हमने के गो मिशो यहाँ पर धले गो मिशो कहीं हमने के बात करे के थोड़ा दिन जिया नहीं से चला अपन कर्म अच्छा कर ले जा फल की चिंता नहीं कर तो हर फल मिले के रही नहीं मन तो मिली। मैं बुरा कर बताओ कहता कार्य करे सौ पूछा बोते हमारा ले जे बुरा कर्म कर बता थोड़ा अपना बुरा फल मिली। पूजा जी है हमारे विचार बाटे
0: और आपसे एक और प्रश्न पूछना है कि जो इंसान जो है किसी के साथ बुरा करता है और उसके सारा जो चीज है वो छीन लेता है और घमंड करता है देखो मैंने छीन लिया ये भी एक कर्म है, इसके ऊपर आपका क्या कहना?

0: प्रकाश डालिए।
1: हाँ, ये तो बहुत अच्छा बोला। मैं सुना ना जिकर आदत हमल इस त्यों से जिकर काम बुरा करे के बुरा बोले के तो ऊ जितना निमन आदमी बाकुरे अताके करियो ऊ जिकर कर्म को जब बुरा बात ओकरा नहीं जान गाली बुरा कर्म करता ओकरा जे अताके करे ओकरा ऊ जाना चाहिए जे ऊ जाई ओकर संगे अपन अपन बुरा काम करी तो ऊ जाने ऊ जाए फंसा जाए ओकर संगे जेले ओकरा बेज हो जाए ऊ भर सक निमन जो आदमी निमन कर्म करेला ओकरा खोजे लटे। मैं फिर भी जो पर्सन करला मैं ऊ ढेर दिन ऐसा ऐसा बुरा कर्म करला धोखेबाज करलक ठगलक तोरा तोहर जिंदगी खराब करलक तोहर परिवार में दरार आनलक तो ऐसा ढेर दिन ओकरा नहीं ढेर दिन नहीं टिकेला ऐसा ऐसा इंसान वो थोड़े दिन में ओकरा गुरु गजिलता आरे को बैसल बा ऊपर वाला जिन सबके हिसाब करे लटे हमनी से बच जाए इंसान से बच जाए मगर ऊपर वाला से नहीं बच यही हमारे विचार है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी इस प्रोग्राम के लिए आपके आपके परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद बोले।
0: धन्यवाद प्रणाम और शुभ संध्या आपको। एक और श्रोता है लाइन पर, चलिए उनको सुनते हैं। राधा जी प्रणाम।
2: हाँ नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार। नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: परिवार वालों को मैं हमारे जो परिवार बन गए हैं इस रेडियो के माध्यम में सभी को नमस्कार कर रही हूँ।
0: आपको भी।
2: हाँ, मैं कर्म के बारे में आप बोल रहे हैं ना
0: जी।
2: देखिए हम तो पढ़ते हैं ग्रंथ आदि ग्रंथ संत महात्माओं को हम सुनते आ रहे हैं और ऐसे अनेक धर्म है, सब धर्म का अपना अपना नियम है, अपना अपना विचार है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म में जो हम ग्रंथों को पढ़ते हैं संतों को सुनते हैं तो इसी कर्म को जो हम अभी हम पा रहे हैं उसको हम इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। यही हमारा प्रारब्ध है जो अभी हम भुगत रहे हैं, वो अच्छे रूप में भुगत रहे हैं या गलत हमारे साथ हो रहा है, यही हमारा प्रारब्ध है। पता नहीं हमने कब किस जन्म में क्या किया होगा, ये हमारे ग्रंथ के अनुसार है कि हमको मिल रहा है, गलत मिल रहा है, सही मिल रहा है, इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। अब देखिए हमें नहीं पता कि हमने क्या किया हुआ है। कैसे कुछ लोग कहते हैं मैं तो हमेशा भला करती हूँ, मैं हमेशा भला सोचती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं बीमार हूँ, मेरे साथ भगवान बहुत गलत। नहीं, ये गलत, ये सही नहीं है। देखिए बीमारी रोग ये अलग बात है, घर में छोटी मोटी तकलीफें ये अलग बात है, ये एक अलग अंग है जिंदगी का। लेकिन जो गलत काम करते हैं आंखों से कभी हमने देखा है कि उसके साथ कैसा हुआ है, तभी लोगों के मुंह से निकलता है कि इसने कुछ न कुछ ऐसा गलत कभी किया होगा। जो आज इसके साथ ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा पा रहा है, बीमारी रोग को हम इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि बीमारी तो ये स्वाभाविक चीज है पूजा जी, किसी को भी हो सकती है। किसी को कोई भी बीमार हो सकता है, इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि देखो ना ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बस कि क्योंकि हम सब मनुष्य हैं ना, कल हमारे साथ क्या होगा हमें भी पता नहीं। लेकिन कर्म का भुगतना, ये कर्म जो हम करते हैं ना पूजा जी, वो हमारे सामने अवश्य आता है क्योंकि हम तो अपने तरीके से सही ही कर रहे हैं, भला ही कर रहे हैं, किसी का भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हम कहाँ चूक जाते हैं और वो एक न एक दिन हमारे सामने आता है। और पिछले जन्म का तो किसी को पता नहीं, आने वाले जन्म का भी किसी को कुछ पता नहीं। फिर भी जो भी हमें मिलता है हमें स्वीकारना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि ये ईश्वर ने हमें दिया है, तो जो कर्म हम करके आए हैं उसको उसका फल तो हमें पाना ही है ना। इससे कर्म से हम भाग नहीं सकते, मतलब
0: नहीं भाग
2: ये सकते। ये कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती और ना ही हम इसे भाग सकते हैं
0: जी।
2: मैं यही कहना चाहती हूँ और शुभ संध्या शुभ रात्रि आपको।
0: शुभ संध्या
2: रखा है आपने,
0: बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी। और एक और श्रोता है लाइन पर, चलिए उनको सुनते हैं। शुभ संध्या आपको प्रणाम। चलिए एक और श्रोता, हेलो नमस्कार प्रणाम।
3: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: सब सुविधा, सब चल रहा है, गाड़ी ठीक से चल रहा है
0: जी
3: जैसे ये टोची बोलता है कल्ले कल्ले चलता है ना।
0: हाँ,
3: तो वे सब चल रहा है
0: जी,
3: ठीक ठाक से, भगवान के चोसे है। हम भगवान के बहुत प्रिय कह रहा ओकरे से खाली दे रहा है हम भगवान से। हाँ तो इंसान इंसानियत हाँ तो है, जीवन बहुत बड़ा बा, मूवी वो बा, दू देचे आदमी लेमोन में मूवी हो गल बा, एंचिया निमन बा, ओहो पर तनी भेदभाव बा। तो और भगवान के है ये हमने अच्छी करी ला सा गोखी में ऐसे कहला सा कि जितना इंसान और लेमोन में जन्म दे ले बा ना,

0: अब तू जाओ कौन चीज स्वाजरे कर बन निमन चीज या बुरा चीज समझ लो। पसीर एगो छोटा लड़का जब जन्म लेता हो तो कुछ जानता है जब तेरी हुशियारी तो कर माँ बोली बेटे को ने बाबा सा पाफे या सा गौसों सा पाफे या सा चिफी सा पाफे या सा मौस सा सिमेला लुट लुट लुट तो कॉम्पोज़ चाहे लोग के ना कैसे है भी जन विषय रख ले वह तो है में से ढेर विद्वान बा और लोग के बाद जन बहुत विद्वान है तो हुए जैसे बच्चा ला धले भगवान एगो दो दे ले बात हो रहा एगो चारिस्मातिक अच्छी बाकू मजे तो हर बोल में समझ में के नहीं मिले लाई एगो कादो हम अपन मगल से बोला था यार
1: धन्यवाद
0: बस हम ढेर आदमी के फ्री कौन से कर ले भाई और कम जी बोले राम सा एगो गोबर जब ढांग दे बता उस सोते हो सगरो ना तो गोबर वाने चला सोते किसे राम करके चल जा ता तू बुरा आदमी संगे संगत कर बता का होई बा
1: बुराई बन बा
0: ता बुराई मत बकाल तो रात देबे खैला पिला तेरा मार के मुआ देला और देखा तो ना अभी कैसे अत्याचार होता मोरी स्वयं बोलते यार का होता निमन निमन चीज का होता तो है सोसाइटी बहुत मालाद बा बहुत बहुत मालाद बा हमेशा हम बोला चाहे ला अति करी ओकरा इलाज करे के तो के इलाज करी ओकरा हमनी ने से कब से इलाज करे ना ऑथोरिटी मिल के है सब अति मिल के सब आदमी मिल के बैठक सब अति सब कोम लोग के मिल के चाहे ला देखे की का होता इलाज करे के तो और कौन आदमी अभी देख ले हुआ एगो धनवान आदमी जो गरीब के ऊपर पेट जाके भरा था वो लौटे हमो है दिख ले हुआ नहीं बा ऐसा भी बहुत कमती बा वो खाली जब वो धनवान आदमी खाली बता पैसा पैसा पैसा मलाद बता बता पैसा पैसा पैसा
1: और पैसा दिखा के रोब
0: पौधों
1: पैसा दिखा के रोब दिखा लन सा
0: है ये को बहुत मो हर विषम बोला है को मोवे चीज है निमन चीज है सिर्फ मैं उकरा चला जेरे करे के आई पैसा नहीं तो है पैसा एक दिन बहुत डांजरे हो जाए देर कुछ बता बस ये भगवान उस पैसा के नहीं कुछ रह रहा हूँ
1: नहीं
0: बस ये भगवान पैसा नहीं बने लेबा हम नहीं अच्छी कर ले सा ना तब भगवान हमार अच्छी से भगवान जस्ती गरीब आदमी लोग के पूछेला और खुशी रहेला समझ लो तो हई हमारे को छोटा सा संदेश बा और सब छोटा लोग के बहुत बहुत धन्यवाद है ढेर बा हमनी के जिस छोटा लोग बा जेटा बचा लन सा चाहे जब सुनबा त चाहे ला सब हई बगल नहीं लिख लेके चाहे ला जब सुनबा त यहां रखे के चाहे ला प्लास्टिक में चाहे ला देले के और प्लास्टिक में डाले के वन अतिक मजा एवरीडे अति में मजा लाइफ में चाहे ला अति करे तो हई हमारे को अति है सब छोटा लोग के बहुत बहुत ही अच्छी करत है और अब ये प्रिय करत है कि लापे सगरो आले वैसी
1: धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और श्रोता को हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। प्रणाम नानी जी।
2: जी या बेटी
1: कैसे हवा अच्छा हवा
2: अच्छा नहीं है।
1: अच्छा बोला कहे भगवान से हमें यही प्रार्थना कर
2: बहुत अच्छा विषय बा।
1: अच्छा कौन सी बोले
2: निमन बतेलन जा खूब निमन बतेलन जा जे करम के बारे में बोले करम मा बहरी हो गए हमारी करम में बहरी बता ही रही चिठिया हो तो हर कोई बाँचे करम न बाँचे कोई करम वहाँ बहरी हो गए हमारी जो हमने करम में बहुए मिली दूसर
1: नहीं मिली
2: बोलब सर इतना धनवान है सर उतना होई है कार कुछ नहीं होई जब तोहर करम में लिखल नहीं बता नहीं होई आज तोहर करम में भगवान के बगल से तोहर निमन काम रही निमन अथी रही तो सब कुछ पूरा होई यही करम के बात है। बहुत अच्छा बोला था वाजा बोले लकड़ी लकड़ी रहा ततुर के जरैती प्रीतिया हमारो तुरलो न जाला ये सब हा करम में तो यही बोला था नहीं करम करम के बात नहीं सकब सब तारे करम के बात जो लिखल बा नहीं सकब था तारे जो मिले के रही था उन्हें मिली आले बेटी
1: बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी शुभ संध्या और आपको प्रणाम
2: तोहर भी।
1: अच्छा तो चला अभी हमनी धनी जी के सुनीला से नमस्कार और प्रणाम धनी जी।
3: नमस्कार नमस्कार पूजा जी आप अच्छी है।
1: मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं?
3: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए भला करने वाले भलाई की ये जा बुराई के बदले दुआएं दिए जा
1: क्या बात है।

0: जवानी के जोश में इंसान समझता है मैं ही सबसे बलवान हूँ, मेरे मुझे ही सबसे बड़ा शक्ति है, मैं जो चाहे करूंगा। लेकिन चोर जब चोरी कर लेता है उसके दिल में डर भी रहता है, पकड़ा गया तो अकबकाएगा, वो समझ में नहीं आएगा वो क्या बोलेगा। कहते हैं चोर के दाढ़ी में टिंका, वो उसने चोरी किया है वो पकड़ा ही जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो उसका अक्का बक्का सब बंद हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा अब क्या करे, क्योंकि चोरी ही किया है उसने, भला नहीं किया है। तो इंसान अहंकार के जोश में जब बलवान रहता है तो जो चाहे वो करना चाहता है, वो समझता है कि मैं जो चाहे कर सकूंगा। इंसान जब कोई प्रगति कर रहा है तो जलेगा, जलता है दूसरों की प्रगति पर, अरे वो प्रगति कर रहा है खुश रहो, ताकि तुम भी, तुम्हारा भी हक है कुछ प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हर किसी का हक है इस दुनिया में भला करने के लिए, प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए, हर किसी को जीने का हक है इस दुनिया में। यही मेरा कहना है, जलो मत किसी के प्रगति पर, जलो मत
1: जियो और जीने दो,
0: जियो और जीने दो हर किसी को जीने दो, भला करो, भला करने वाले बुराई किए जा,
1: भलाई किए जा,
0: मत करना बुरा, अच्छा करो भलाई किए जा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। दो श्रोता हैं, कृपा करके आप धैर्य की मांग मैं करती हूँ, आप लोगों से धैर्य की मांग करती हूँ। चलिए सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो पूजा
1: जी, नमस्कार। वीना जी कैसी हैं आप?
2: जी मैं बहुत ठीक हूँ, मैं धैर्य से ही काम ले रही हूँ।
1: जी
2: चलो, क्योंकि आज का विषय जो है ये, मैं आपको उसके लिए बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम तो देती हूँ कि आप बहुत अच्छा चयन करती है, बहुत सोच विचार कर आप विषय में विचार रखती है, तो मैं कहती हूँ कि सोचने पे मजबूर हो जाती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और भगवान आपको ऐसे ही बुद्धि दे, ऐसे ही विवेक दे, आप अच्छे विषय को चुने और सोचने पे मजबूर हो जाए कर्म क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं गीता के श्लोक से जल्दी जल्दी शुरू करूंगी, क्योंकि उसके आधार से ही तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी है।

0: कर्मणि, यानी कि जो कर्म है, भगवान बोलते हैं कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है ना पूजा जी,
1: हाँ,
0: वो कब उससे हमारा कभी छुटकारा नहीं होता है,
1: नहीं
0: वो
1: होता।
0: कभी हम उसे छुटकारा नहीं पाते, वो तो जन्म जन्मांतर तक चलता है, क्योंकि वो चाहे पाप हो चाहे कर्म। देखो, एक कर्म का एक एक मैं एक सिद्धांत देती हूँ कि जब हम कोई भी अच्छा कर्म के बारे में अच्छा सोचते हैं या अच्छा बोलते हैं, अगर बुरा सोचते हैं तो मानो हमने कर्म का बीज रोप दिया उसके प्रति, है ना। एक कर्म का भगवान के पुस्तक में वहां लिखा गया है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक के लिए ऐसा सोचा, अगर अच्छा सोचा तो वो भी, तो वो दोनों का फल हमें समय समय अनुसार मिलता ही है, जन्म जन्मांतर। क्योंकि हम हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो हमारा ये जन्म जो है पहला और आखिरी नहीं है भगवान की दृष्टि में। जो भी हम करते हैं हमें सोच समझ कर करना चाहिए। बीज आरोपण जब हम करते हैं तो अच्छा बीज रोपेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। अब एक छोटा सा एक उदाहरण कि मानो एक झुंड है गाय के बछड़े के साथ, बहुत बड़ी झुंड है, बच्चा बिछड़ गया अपनी माता से, गौ माता से, तो बच्चा किस प्रकार से, वो बिछड़ा ही नहीं रहता, वो किस प्रकार से, मानो कि इतने हजार गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। ते कहने का तात्पर्य है कि कर्म भी वैसा है, वो मनुष्य का पीछा करता ही है। वो जितने भी आप भीड़ में रहो, चाहे आप उपो चाहे आप पर्वत पे चले जाओ, चाहे रसातल में चले जाओ, कर्म से

ऐसा सुविधा नहीं है पूजा जी, ये हमें बहुत बहुत सावधानी से सोच समझ कर अपना कर्म करना चाहिए। किसी के बारे में अगर हम अपशब्द बोलते हैं या बुरा सोचते हैं या चलते हैं या अभिमान करते हैं, तो सबसे पहले अपने कर्म का जो परिणाम है उसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। इसका तो फल हमें तो फिर जब मिलता है ना, तो वो अब वो फल कैसे मिलता है ये भी मैं बता दूँ। अब जब फल मिलता है बुरे का, तो कभी आप शरीर

0: पसंद करते हैं, मतलब इस प्रकार से वो फल मिलता है। अच्छा का जब मिलता है तो आप तो सब तरह से मालामाल संपन्न हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, संतान भी अच्छी रहेगी, आमदनी भी अच्छी रहेगी। तो मैं तो इस हिसाब से सोचती हूँ, पता नहीं और लोग कैसे सोचेंगे, मैं सोचती हूँ भगवान का फल इसी प्रकार से है। और इसके अलावा सुख दुख जो आता है और बीमारी आती है और भी उतार चढ़ाव जीवन में आता है, ये सब प्रकृति के नियम है। जब हमने मनुष्य जन्म लिया है तो ये सब तो हमें भुगतना ही है इस तरह से, इससे हमारा सुख। इस सब के होते हुए जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो उसका फल तो 100% मिलते, ये तो मैं आपको गारंटी दूँ। तो बस मैं यही बोल देती हूँ, दो चार ऐसे तो विचार बहुत है, मैं सुनती हूँ औरों को भी मौका देना चाहती हूँ, हम उन लोगों का विचार सुनेंगे। मेरा विचार कैसा रहा, आपको कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा, और जो भी आपने कहा वो एकदम सही है। पर ये भी सच है वीना जी कि आजकल इस कलयुग में देखा जाता है कि जो दुख देते हैं वही ज़्यादा खुशी से जी रहे हैं, और जो सत्य की राह पर चढ़ते हैं वही इंसान सबसे ज़्यादा संघर्ष
0: तो
1: का जीवन
0: जीता है। शास्त्र में ये भी कहा है पूजा जी कि हाँ, भगवान जिस भक्त को पसंद करते हैं ना, जिसको
1: उन्हीं
0: तो
1: को संघर्ष
0: ज्यादा दुख देते हैं, और जिनको नहीं तो वो उनको छूट देते हैं कि तुम अपना वो खूब ग्रियोली में कैसे बोलते हैं ताम-ताम, तुम ताम-ताम करो, लेकिन जो उनके अच्छे और सच्चे भक्त उनको और पॉलिश करते हैं भगवान, उनको और दुख देकर उन सोने को चमकाने के लिए कितना पॉलिश करना पड़ता है
1: जी।
0: उस तरह से तब हम उनके चरणों तक पहुंचते हैं पूजा जी, ऐसे ही वो हमें अपने पास अपने चरणों में नहीं जगह देंगे। तो आपको नहीं सोचना है कि वो इतना पाप कर रहा है या बुरा कर रहा है फिर भी वो क्यों ठीक है, मैं इतना पूजा करती हूँ, रोज व्रत रखती हूँ, ये करती हूँ, ये सब नहीं सोचना है हमें। आप इसी को बोलते हैं अपना कर्म करो, पूजा करना है तो करो, काम करना है तो करो, नहीं देख दूसरा वाला कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये करते जाओ, वहाँ आपके खाते में सब लिखा जा रहा है, आप चिंता मत करो।
1: चलिए, आपने जो अभी कहा है, एक मित्र ने तो खा, अभी जब मैं आ रही थी काम पर तो मुझे एक मित्र ने कहा कि देखो ना कितने लोग अच्छे अच्छे बुरे बुरे काम कर रहे हैं फिर भी अच्छे से रह रहे हैं, और जो बुरे करते हैं, जो अच्छा करते हैं वो तो हमेशा संघर्षमय जीवन जीता है। तभी मैंने वैसे ही जो है जवाब दिया है और उत्तर दिए हैं जैसे आपने दिए हैं, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि इस कलयुग में कुछ प्राप्त नहीं होता, पर भक्ति इसी में सुनाई देती है।
0: जी जी जरूर जरूर, आप बहुत अच्छी बात है, भगवान ऐसे ही आपको बुद्धि को प्रकाशित करें, और आप सभी के अच्छे विचारों का स्वागत करती है और सभी को अपना विचार सुनाती है और इस पर भी अपना जो है प्रतिक्रिया दिखाती है और लोगों को उत्साहित कर रही है अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूजा,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या आपको भी। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको सुनते हैं। चमेली जी प्रणाम।
2: प्रणाम बहन जी, अभी मैं तो थक गई लेकिन हिम्मत नहीं आ रही
1: लाइन पर। कोशिश करने वालों की कभी
2: हार नहीं होती है बहन जी,
1: जी
2: आज का जो विषय है ना बहुत मूल्यवान है, जीवन यही है बहन जी। भगवान ने हमें धरती पर क्यों भेजा है, कर्म करने के लिए, धर्म निभाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, तो यही है हमारे जीवन। भगवान ने जो भी दिया है हमें हमें कबूल करना चाहिए, क्योंकि जीवन है, जीवन यही है। जो जीवन में घबराता है, जीवन से हार जाता है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि कर्म करता चल, फल की इच्छा क्यों करते हो, भगवान तो देने वाला है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हम यही कहते हैं कि कभी जब हम दुनिया में आए थे तो हम रो रो कर आए थे, जब हम दुनिया से जाएंगे तो हंस कर जाएंगे। क्यों हंस कर जाएंगे, जो पुण्य हमने कमाया है, सबका दिल जीत लिया है, तो भगवान हाँ जाने के लिए हमें हंस कर जाना है। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि जीवन में हमेशा हमेशा के लिए जब तक हम जिएंगे, जो भी भगवान ने हमें दिया है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। किसी की प्रगति को देखकर अपना प्रगति समझनी चाहिए, तब जाके जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। कभी किसी का दिल ना दुखाना, कभी किसी से जैसे बोलते हैं ना, जो बोली होती है ना वो इतना घायल कर देते हैं, वो ठीक नहीं होता है। जो कोई एक थप्पड़ मार देता है तो वो थोड़ा घड़ी में हम अच्छा हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी है, जो वाणी है वो आकाश की तरह वाणी

0: वो हमारे सर में डगमगाता है, लेकिन फिर भी भगवान पर भरोसा करो, जो जैसा बोलता है बोलते जाओ, तू अपना कर्म निभाते जाओ, तब जाके जीवन में हम सुख करते हैं। जैसे हम लोग काम में करते हैं, कोई किसी को देख के जलते हैं, किसी को जैसे बोझ से कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा मत करना, क्योंकि जो करते हैं उलट कर हम ही पर आते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि सोच हमेशा अच्छा होना चाहिए, जो अच्छा सोचते हैं अच्छा कर्म करते हैं तो वो जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। जीवन में तो दुख आएगा, दुख तो हमारा साथी है, बोलते हैं ना, काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताते हो, दुख तो अपना साथी है। ये अगर जीवन में दुख नहीं आए तो सुख का कैसे महसूस होगा। तो हमें जब भूख लगेगा तब ना खाना खाएगा, अगर जो भूखा है भरपेट खा लिया है उसे खाना देगा, उसका महत्व को नहीं जानेगा। बहन जी, जिसके पास पैसा है उसको पैसा देगा तो वो बोले मेरे यहाँ तो इससे ज्यादा है। तो हमें जानना चाहिए कहाँ पर अपना कर्म करना चाहिए, कहाँ पर हमें अपना दान पुण्य करना चाहिए, तब जाके हमारा फल सफल होती है बहन जी। जैसे आप अभी MBC में काम कर रहे हो, आप जब जैसे बोलते हैं सप्ताह के जो जो बाद में आते हैं तो हमें तनख्वाह मिलती है ना बहन जी, तो हमें आशा रहती है वो तनख्वाह मिलेगा तो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो आपने किया है तो मिलेगा ना बहन जी। अगर हम पुण्य नहीं करेंगे, हम कर्म नहीं करेगा, पुण्य नहीं कमाएगा तो हमारे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा बहन जी। देखिए हम जीवन में यहाँ रहते हैं इस संसार में, तो हम पैसा कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं बैंक में, कि जब दुख की घड़ी में पैसा होनी चाहिए बहन जी, मरण में, विवाह में, कोई काज में, पूजा पाठ में पैसा होना ही चाहिए, ये जीवन है। लेकिन इतना भी सोचना चाहिए कि हमें, हम जहाँ धरती पर आए हैं, कृष्ण भगवान बोला है जहाँ जन्म है तो मरण अवश्य है। जिन जब हमने जन्म लिया है तो हमें एक दिन दुनिया को छोड़ना ही है, जो ना कोई इस धरती पर टिका है ना कोई टिकेगा। तो इसी तरह हमें भी पुण्य करना चाहिए, जब हमें सोचना चाहिए कि हमें दुनिया छोड़कर जाना है तो भगवान के पास क्या लेकर जाएंगे, आपके बच्चे जाएंगे, आपके पति जाएंगे, कि आपके खजाना जाएंगे, मोटर जाएंगे, क्या जाएंगे। जो आपने दान पुण्य किया है, अच्छा बोला है, आपने सुंदर मोटर खरीदा है, एक गरीब आ रहा है वो जा रहा है पर बैग लेके, इतना भारी है सब्जी लिया हुआ है, आपने जगह दे दिया पर मोटर में अब चढ़ा दिया, तो कितना पुण्य कर दिया, उससे दिल से दुआ देगा, ये आपके साथ जाएगा। आप कोई आपसे हाथ फैला रहे हैं कि उसके बच्चे बीमार है, पैसा नहीं है, दे देना बहन जी, ये सब पुण्य है। आपने आपने बड़ा मकान बनाया है, सब बड़ा बड़ा परिवार को खाना खिला रहा है, लेकिन जो गरीब जो है उसको खाना भी खिला दो उसके साथ, तो कितना खुश होगा। ये आपने
1: बहुत बहुत सही कहा है। और दो श्रोता हैं लाइन पर।
0: हाँ बहन जी, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बड़ों का प्रोग्राम जो है बहुत हमें ज्ञान मिलते हैं और जीने का शक्ति मिलती है बहन जी, बड़ों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद और शुभ संध्या आपको। चलिए आशा जानू जी को हम सुनते हैं। प्रणाम आशा जी।
2: नमस्ते पूजा जी, नमस्ते। और समस्त श्रोताओं को भी मैं श्रद्धा नमन करती हूँ। और जो शब्द अपनी ओर से ये जोड़ना चाहती हूँ उसके अनुसार
1: जी,
2: देखिये भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, कर्म अधिकार रस्ते माँ फलेशु कदाचित, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। पेड़ से हमें छाया मिलते हैं, फल मिलते हैं, बदले में पेड़ हमसे कुछ नहीं चाहता। पवन, चंद्रमा, सूरज, नदियाँ, ये सब हमें प्रकृति देती है, कुछ वापस नहीं लेती। पर प्रकृति हमें यह संदेश सिखाती है कि ऐ इंसान तुम मतलब ही मत कर, अगर कर्म करना है तो नेकी कर, उसे दरिया में डाल। इस यानी कि अगर अपने रिश्तेदारी को भी निभाते हो तो इस लालच से मत निभाओ कि इसके बदले में हमें कुछ चाहिए। माता पिता आजीवन अपना सर्वस्व सुख त्याग करके अपने बच्चों के परवरिश में अपना सब कुछ त्याग देते हैं, बदले में वो हमसे कुछ इच्छा नहीं रखते। तो ये बच्चों का भी यही कर्तव्य है कि हम भी यदि इंसान बने तो सही इंसान बने, नेकी करें तो उसके बदले में हम उससे कुछ उम्मीद न रखें। और अपनी भलाई सोचना, अपने भलाई सोचने में कोई बुराई नहीं है, पर अपने भलाई के लिए किसी का बुरा करना ये अच्छा कर्म नहीं है। ना हमें भूत का पश्चाताप करना है, ना भविष्य की चिंता करना है, अपने आज के बारे में सोचना है और अपने पिछले किए गए कर्मों से, यानी कि जो गुजर चुका है

0: उनसे एक सबक लेना है ताकि हम इस आज को और अच्छा अच्छी तरह से बेहतरीन बना सकें। और कभी कभी शिकायत ये भी होती है कि क्यों हम दुख सहते हैं, क्यों हमारा अच्छा नहीं, क्यों पड़ोसी वो आगे बढ़ रहा है कि हम पीछे रह गए, क्यों हम में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब ये सब आपके कर्मों के आधार पर ही है। अगर आज आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो भविष्य में आपके साथ भी अच्छा होगा, आपके साथ कोई बुरा नहीं होगा। बस ये है कि हमें सच्चाई की राह पर चलना है, झूठ से छल से बच के रहना है, और सबसे बड़ी बात अपने मन में धैर्य या संतोष धारण करते रहना है। किसी के बारे में कोई गलत ना बोलना है, ना सोचना है, वाणी को शुद्ध रखनी है। ये जो अच्छा कर्म हम जो छोटे छोटे बातों को ध्यान देकर हम अगर अच्छा कर्म करते हैं तो हम अगर कल को इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो हमारे साथ धन दौलत कुछ नहीं जाएगा, यदि कुछ जाएगा तो हमारा यह अच्छा कर भी जाएगा। तो यही कहेंगी पूजा जी, यही संदेश दूंगी
1: कि
0: अच्छा कर्म करना ही जीवन का साथ सकता है।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। प्रणाम। हेलो प्रणाम।
2: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, प्रणाम।
2: प्रणाम जी। प्रणाम तो बड़ों को बोलना चाहिए ना
1: जी
2: क्योंकि उसके पर को छू रहे हैं
1: जी।
2: देखें, हम बहुत धन्यवाद देती हूँ बहन चमेली को
1: जी।
2: वो उसका जो कहा ये सब ये सचमुच है। हम जब जन्म लेते हैं तो खाली हाथ आते हैं ना, नहीं मुट्ठी बांध कर आते हैं। जब हम जाएंगे तो दुनिया देखे कि हम खाली हाथ जा रहे हैं। एक उदाहरण देना चाहती हूँ संक्षेप में कि एक राजा थे, वो सब गांव का बड़े बड़े लोग का लूट मार करके अपने घर में सब हत्या के रखते थे। लेकिन अंत में अब एक बार एक व्यक्ति को लूटने गए तो कहा कि इतना लूट रहे हैं, जब आप कभी संसार छोड़ के जाएंगे तो क्या ये सब लेके जाएंगे। तब घर पर आके सोचा कि सचमुच हम तो गो वस्त्र जो हमारे हैं सब रह जाते हैं, हम चल जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं हमारे पास, जो कर्म करते हैं वही जाते हैं। तो कहा अपने सिपाही से एक दिन हम गुजर जाएंगे तो 30 के बाहर मेरी दोनों हाथ बाहर कर देवे कि लोग देखेंगे जब हम संसार छोड़ के जा रहे हैं तो हम कुछ लेके नहीं जाते हैं। कहने के यही है कि हमें दान पुण्य करना चाहिए और किसी को देखकर जलन नहीं करना चाहिए। उसे भगवान दिया है, उसके प्रताप से कल हमें भी मिलेगा, यही बोलना है बहन जी। बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया।
1: बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: श्रोताओं, कभी कभी इंसान की खामोशी भी उसके कर्मों की कहानी कह देती है। दुआ और बद्दुआ दोनों नहीं पूछती हैं जहां कर्म उन्हें ले जाते हैं। जो दिलों में जगह बनाते हैं वही दुनिया में पहचान बनाते हैं। कर्म वो आईना है जहां इंसान खुद से चुप नहीं सकता। समय देर कर सकता है लेकिन कर्म हिसाब अवश्य करता है। नमस्कार।
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: मैं कुमारी बोल रही हूँ।
0: अच्छा कुमारी जी, बोलिए।
1: ऐसा अच्छा विचार रख लिया हुआ, जितना कोई बतिया इलान जा सब सच्चाई। बहुत अच्छा लगल सुनने के।
0: धन्यवाद।
1: हम तो तब से सुने के रहते, हमारा नहीं मिलल ना। हम अभी सुने के रहती, यानी ना हम ढेर नहीं बोला पूछो। भगवान से बहुत डराई चाहिए, उनका से बहुत डराई चाहिए। हमने के अंदर बैठा लोगन हो,

0: हमने चली ला सतम करा ले कि चली ला सा हमने के लौकत नहीं जा जब जो काम करबा खराब काम करबा कोई के को बात बोल दे ला दिल दुखा कर दे अंदर में बोले ला आवाज दे दे ला कि इसे बोले आई बोलवा चाहत नहीं बोले की तो जो नदिया के लगल तो उसे जाने ला कितना उसे बुझाता जाने ला उधर खोजे के नहीं चाहे ये अंदर भी जब हमने के साथ वो हर मेरी थोड़ा आवाज देवे ला पस न्याय करे ला कोई बात न्यायकारी लाहो से घुस पर नहीं काम करे लगे कि पूजा कर देला साथ समुद्र चल गए कि बाहर चल गए कहाँ कहाँ बहुत पूजा कर दे जा लेकिन हम जन कर ले हुआ था तोरा कहूँ बढ़ती तो तोरे पर आइये वो स्वीव करियो हम ये जन्म ले लेंगे ना कितना जन्म के पल जाने के संगे हमने के पैसा नहीं है ये अब जो कर ली तब आगे जहाँ दुख कर ला तो सोची ला जा कौन जन्म में कौन चीज कर ले रह जा अभी तो बुझा तो अच्छा कर ले रह जा जहाँ था हमने के अच्छा मिले के तो एक यानी कब के कर कुछ को बाद में के संगे दा तो हमने के कर के ले हमने के लड़का ले हमने के यू ले यू ले वो हम ये के पास आई वो भगवान खोज के वो देवे लन कि तू जहाँ वह कई जन्म के भी तो और दुख बटे कहाँ तू कौन चीज कर ले हुआ है कोई नहीं लेगी तो पीछे स्वीप करी तू हरा स्वीप करी कि तो और लड़का बस स्वीप करी आप बचो मित्र में तो हर करल तो हरा मिली उनका से डेरा चाहिए उनका से शान सजीव डेरा चाहिए पग पग चल गए तो उनका याद कर कहा हम से भूल हो ये मालिक कहाँ भूल होगा दुख पड़े ला तो उनका याद कर खाली तो हम ये तो कर रहे सब कर्म के कहा जनावर करेला हमने मनुष्य करी ला जा हमने भी कहना सोची के कौन सी करती सर हम तो बुद्धि बहुत बड़ा एक कुछ आज नहीं दे भी कहेंगे नहीं चलो सोच के वो काम करेगी धन्यवाद पूजा
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और शुभ संध्या आपको भी
0: शुभ संध्या।

रात चाहे कितनी भी शांत क्यों ना हो, कुछ आवाज़ें दिल के भीतर हमेशा गूंजती रहती हैं। कुछ अधूरी बातें, कुछ टूटे हुए रिश्ते, कुछ अच्छे कर्म और कुछ ऐसे फल जिन्हें इंसान चाहकर भी भूल नहीं पाता। आप सुन रहे हैं हम और आप कार्यक्रम, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उन एहसासों को छूते हैं जो अक्सर लोग संसार से छुपा लेते हैं। हमारा आप कार्यक्रम में आज कर्म के बारे में हमने चर्चा की। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। कभी किसी की आंखों में दर्द देखा है? वो दर्द जो शब्द से नहीं बस खामोशी से समझ आता है। कभी किसी बुजुर्ग को दरवाजे पर अपनों का इंतजार करते देखा है आप लोगों ने? कभी किसी माँ को बेटे की एक कॉल के लिए तड़पते देखा है? कभी किसी इंसान को मुस्कुराते हुए अंदर से टूटा हुआ टूटे देखा है? शायद यही जीवन है, यही जीवन यात्रा है, जहाँ इंसान अपने कर्मों से कहानी लिखता है खुद स्वयं। कहते हैं जब इंसान किसी का दिल दुखाता है तो आवाज़ ऊपर तक जाती है, और जब किसी टूटे हुए इंसान का हाथ थामता है तो दुआ बनकर लौटता अवश्य है। आज का विषय सिर्फ एक चर्चा ही नहीं, एक आईना है जिसमें शायद हम सब खुद को कहीं ना कहीं देख पाए। जीवन में पैसा, शोहरत, नाम सब मिल जाता है, लेकिन अगर अच्छे कर्म साथ ना हो तो इंसान भीड़ में भी अकेला रह जाता है। और कभी कभी एक छोटा सा अच्छा व्यवहार किसी की पूरी जीवन ही बदल देता है। रिश्ते केवल खून से नहीं, कभी कभी

अनजान लोग भी अपने बन जाते हैं, कैसे अपने कर्मों से। कहते हैं जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाता है, और जो आपका है चलाकर भी जाकर भी वो लौट कर अवश्य आता है। आजकल हम देखते हैं रिश्ते बहुत टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि इंसान ही इंसान को चोट दे रहा है, इंसान ही इंसान को समझ नहीं पा रहा है, इंसान ही रिश्तों में दरारें डाल रहे हैं। सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं, किसी को समझने के बजाय दिखावा करते हैं। चलो मैंने छीन लिया, क्या कर लोगे, मेरा हो गया। अगर रिश्ते को आप संभाल नहीं सकते तो उसे तोड़िएगा मत, उसे अपने पलकों पर, या फिर अगर जहां पर आप सुधार डाल सकते हैं आप सुधार लाइए। किसी का घर मत तोड़िए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि जो होगा वो आप रोक नहीं पाएंगे, इसका लिखा है। और जो भी हमारे जीवन में होता है ये सब भी लिखा हुआ है। इसीलिए आप डरे नहीं और आप हमेशा आगे बढ़िए। जो छूट गया वो कल था, आप आगे देखिए और आज में अपना फोकस डालिए, अपने आज में सुधार लाइए, तभी जाकर जीवन जीवन कहलाएगा। अंत में हम कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, केवल अपने कर्म। बहुत बहुत धन्यवाद हम और आप कार्यक्रम में भाग लेने वालों को। चलिए कुछ ही क्षण में हम भरेंगे त्योहार पसंद कार्यक्रम में, तब तक के लिए ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त रेडियो मॉरिशस के साथ

नमस्ते और ये प्रणाम त्योहार पसंद कार्यक्रम में सबको के हमने स्वागत करत हैं जा। और जैसे जानेला ई त्योहार पसंद कार्यक्रम में गमट के गीत ढेर चलेला और नंबर तो हुई है अपन परिवार खातिर, दोस्त खातिर, सहेली खातिर, संगतिया लोग खातिर चाहबा एगो गीत सुने के ना डेडिकेट करे के फरमाइश करे के तसक बजा हमने के टेलीफोने करे 4028085 पर 4028085 पर नहीं तो सकबजा हमने के मिसाजो भेजे 2251705 पर सकबजा अपन मिसाज भेजे और जुन जुन परिवार के संगतिया खातिर और दोस्त खातिर चाहत हुआ या फिर अपन खातिर सुने के आज गमट के अभी जुन गीत चलेला ई कार्यक्रम में तसक वजह हमनी के टेलीफोने करे तो चला अभी खातिर हमने एगो गीत चलावब सा और ई गीत खास तौर पर मालिनी जी खातिर और अपन माँ खातिर।

और अपन सब परिवार खातिर ई गीतवा के मांग कर ले बाते त चला उ मोताबल के हवन जा त चला है गीतवा हमनी ओकर खातिर हमनी जुन्हा चलाइला सा और ई गीतवा है रंभा राम तोहल के जुबेदा।

आजकल त हये सब छोकरी हये बोला हम खंबा थके रोहिला नहीं जाप ससुरालिया। सच्चे के हा माँ बाप के घर में जोन प्यार मिलेला, जोन अपनापन मिलेला, जोन दुलार मिलेला वो कहूँ नहीं हा। तोहर घर तोहर हुए हा, कहूँ नहीं मिली ऐसन घर माँ बाप के। हये चाहेला माँ बाप के मोल जाने के, जितना वो लोग के सेवा करबा उतना मेवा मिली। हये चाहेला हमनी के माँ बाप के सेवा करे के, वो लोग के ध्यान देवे के, रखे के, और जितना ध्यान रखबा जितना सेवा करबा माला भगवान वे के पूजा थवा। तो चला ये गीतवा के मांग कर ले बाते और ये गीतवा के मांग कर ले बाते दिला जी बॉशेगी से और ये मातृ दिवस के अवसर पर जनहा ये गीतवा के मांग कर ले बाते और जितना कोई ये गीतवा के पसंद करे लंजा वो सब कोई खातिर और ख़ास तौर पर अनीता जी त्रियोले से और दमाद वेद बेटी हवन पूजा और ओकर नातिनियन खातिर और जोकर सब परिवार खातिर है गीतवा के मांग कर ले बातें और ख़ास तौर पर कमला जी जो मोताबा के रहनन जा प्यारी आरोही और बेटी खातिर और बेटी दिव्या और सब रामधनी और दिनु परिवार और साथ में बातें त्रिवेणी जी गुडलैंड से सब मोहन परिवार के नाम और चित्रा जी जो मौदालबिया रहलन जा और विजय लक्ष्मण जी नवीन लक्ष्मण जी और उकर पत्नी चित्रा जी खातिर साथ में श्यामा रघुनंदन जी और वीना रामफुल जी खातिर है गीतवा। चला हमनी सुनीला सा सुना था हुआ तोहार पसंद।

हमने के जो रेहाना जी हवन नौतम से माला फावदा और सुरेखा ओकर दोनों संगतिया हवन जा और बुलत हवन जाने ला हमार मन बाते है गीतवा सुने के विनोद सुदत के गावल गीत संगत कर जान के पानी पिया छान के ये गीतवा में ढेर जो है विचार मिलेला ढेर एगो मान ला एगो अवेयरनेस मिलेला कि हाँ एगो तोरा चेतावनी कर देवेला है गीतवा कि चाहेला जब भी संगत करब तो चाहेला जान के परख के तब संगत्या करिय नहीं तो फंस जाइब तो चला है गीतवा हमनी सुनीला सा और है गीतवा खास तौर पर रेहाना जी नौतम के देने से

तो चला आज जुन्हा जितना कोई अपन जन्मदिन मनावत हवन जा वो सब कोई खातिर बोलब जा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खास तौर पर नीरू बुतन जी और अपन बेटी रिधि बुतन जुन्हा अपन जन्मदिन मनावत हवन जा और ओकरा ओकर परिवार ओकर मामा और उसवा के देने से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं और ओकर सब बुतन परिवार और खास तौर पर ओकर पति रोशन बुतन और पापा की ओर से बेटी के ढेर सारी खुशियाँ भेजा था वंजा। तो चला ओकर नाम बसंत सुपोल जी के गावल गीत बिलिना बिलिना।

मिठाई के ऊपर सजल बा मोमबत्ती और है गीत वा खास तौर पर यूनियन पॉक से सुदेवी जी अपन बेटा धीरज झा के देवराज के जन्मदिन के अवसर पर दुर्गावती राघु और जयमन राघु के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देवत हवन जा करुणा नितिन यानीश और सब परिवार देने से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। खास तौर पर शांता सुकारी जी अपन बेटा काविन के जन्मदिन के अवसर पर और कर पत्नी किरण संजना भावेश सुदेश अशोक सुजीत और सब परिवार देने से ओकरा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो अपन जन्मदिन मनावा था वंजा पूरे MBC टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे।

सुनीता जी हवन और अपन बहन विमला जी खातिर जो कुंगुमा रहिलन और ओकर खातिर एगो गीत के मांग करले बाते बरकी मसाला पिसेला खुश हृदय के गावल गीत तथा चला गीतवा हमनी सुनिया। सिर और लोढ़ा में मसाला पीसब त उ मसाला में स्वाद भरल बा, घर पर ये मसाला बनैया सिल और लोढ़ा में देखब कितना चटकार।

धनी जी बोला था राह देखते देखते हम तो थक गल हैं, अब तो चला तोहर गीतवा हम चलाए ला सर। धरन जी नाव जी के गावल गीत धुआं उड़ैले और है गीतवा खास तौर पर यश हिमीश और पूरा परिवार खातिर।

भूलल जाला हमनी इंसान के जीवन में एगो पढ़ाव आवेला और उ है बुढ़ापा के। तो सहारा बनेला हमनी के लैका लोग। जितना सेवा करबा उतना मेवा मिली और जितना अच्छा कर्म करबा, माँ बाप के सेवा करबा, उ लोग के लाठी, उ लोग के सहारा देबा, तभी जाके तोहर जीवन में सुधार आए। जितना सकब वो लोग के सेवा करिय, तभी भगवान तोहर कर्म से बड़ी खुशी होई और इस सबसे बड़ा कर्म है। तो चला अभी हमने लीलो माथुर जी के गावल गीत सुनी रासा और ई गीतवा के मांग कर ले बातें शैला जी गौन रिव्या सुदेश से अपन सब लयका लोग खातिर, खास तौर पर आरती जी त्रियुले से हवन और रोकर बेटा आसले आनंदी शिमला और रोकर पति और रोकर सब परिवार खातिर है गीतवा के मांग कर ले बातें।

0: हमर नाम है सोना, हम तोहरा ना पिया सिदोना, ऐसे हिला हिला के आज तोहरा पिया दे खजीना।
1: खजीना और पिगोना दोनों अच्छा बा, काहे बोला था ऐसे। ये गीतवा के मांगल्य बाते हमनी के सनान चरंगी जी बड़ी पसंद करेला सनान यान के गीत, और जितना कोई गीतवा के पसंद करेलन जा सब कोई खातिर तोहार पसंद कार्यक्रम में।

दिखत हवा ना कितना फटाफट फाव फाव हो गल बा। चलो अभी हमने एगो ललना गीत सुनब सा और है गीतवा के मांग कर ले बाते बोसों से हमनी के शुभम खातिर चंद्रानी जी और माता जी हवन मुन याचना प्रिया और नानी के देने से ओकरा जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं और खास तौर पर प्रेरणा जिकर घरे एगो छोटा बाबू आल बाते। तो चला एक रेवे गीत है संगे हम ये कार्य

बाथरूम के अंतर चला लाइन जा। सबको के बोला आप जान नमस्ते, स्वस्थ रहिया, सुरक्षित रहिया। और जितना कोई कार्यक्रम में भाग ले लन जा, अपन फरमाइश भेज लन जा, सबको के बोला आप जा बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर पर मारा जरी जी खातिर और लक्ष्मी जी बॉम्बू से, लीला जी बॉशेरी से। आशा जानू जी और जितना कोई लाइन नहीं मिलल बाते वो सब खातिर, खासतौर पर शोभा जी पॉम्पलेमूस से और हरीश जी बोबासा से। तो पूजा का अनुमति द हमारे देने से सब कोई के नमस्ते, स्वस्थ रहिया, सुरक्षित रहिया और भोजपुरी गमत सुनते रहिया।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपने घर ही मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं। रविवार 24 मई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस और अफ्रीका के बीच एक नया हवाई रास्ता खुलने जा रहा है। अफ्रीकी विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इथोपियन एयरलाइंस जल्द ही मॉरिशस के प्लेजाउंस हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी। ये नई कनेक्टिविटी जुलाई 2026 में होने वाले US अफ्रीका बिजनेस समिट के ठीक बाद शुरू होने जा रही है, जो एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक कदम है। शुक्रवार को कैबिनेट ने एक नए नेशनल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है, जिसे भारी बारिश के दौरान लागू किया जाएगा। जैसे ही भारी बारिश की चेतावनी जारी होगी, निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर जाने की जरूरत नहीं होगी। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन कल यानी कि सोमवार 25 मई 2026 से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। ये अभियान इस साल नवंबर के अंत तक चलेगा। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की एक संयुक्त पहल है। और विदेश स्तर पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया, जिसमें 24 लोगों की हो गई है मौत और 100 से अधिक लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस और अफ्रीका के बीच एक नया हवाई रास्ता खोलने जा रहा है, अफ्रीकी विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस जल्द ही मॉरिशस के प्लेजांस हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी। ये नई कनेक्टिविटी जुलाई 2026 में होने वाले US अफ्रीका बिजनेस समिट के ठीक बाद शुरू होने जा रही है, जो एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। ये सीधी उड़ान से मॉरिशस के लिए व्यापार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नए और बड़े अवसर खोलेंगे। इस घोषणा को लेकर आम यात्रियों के साथ साथ इथियोपिया और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में रह रहे मॉरिशस के प्रवासियों के बीच काफी उत्सुकता और खुशी का माहौल है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि शुक्रवार को कैबिनेट ने एक नए नेशनल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है, जिसे भारी बारिश के दौरान लागू किया जाएगा। जैसे ही भारी बारिश की चेतावनी जारी होगी, निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कर्मचारी पहले से काम पर हैं और चेतावनी जारी कर दी गई है, तो वे तुरंत अपने घर जा सकेंगे। अब तक सिर्फ मौसम विभाग की चेतावनी काफी नहीं थी, नियोक्ताओं को संकट समिति के आदेश का इंतजार करना पड़ता था। श्रम मंत्रालय और यूनियन लीड्स का मानना है कि ये निर्णय एक पुरानी नाइंसाफी को दूर करता है और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सिल्वाना पागीमामन की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
2: हर गर्मी के मौसम में इस पर चर्चा होने लग जाती है। सरकारी कर्मचारी मूसलाधार बारिश होने पर घर जा सकते हैं। निजी सेक्टर के कर्मचारियों को नेशनल क्राइसिस कमेटी की विज्ञप्ति का इंतजार करना होता है, जो कभी कभी बहुत बाद में प्रकाशित की जाती है।
3: Quand nous misérons ça va toujours, c'est la nuit, nous inquiète nos familles.

0: आकाश को इतनी क्यों आगे?
1: निजी सेक्टर और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति कायम की गई है। एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तय किया गया है। मूसलाधार वर्षा होने पर निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर नहीं जाना होगा या फिर काम करते नहीं रहना होगा। इस तरह मालिक वर्ग को नेशनल क्राइसिस कमेटी की विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना होगा। रियाज चतुर ने कहा, कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे। मूसलाधार बारिश होने पर घर जाने का अधिकार सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज एक अन्याय को सुधारा गया है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था। बहुत बधाई है कि ऐसा हो पाया है। आपातकालीन सेवाओं के लिए काम होगा, इस पर बातचीत करनी चाहिए। ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, परिवहन आदि को लेकर भी। ये प्रोटोकॉल उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू है जो फुल टाइम, पार्ट टाइम या शिफ्ट सिस्टम पर काम करते हैं। मंत्री रेजा उतिम ने कहा, पहले तो वर्कर्स राइट्स एक्ट में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स राइट्स एक्ट में कहा गया है कि निजी सेक्टर को अपने कर्मचारियों को लौटाना चाहिए नेशनल क्राइसिस कमेटी के आदेश पर। अब इसमें बदलाव होगा। मौसम विभाग की ओर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा कि निजी सेक्टर के कर्मचारी काम पर न जाएं। अगर काम पर हों तो उन्हें घर लौटाना चाहिए। सुधारों के साथ केवल आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों को काम पर जाना ही होगा मूसलाधार बारिश होने पर। नेशनल क्राइसिस कमेटी की ओर से जारी विज्ञप्ति के बाद ही फिर से काम बरकरार रखा जा सकता है, ये कहते हुए कि निकलना सुरक्षित है। आपातकालीन सेवाओं के लिए कर्मचारियों को काम पर जाना होगा या फिर मौसम की बहुत खराब स्थिति में काम पर रहना होगा। सेवा प्रदान करने वाले हर एक संगठन को एक अंदरूनी प्रोटोकॉल तैयार करना होगा और बरकरार भी रखना होगा। साथ में एक निश्चित आपातकालीन योजना भी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुकूल होना चाहिए। जहाँ तक नर्सरीज और शिक्षा संस्थाओं की बात है तो कुछ भी नहीं बदला है। अलग अलग संबंधित मंत्रालयों पर निर्भर होगा। इस प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए वर्कर्स राइट्स एक्ट में सुधार लाए जाने चाहिए। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट में भी सुधार लाए जाएंगे। क्राइसिस समिति के कार्य बढ़ाए जाएंगे और श्रम मंत्रालय तथा श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व होगा।
2: अब बात करते हैं ऊर्जा की खपत के बारे में। जी हाँ, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन यानी कि कल सोमवार 25 मई 2026 से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। ये अभियान इस साल नवंबर के अंत तक चलेगा। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की एक संयुक्त पहल है। हालांकि सर्दियों के मौसम में गर्मियों की तुलना में बिजली की मांग लगभग 200 मेगावाट कम हो जाती है, फिर भी लोगों को जागरूकता करना बहुत ही आवश्यक है। इसकी मुख्य वजह मौजूदा भू राजनीतिक तनावों के कारण भारी तेल की आपूर्ति में आ रही बाधाएं हैं। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर विशेष विज्ञापन चलाए जाएंगे ताकि लोग बिजली बचाने के आसान तरीके सीख सकें। कम बिजली खपत करने वाले उपकरणों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी सुपरमार्केट्स और शोरूम्स में जागरूकता स्टॉल लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को अपने दैनिक बिजली खर्च पर नजर रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट मीटर और नई तरीकों के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी विभागों, निजी कंपनियों और शैक्षिक संस्थानों में वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी ताकि काम के माहौल में भी ऊर्जा की बचत की जा सके। रिया रामबुजन की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
1: अक्सर सर्दी का मौसम आता है तो हमारी आदतें भी थोड़ी बदल जाती हैं। जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बदलाव आ जाता है।
3: Les diminuer d'une certaine façon, par exemple, de passer avec climatisation et les réservoirs, il y a presque normal de regarder de plus de vent si nous voulons diminuer.
4: Normalement, il y a

0: sont moins sont ces moments de l'hiver. Côté là pour teint, tout teint ben l'appareil.
1: Vert, situation sous contrôle, zone réservée.
2: Central Electricity Board की ओर से पिछले गर्मी के मौसम में ऊर्जा बचत पर ध्यान केंद्रित, सर्दी के मौसम में भी ऊर्जा बचाने से संबंधित जागरूकता अभियान पर करा रखा जा रहा है. ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादेन ने कहा,
3: Nous envie de montrer le Mauricien en général.
2: हम मॉरिशियनों को बताना चाहते हैं कि न केवल गर्मी के मौसम में समस्या है, सर्दी के मौसम में भी समस्या उतनी ही गंभीर है जिस तरह गर्मी के मौसम में. इसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ता है. अगर छोटी छोटी हरकत या कुछ कदमों से बचत की जा सकती है तो निसंदेह बिल कम होगा और सीपी भी कम. कच्चा तेल मंगवाएगा बिजली उत्पादन के लिए. देश के लिए हैवी फ्यूल का दाम भी कम होगा. तापमान के घटने से चाहे बिजली की मांगें कम हुई हो, फिर भी लोगों को जागरूक कराना अहम है. अतः ये अभियान कैसे चलाया जा रहा है जानने की कोशिश की गई. ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया,
3: C'est une campagne qui commence depuis l'école.
2: ये अभियान स्कूल से शुरू होता है. हमारी टीमें स्कूल में जाएंगी, मॉल्स में भी जा रही है, लोगों से भी मुलाकात करेगी. स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा कि क्यों ये अभियान चलाया जा रहा है. बातचीत करेंगे, समझाएंगे, सहायता देंगे. इमो, सीबी, मारिना, ऊर्जा मंत्रालय सहायता करेंगे ताकि बिजली जाया न हो. इसके अलावा इस अवधि के दौरान कई बिजली उत्पादन इंजनों का रखरखाव किया जाएगा. अधिक जिम्मेदाराना उपभोग की ज्यादा जरूरत होगी. ये अभियान 6 महीनों तक चलेगा. अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर से उन्हें नागरिकों के सहयोग से भारी उम्मीदें हैं. इसकी बदौलत सीबी पिछले गर्मी के मौसम की मांग पर 15 मेगावाट तक बचत कर सका है.
4: ऐसे सोरेन अस्पताल में 21 वर्ष की एक युवा महिला की मौत के बाद विभाग द्वारा एक आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है. मृतक महिला 23 सप्ताह की गर्भवती थी. शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला को बहुत ही गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया था, जहां उसे भारी ब्लीडिंग और गर्भाशय सर्विक्स के फैलने की समस्या थी. डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे एक ऑपरेशन व इलाज के दौरान महिला की स्थिति अचानक और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. मृतक सैंपिया की रहने वाली थी. बताया जा रहा है कि वह गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली नियमित डॉक्टरी जांच या प्रसव पूर्व देखभाल नहीं ले रही थी. पीरियड्स से जुड़े संकोच को दूर करने, युवा लड़कियों को जागरूक करने और महिलाओं के शरीर को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक खास पहल की गई है. रेकोनेक्शन प्लेटफॉर्म लाकाज बाबा की पहल का दूसरा संस्करण इस हफ्ते आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय महिलाओं का मासिक चक्र था. ये जागरूकता अभियान रोजेल के प्लाजा में आयोजित किया गया था. कला, बातचीत और चर्चाओं के जरिए इस विषय पर बिना किसी संकोच या शर्म के खुलकर बात की गई. इस कार्यक्रम के दौरान प्रीमियर लून नामक का फिल्म भी दिखाई गई, ताकि लोग इस विषय को और संवेदनशीलता से समझ सकें. पूजा सुकालू.
5: महिला शरीर की सुंदरता को दर्शाने वाली कलाकृतियाँ एक विषय के रूप में महिलाओं का मासिक पीरियड, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन जिसके बारे में अक्सर खुलकर बात करने से हिचकिचाती है. ऑड्री की ये प्रदर्शनी ऐसे विषय पर बात करती है जिसे अब धीरे धीरे अधिक आसानी से चर्चा में लाया जा रहा है. ऑड्री नान को कहती है, पहले की तुलना में आज की पीढ़ी इस पर आसानी से आराम से बात करती है. मेरे परिवार में हम इस विषय पर खुलकर बात करते हैं. हमारे बुजुर्ग दादा दादी के लिए ये थोड़ी अजीब है, क्योंकि पहले के जमाने में ये बात घर के बाहर नहीं जाती थी, सिर्फ महिलाओं के बीच रहती थी. कॉलेज में भी हम सब लड़कियां एक ही नाव पर जाती हैं, तो ये एक आम बात होती है हमारे लिए. अपने शरीर को समझना जरूरी है, विशेष रूप से युवाओं के लिए. एलिसा सेसिल कहती है, नेट पर सब कुछ ढूंढा जा सकता है पर सब में सच्चाई नहीं होती, इसलिए इस विषय पर चेतना अभियानों का आयोजन एक अच्छी बात है. हार्मोनल समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, हम स्वस्थ हैं या नहीं ये जानना जरूरी है. इस टाबू

0: को तोड़ने के लिए लाकाज बाबा की पहल पर रिकोनेक्शन नामक प्लेटफॉर्म ने एक जागरूकता अभियान आयोजित किया।
1: Contrairement aux hommes, nous payons de nos possibilités connaît qui a fait qui pas fait trop au déroule normal parce qu'ils nous payent oblige nous écoute nous avec nous les cours.
0: एक सप्ताह के दौरान युवाओं और बुजुर्गों ने इसमें भाग लिया, जिसके जरिए महिलाओं के इस विषय को बेहतर ढंग से समझा जा सका। नाताली फिलोजेन कहती है, जब 9, 10 या 11 साल की एक लड़की को पहली बार उसका मेंस होता है, वो कैसे इसका सामना करती है, वो अपने माता पिता से इस बारे में खुलकर बात कैसे करती है, स्कूल में सहेलियों के बीच क्या बातचीत हो रही है, शरीर में परिवर्तन आती है पर फिर भी वो एक लड़की ही है, महिला नहीं, उसको अपने पास ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो उसे सही और उचित जानकारी दे सके।
2: Culture, mais aussi ce côté médical, ce côté qui concerne l'écho même.
0: Au sol par upasthit logon ne Melanie Melo ki premier lune film ki screening bhi dekhi. Isse pehel ka uddeshya khule baatcheet karna aur ek adhik swatantra aur jagruk drishtikon ko barhava dena raha.
3: ईसाई गिरजाघर में आज रविवार को पेंटेकोस्ट का त्यौहार मनाया गया। ईसाई कैलेंडर का ये एक प्रमुख त्यौहार है जो ईसा मसीह के पुनरुत्थान के 50 दिन बाद प्रेरितों पर पवित्र आत्मा के आगमन की याद में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र आत्मा का ये आगमन आग की लपटों के प्रतीक के रूप में हुआ था। इस अवसर पर पोर्टवी के बिशप मोंसेनियर जॉन मिकाएल जुरन के संचालन में एक विशेष प्रार्थना सत्र लगाया गया। आज शाम से हज की बकायदा शुरुआत हो रही है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हाजी मक्के से मीना की तरफ जाएंगे। इस शहर से हज के मराहिल शुरू होंगे। सबसे अहम दिन मंगलवार को योम अराफात होगा, जहां हाजी को ए अराफात पर जमा होकर इबादत और दुआओं में अपना दिन गुजारेंगे। मॉरिशस और रोड्रिक्स में स्क्विंट से पीड़ित 200 से अधिक बच्चों और वयस्कों के सफल ऑपरेशन किए गए हैं। भारत से आई एक विशेष मेडिकल टीम जिसका नेतृत्व डॉक्टर मिलिंड किलेडर कर रहे थे, उन्होंने पिछले अप्रैल महीने के दौरे के दौरान ये सर्जरी की। ये पहल रोटरी क्लब बागेटेल और भारत के रोटरी क्लब पोंडिशेरी अगारम की साझा कोशिशों का नतीजा है। ये नेक काम लगातार अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है और इस साल इस मुहिम को स्क्विंट आई 4.0 नाम दिया गया, जिसका आधिकारिक उद्घाटन 23 अप्रैल 2026 को मोका में हुआ था। पोतली में स्थित अल्फा कॉलेज ने अपनी स्थापना के 60 साल पूरा कर चुके हैं और आकार में छोटा होने और छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद ये स्कूल बिना किसी भेदभाव या उनकी योग्यताओं को परखे हर पृष्ठभूमि के बच्चों का स्वागत किया जाता है। वहां पर यहां हर एक छात्र की जरूरतों को समझा जाता है और उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। ये संस्थान उन बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है जिन्हें पढ़ाई में पीछे छूट जाने के बाद जीवन में आगे बढ़ने का एक सच्चा और दूसरा मौका होना चाहिए। इस स्कूल की बेहतरीन कोशिशों का असर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। इसके एक्सटेंडेड प्रोग्राम पढ़ाई के में कमजोर बच्चों के लिए विशेष जो कोर्स है, वहां के कई पूर्व छात्र आज न सिर्फ सफल हुए हैं बल्कि अपनी आगे की उच्च शिक्षा को भी शानदार तरीके से जारी रख रहे हैं। पूजा सुकालू की रिपोर्ट।
0: जब कोई यहाँ पोटली समय पुदरिया गली से गुजरता है तो शायद ही अल्फा कॉलेज आकर्षक ना लगे या ना दिखे, लेकिन इन दीवारों के पीछे एक अलग ही वास्तविकता है। यहाँ कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्र धीरे धीरे अपने आप में एक आत्मविश्वास पा लेते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी गति के अनुसार उपयुक्त सहायता दी जाती है। इनमें से कुछ छात्र पूर्व एक्सटेंडेड प्रोग्राम में शामिल थे।

0: ही आज वे अपनी शैक्षिक यात्रा में अधिक आत्मविश्वास और बेहतर संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे
1: हैं।
0: तायब सैफ अली कहता है, मुझे छठी कक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हुआ, तब मैं यहाँ अल्फा कॉलेज में एक्सटेंडेड प्रोग्राम में प्री वोक में शामिल हुआ। यहाँ पर मुझे हौसला मिला आगे बढ़ने के लिए। मेरे अकाउंटिंग अध्यापक की मदद से मुझे इस विषय में एक मिला और मैथमेटिक्स में मैं पूरे मॉरिशस में तीसरे स्थान पर आया हूँ। निजल फाबिया कहता है, फेल होने के बाद मैंने अपने आप में विश्वास ही खो दिया था। सब कॉलेज ने अपना द्वार ही बंद कर दिया। यहाँ अल्फा कॉलेज में मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला सफलता की ओर जाने के लिए। अभिभावकों ने भी ये बदलाव महसूस किया है। वे इस मार्गदर्शन और नियमित फॉलोअप की सराहना करते हैं।
2: इसी कॉलेज अल्फा मैन प्रोफेसर इन बियन ट्रावाया अवेक ली जन एनकोरेज ली।
0: नासरा भोला कहती है, मेरे बेटे को आगे बढ़ने का मौका मिला है। अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन बहुत किया गया, वो अपना एनसी कर पाया है इसी मदद से। रेजिन आपादू कहती है, मेरे दो बेटे को यहाँ भेजकर मैं पछता नहीं रही हूँ। आज वे सफल हो पाए हैं, अनुशासन की राह पर चलकर वे जीत पाए हैं। इस प्रगति के केंद्र में है एक ऐसी शिक्षण पद्धति जो छात्र केंद्रित है, जहाँ हर कठिनाई को ध्यान में रखा जाता है। रीना नंकू कहती है, यहाँ पर हम परिवार की तरह रहते हैं। सभी नोट्स एकदम सरल होती है। बच्चों की तरक्की के लिए हम धीरे धीरे उनकी मदद करते
3: हैं।
4: Ils ont été traités comme étant inférieurs, incapables de pouvoir
0: Gulen Bose कहती है, हम बच्चों को समझाते हैं कि वे लोग बाकी बच्चों की तरह ही हैं, अलग महसूस होने नहीं देते हैं। प्रबंधन के स्तर पर धैर्य, नियमितता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन इस व्यवस्था के मुख्य स्तंभ है। अल्फा कॉलेज की रेक्टर नाजिमा वलाइडो कहती है, अल्फा कॉलेज में हम रिमीडियल कक्षाएं चलाते हैं, चाहे एक्सटेंडेड स्ट्रीम हो या मेन स्ट्रीम। ये कदम छात्र में आत्मविश्वास लेकर आता है। अल्फा कॉलेज में हर छात्र अपनी गति से आगे बढ़ता है, एक साझा लक्ष्य के साथ प्रगति करना, सफलता प्राप्त करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना।
5: लॉन्ग माउंटेन स्थित गंगा यमुना सरस्वती धाम स्पिरिचुअल पार्क में पिछले शुक्रवार को एक दिव्य आध्यात्मिक संध्या का आयोजन किया गया। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में भारत के गुजरात राज्य से पधारे पूज्य साधु त्याग वत्सल दास जी ने अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से भक्तों को आध्यात्मिक संदेश दिया। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया। क्वेटा में चमन फाटक का रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए इस शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। कुछ अन्य देशों की खबरें इस रिपोर्ट में तफसील के साथ सुमहरा अकबर अली।
6: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला के चलते मौतों की तादाद 204 तक पहुंची है। संदिग्ध मामलों का आंकड़ा 867 तक पहुंचा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दूसरे 10 अफ्रीकी मुल्कों को खतरा है। युगांडा, रवांडा, केन्या और दक्षिण सूडान शामिल है। युगांडा में 3 नए संक्रमित मामलों की पुष्टि की गई है। 1976 में कोंगो में पहली बार एबोला वायरस को पहचाना गया था, तब से लेकर आज तक 17 बार ये संक्रमण सक्रिय हुआ है। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को और सख्त बनाया है। अब अर्जी भेजने वालों को नए नियमों का पालन करना होगा। अब जो विदेशी अमेरिकी ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं और अमेरिका में ही रह रहे हैं, उन्हें अमेरिका के बाहर अर्जी भेजनी पड़ेगी। यानी विदेशियों को अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश में अमेरिकी दूतावास के जरिए अप्लाई करने की जरूरत होगी। व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका की खुफिया सेवा ने एक व्यक्ति का कत्ल किया। उसने गोली चलाई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक भाषण दे रहे थे। रूस ने कीव पर हमला किया है। व्लादिमीर पुतिन ने रिटेलिएशन कार्रवाई का वादा किया था क्योंकि यूक्रेन ने पूर्व में जानलेवा हमले किए थे। दो लोगों की मौत हुई है और दर्जन लोग घायल हुए।

0: और अंत में मौसम का हाल।
1: मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो सोमवार 25 मई को सुबह 4 बजे तक लागू है। मैस्कैनिन के दक्षिण में पाए जा रहे एक एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर और ठंड हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को मौसम काफी अच्छा रहेगा सिवाय देर रात को बादल कुछ घिर आएंगे, खासकर देश के पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी। कल सुबह भी कुछ इलाकों में बारिश होगी और कोहरा भी छाया रहेगा। कल शाम को ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान है, बाद में मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार समंदर खराब रहेगा और दक्षिणी समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों को दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है तथा जनता से भी सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम तापमान 23 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:35 पर होगा।

0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम शिव को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आइए शोक समाचार सुनते हैं। अपवेल, गेंगुडुलेन अपवेल में 47 साल की 47 years old की श्रीमती अल्विना गेंगुडु, पैदाइशी नाम अपादु और जिन्हें सब लोग अल्विना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के साढ़े नौ बजे उनके पति श्री सुबी गेंगुडु के घर गेंगुडुलेन अपवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। कन्हाई लेन लाफ्लोरा में 76 साल की 76 years old की श्रीमती नेलौती सुरुजबाली महादेव जिन्हें सब लोग रीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के साढ़े दस बजे उनके बेटे श्री उमेश महादेव के घर कन्हाई लेन लाफ्लोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। ग्रांबाफों लालमाटी में 73 साल की 73 years old की श्रीमती हेवंती देवधारी, पैदाइशी नाम जोगी और जिन्हें सब लोग पार्वती रानी ठाकुराइन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री प्रकाश देवधारी के घर ग्रांबाफों लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू कैथोबोन में 96 साल के 96 years old के श्री देवदत्त गोकुल जिन्हें सब लोग टोंगौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी।

cremation tomorrow at 10 a.m. La Tapie Road Bon Accueil mein, La Tapie Road Bon Accueil mein, 60 saal ki, 60 years old ki, Shri Surajanan Ghumariya, Shri Surajanan Ghumariya, जिन्हें सब लोग सुराज के नाम से भी जानते थे और जो नेशनल ऑडिटर के एचआर मैनेजर थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता घुमरिया के घर लातापी रोड बुनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लातापी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। श्वाजी बेजिकाप में 40 साल के 40 years old के श्री अजीव आरी जिन्हें सब लोग दावा के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ श्रीमती सांता बाई इटू के घर श्वाजी बेजिकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते बेजिकाप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। Grand River South East Camp de Pêcheur Uttam Jagan Road Grand River South East Camp de Pêcheur Uttam Jagan Road mein 56 saal ke 56 years old ke Shri Manoj Phura जिन्हें सब लोग जीतन के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उन्हीं के घर ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट कौदे पेशिया उत्तम जगन रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट नून। रॉयल रोड एक्वायर में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री दयादत्त राजवंती जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता राजवंती के घर रॉयल रोड एक्वायर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। वन शक्ति माता स्ट्रीट पेची बेलिया में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवंती देवलल पैदाइशी नाम पुरन और जिन्हें सब लोग माता जी देवी के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री बिसुनदयाल देवलल के घर वन शक्ति माता स्ट्रीट पेची बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। रामा रोड शामुनी में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री बसंत तैयब जिन्हें सब लोग मोती के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री सत्यम तैयब के घर रामा रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। और नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गैंट हिल यूके में नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गैट्स हिल यूके में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री राजीव कुमार गोपल जिन्हें सब लोग राजीव के नाम से भी जानते थे और जो HSBC के पूर्व मैनेजर थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बुधवार 27 मई सपहर के 3:30 यूके समयानुसार उन्हीं के घर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फॉरेस्ट पार्क यूके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेनसडे ऑन 27 मई एट 3:30 PM अकॉर्डिंग टू यूके टाइम। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

我知道我已经看到了春天，记得那一天带着想你的日夜期盼。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस
3: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: स्वराल वेदिका मन दैनंदिन सायंत्रपू

0: कम रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोतागण को हमारा सादर प्रणाम। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे रास्तों में भी उम्मीद की रोशनी दिखाती है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम भगवान गणेश जी का नाम लेकर करेंगे।

चलिए श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। जब हम विश्वास की बात करते हैं श्रोताओं, विश्वास ही जीवन का सबसे अनमोल आधार है। यह वह भावना है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है और मन में सुरक्षा तथा अपनापन पैदा करती है। विश्वास के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता, और इसी विश्वास के साथ हम ईश्वर को पूछते हैं। और अगर मन सच्चा हो, कहते हैं ना, भगवान भी हमारी पुकार आसानी से सुन लेते हैं। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओ, मनुष्य को सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब इंसान अपने प्रयासों पर भरोसा करता है, तब सफलता उसके कदम चूमती है।

बछली प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं श्रोताओ। जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं तो सच्चा विश्वास समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना कठिन होता है, इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। तो चलिए श्रोताओ, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। चलिए हमारे तकनीकी सहायक जो है यूसुफ है हमारे साथ, उनको हम धन्यवाद देंगे। आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ निभाने के लिए। आप सभी को शुभ रात्रि।

कुर्बानी करने से पहले बाल और नाखून न काटने की हिदायत। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आ जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल और नाखून न काटे यहाँ तक के कुर्बानी कर ले। यह हदीस कुर्बानी की तैयारी और इस इबादत के अदब को बयान करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने वाले को हिदायत फरमाई कि ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आने के बाद कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न काटे। उलमा फरमाते हैं कि इसमें कुर्बानी करने वाले के लिए एक रूहानी मुशाबिहत है, ताकि वो हज करने वाले के साथ किसी हद तक इबादत की कैफियत में शरीक हो सके। यह अमल मुसलमान को याद दिलाता है कि कुर्बानी महज एक रस्म नहीं बल्कि एक अजीम इबादत है, जिसके लिए ज़ाहिरी और बातिनी अदब इख्तियार करना ज़रूरी है। इससे बंदे के दिल में अल्लाह ताला की अज़मत और इबादत का एहतराम पैदा होता है। सामीन कराम, महफिल शब अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। खुदा से दुआ है कि वह हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: સગત આવે ઘડી મિલા લઈ વખત મોરિશિયસમાં રાત કે ઠીક 9 બજે બાદ દૂસરા થવા રેડિયો મોરિશિયસ ઓર રેડિયો મનોરંજન સાથ મેં કી દિખાતા હોય ટિકટોક પેજ પર
1: કન્ટિન્યુઅસ મ્યુઝિક
2: ઓએમ3 7 ડેઝ અ વીક 24 hours a day. My, this is Radio Mauritius.
3: Bhojpuri, tadka. Bhojpuri, tadka. भोजपुरी तड़का
4: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
0: सब संगतियारों के जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल एमबीसी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन साथ में हमने के तू देखा था वह टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के सबको के स्वागत करते जा आज दिमास की रात और आज दिमास 24 मई 2026 भुला गई आज रविवार 24 मई साल 2026 और अभी से लेके रात के 11 बजे ले नाचअप सा गाओ सा झुमअप सा कमरवा डुलावअप सा और अभिषेक भोजपुरी गीत के जलसा भोजपुरी गीत के गमत तुलक के संगे संगे थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमावा का जगह देव जगह बीच सैंक पर पहल का गाना है एगो पोटपुरी है किशोर किमिया के गावल है गीत चलाओ तो इससे ओगेली खातिर ईशा फिर मीनाक्षी जो ना बीएम की देखा था वन टिकटॉक पर अभिषेक मीनाक्षी है गीत चली अरिता सीतालू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कल को जन्मदिन बा बधाई और प्यार देवत कर बेटा शैलेश बहु स्वस्थी पोती अनुष्का फिर बेटा साइलेन और सब सीतालू परिवार रीता सीतालू के धीमाना प्यार और आशीर्वाद और संगीता मिरन भी रीता सीतालू के बेटा हैप्पी बर्थडे। हाय विजया अगला गीत तोहर खातिर केनी मोनेगन है गीत और नाम नवस शाम है गीत थोड़ो खातिर मीनाक्षी है गीत थोड़ो खातिर चली जितना कोई हमने के रेडियो पर सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन जितना कोई हमने के टिकटॉक पेज पर देखा था तो गीत तो लोग के नाम किशोर किमिया की आवाज़ चले एक साथ सुने।

संगठनोगी तो सबको जाने ना कि अंग्रेजी में कहावत बा हेल्प इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य अच्छा बा तो सब कुछ अच्छा बा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रही तो कुछ भी अच्छा नहीं रही। फिर भी लोग सिगरेट फुकल करेला और शराब पियल करेलन सर। आई सिगरेट और शराब बहुत चीज बहुत खराब, इकल से स्वास्थ्य खराब होला, परिवार में दरार भी आवेला और परिवार बर्बाद हो जा रहा। सिगरेट और शराब नहीं पिया, सिगरेट नहीं फूकिया, शराब नहीं पिया और बस अच्छा अच्छा गीत सुनिए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। स्वास्थ्य अगर तोहर लगे बात एगो आसत है, उस स्वास्थ्य के अपन अच्छा से रखिया तब सब जिंदगी में कोशिश करी। उस संगत अभी गीत मंगला बार टिकटॉक पर दाल पकैली भात पकैली कोकोम के सलाद तो सब रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस के लिसनर्स के नाम और जितना टिकटॉक फॉलोअर्स हमने के देखा था। आर्यन सहानी 124 है गीत तोहर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ। यस और है गीत चलाओ तेज सा उमा देवी खातिर जो अभी हमने देखा था वन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर। और आर्यन सहानी की प्रोग्राम बड़ी अच्छा लगा था और नेपाल से ढेर को इनके साथ देवत वन बहुत बहुत धन्यवाद। और चले एक साथ सुनेगी तो दाल पकैली भात पकैली। अब जितना कोई अभी भोजन करता बड़ी सब बोना पे सुरुचि चले एक साथ सुनेगी तो

आजकल खाए पिए के जितना सुविधा बा पहले के जमाना में नहीं रहा। हमने के जमाना में छोटा छोटा लड़ी सा मार के भात हमने खाते रही सा मार छोंका। जब भात पकई बा तो मेरे को पानी रहेला उजर उजर ओके मार बोलाला ओकर में लहसुन प्याज या डाल के जब छोंक दीबा तो ओके मार छोंका बोलाला। अभी के लड़का लोग नहीं जानी आके के लड़का लोग हैं जब हम छोटा छोटा लड़ी सा तब माँ पकावे चूल्हा में पकता लागे। आजकल तो सब सुविधा भैया पकाए कि आगे के ज़माने में चूल्हा में लकड़ी में पकावा तरी से मचान पर लकड़ी रखाता है तो वो सब लुप्त हो ही जाता। हमारा भी ज़माना था हाँ कि नहीं। रात के 9:19 अगला गीत पिति पिति पीमा को श्रोता मंगला कभी तो चलाओ आपसे तोहर खातिर कगिंद्र अधिक गीत तोहर खातिर आलम गीत तोहर खातिर एक गी है गीत तोरो नाम और चाहते से सब संगतियालों के नाम जो कत काम करा था हमें के साथ देवा था और फिर कोई घर पे हुआ जो आराम पर मावत हुआ था और हमें के साथ देवा था वन था गीत लोग के नाम भी पीती पीती पीमा चल एक साथ सुने।

0: अभी को लावता चला संगत्या से मिले पूर्णिमा फोकीरा वैसे बात करब जहाँ तो हमें को बात समझ में नहीं आ रहा टेलीफोन के तेरे वहाँ काट दे वेला सर पूर्णिमा जी भी टेलीफोन कहे टेलीफोन काट दे ला टेलीफोन करा अभी लाइन खुल रहा बात नहीं बता कि मौका नहीं देवते मौका देवते बताया कि पर टेलीफोन करके काट दे वेला सर वेरी बैड ऐसा नहीं करते जो गीत जब बज रहा था गीतवा बीच में नहीं सकब से काटे ना गीतवा जब बज जाए तब तो हर कॉल ले वापस अब बिचवा के बीच में बचा रहा सतन इच्छा बा हेलो गीता बाई नमस्ते
1: नमस्कार कैसे हो
0: हम ठीक हैं तू कैसे हवा
1: मैं भी ठीक हूँ
0: बड़ा जोर गमट हुआ था तोहर लगे
1: क्या
0: गमट हुआ था बोला था तोहर लगे बड़ा जोर
1: ना गमत नहीं होता
0: गमत
1: सुना
0: था चेहरा जिंदगी में चेहरा थोड़ा सुन गमत करके हो का हो हाँ तो अकेले रब तो ढेर स्ट्रेस में रब वही कहते नाचे के गावे की बोली जाए ना
1: ये तो जीवन है ना
0: ओके ओके तो बेशक हमने के साथ दिवा तो बहुत धन्यवाद और अगला गीत के कर कहते
1: हाँ दादा तो हम एक गीत मांगब राधा नाचे ला कृष्ण बजावे
0: राधा के सोभेरा ना
1: राधा
0: राधा ऐसे जोड़ी गीत बार

0: राधा तो नाचेला हमू तो नाचेला कृष्ण भगवान
1: संगे हमू कब कब नाचेला
0: अच्छा बा
1: थोड़ा डोने के घर में
0: हाँ और ये तो ऐसा परिवार लोग खातिर
1: हमार बेटा हमार पतो
0: हाँ
1: और बेटी और तीन गो नाती दुगो नाती नहीं गो नाती बा
0: तो राजू के बोली माँ जोर बता सुन कमती कर दे प्लीज जब भी टेलीफोन कर बार राजवा कमती कर दिया बोले
1: हाँ हाँ भुला गई लो
0: ए ताई से न करी उनकी कान फाड़ जाए हो
1: हम कान से उतना नहीं सुनी ला
0: हम थोड़े तो बुझाता
1: चाहिए
0: डॉक्टर लगे थोड़ा सुन डॉक्टर को दवाई डाली तो अच्छा हो जाए
1: बोले वाला पागी चाहिए डाले
0: के हाँ लापागी वाला कान में डाला ला
1: हाँ तब हमार कैसे डालब रात दिन सही डाले की तब
0: हाँ हाँ नहीं जब ना है बत नहीं नहीं डाल बा जब दिन की कहूँ जाए बा तो सब बा डाले कनवा में चैना
1: तो
0: चैना खिगले करे की ना माता जी का कर वही सब तो जीवन में
1: बात ये दुनिया के दस्तूर है भगवान के काम
0: सब कोई तो है ही में पासे हो रहा है ना आज के दिन कैसे बीता अच्छी तरह से
1: आज के दिन अच्छी तरह से बीता
0: ओके
1: और हमार जो संगतिया रलन सा
0: ओके
1: अच्छा
0: ओके जी बहुत धन्यवाद और एक संगत बा राधा नोबेल फ्रांस हेलो राधा जी तो लापारी में लोग तो हर निमोको तो हर नाम यहाँ पे एमबीसी में सब निमोको बा है
2: प्रणाम भाई प्रणाम
0: हाँ प्रणाम कैसे हो
2: क्या
0: बोला तो कौन सी की डायलॉग खराब के दिखा था बिल्ली हम बोलते
2: फूफे
0: अगला गीत केका खाती मांगे तो बोला था
2: हमारे सब बहन खाती है जितना हमारे भाई बंधु सबके मन में देख के मन में बंधु को भी काम करता रख के मन में नितिन प्रदीप और मतलब मेरे मेरे के मतलब दिल के
0: आठोरो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भाग ले प्रोग्राम में हेलो
3: हेलो
0: नमस्ते
3: नमस्ते प्रताप
0: प्रेमिला जी काफी दिन के बाद टेलीफोन कर रहे थे
3: हाँ
0: कैसे बारा सोते अच्छा
3: फोन में जीरो नहीं अच्छा तो फोन जब कर रहे थे कोई नहीं ले कहूँ के परिवार नया ले ली तब तक थे सुने के
0: चलो भगवान की दया से टेलीफोन अच्छा हो अब सब फोन टेलीफोन करे और अगला गीत के का खातिर
3: अगला गीत तीन गो बहना खातिर और जितने लोग काम कर रहे थे और सब परिवार के लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद टेलीफोन कर ला हमने के शुक्रिया चाची ललिता कुशल त्रियोले से हेलो चाची
4: नमस्ते नमस्ते बेटा
0: कैसे हमारे चाची अच्छा हुआ ना
4: अच्छा है बेटा अच्छा है
0: हमने लिता हूँ कैसे बा बड़ी ठंडा कर रहता है नहीं तो ठंडा गिरा था
4: हाँ हाँ हो जो तो ठंडा बा ना
0: हाँ तो मुका मतलब ठंडा के ठा
4: था हाँ मालिंगा से पिए सगरो
0: अगला गीत का खातिर
4: अगला गीते वो जन्मदिन के सौते डाल दिए बेटा
0: हैप्पी बर्थडे अरे चला दियो आपसे थोड़ी घड़ी में
4: अच्छी हमार नाती विदुर
0: हाँ
4: और समीक्षा आर्यन और कर्मा माताजी उषा
0: लड़का लोग भोजपुरी सुने ना
4: लड़का हाँ हाँ सुने रंसा
0: ओके बहुत अच्छी बात है
4: और हमार बहन सुदेवी के डाल दिया
0: हाँ सुदेवी तो हमें इस सामने के सुने ला ए ता मामा खूब खुशी रहे आपके प्रोग्राम
4: और छोटी दीदी के डाल दिया
0: ओके
4: भावती के डाल दिया
0: ओके जी बहुत धन्यवाद और मालदीव से देर कोई हमने की देखा था सीडो और स्टे सीडो एंड स्टे मालदीव आइलैंड से हमने की देखा था वन और सुना था वन बहुत बहुत धन्यवाद अगला गीत और खातिर कृष्णा है गीत और खातिर और साथ में है गीत चलिए अब्दुल खातिर प्रेम खातिर करण खातिर राजीव खातिर निर्मला जया निर्मला बाई है गीत करण गीत तोहर खातिर साथ में मीन खान रोज और जूलियो नानी है गीत तोरो नाम वंशिका है गीत तोरो खातिर और जितना कोई इनके साथ हुआ था रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर जितना कोई इनके टिकटॉक पेज पर देखा था गीत तो लोग के नाम भी राधा के सोभेरा राधा के कौन सी सोभेरा चल एक साथ सुने।

0: भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
1: रात के 9:35 होता है और भोजपुरी तक का प्रोग्राम चलता है रेडियो मॉरीशस रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पेज पर भी। अगला गीत को बर्थडे वाला गीत है बसंत सुपल के गावल गीत हैप्पी बर्थडे। गीत चलते सब परी खातिर जाय खातिर शाज तेज खातिर भी और जितना कोई हमने कि सुना था अभी रेडियो मॉरीशस वाला गीत और नाम पूर्णिमा जी हमके साथ देवत हो। हेलो पूर्णिमा।
2: नमस्ते
1: कहे कहे टेलीफोन काट दी रहता रे वाह अतान करते रखे जी
2: नहीं तहां बोले थोड़ा नहीं डिस्टर्ब
1: करा नहीं नहीं गीतवा फिनी

0: ता सुनी करिए गीत के बीच में कैसे काटब सर नहीं अच्छा काटे के ना माँ अरे पाफे नहीं हाँ। अरे कैसे बा समाचार
1: चला था तो बा समाचार
0: परिवार सब कुशल मंगल
1: हाँ पार्टी तो मेरे नहीं यार
0: और आज के दिन कैसे बीतल
1: आज काम ही काम
0: आ, काम ही काम अब थोड़ा सा आराम
1: हाँ थोड़ा आराम थोड़ा काम हम पछला लेर हमार नेस चलाल तनी ओकरो देख ली
0: हाँ ये सब तो चाहिए जिंदगी में ये सब बाना हाँ, का कुछ
1: है परिवार हाँ परिवार आवेला ते गो भाग है ना
0: हाँ ये तो भाग के बाद तो थोड़ा लगी परिवार आवेला और
1: अब ये गाना चल रहा ना राधा नाचे
0: राधा नाचे ऐसे जो जो से राधा नाचे दिखा तो है ना
1: हाँ दिखा तो है ना आज वीकेंड बहु खतिर
0: और अगला गीत की कर खतिर
1: हाई गाना हुआ हम नाचे के अभी लेते होते हैं तो कर जन्मदिन बा 12 बरी सोई
0: कौन नाम बा नाचे के
1: कनिष
0: हाँ कनिष को दिसा हैप्पी बर्थडे
1: हाँ धन्यवाद अभी है जा रहा है अभी गल घरे
0: एटा
1: तने तभी सुन ले
0: आली तो डाल दियो सब खातिर गीत जन्मदिन के
1: हाँ हाँ नहीं हम ओकर खातिर गाना मांगा था
0: हाँ
1: ओकर खातिर है गाना वहाँ डाल दिया दादा के अंगनवा में नव फुलवा फुला गल फुलवा
0: के गई रख बा
1: हम ही गई ले हाँ
0: दादा के अंगनवा में
1: हाँ नव रंग के फुलवा
0: आले आले चला दियो सर
1: फिर वो सब हमने के फूल है फुला था ना
0: हाँ तो लेकर लो हाँ जी हाँ फिकर नहीं बा
1: हाँ अरे ओकर जन्मदिन के शुभ बधाई ओकर माता जी पूनम ओकर पिताजी रोशन और ओकर दादी कौन नाम बा दादी के सारस और ओकर एक छोटा बहन बा परी और ओकर मौसी बा एगो पुलिस इंस्पेक्टर बा मालिनी
0: और ओकर
1: मौसी बा पिंकी पूजा और हम है नानी पूर्णिमा अब फुकिहा परिवार दसोई परिवार कलिया सेठी परिवार और खास करके तुहार पूरी टीम
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमने की टेलीफोन कर ला और कुछ कहते लाइन पर से मिले जा हेलो हेलो जी नमस्ते
2: हम संजय हरिचंद बात है गोकुला से
0: हाँ संजय कैसे समाचार
2: सब ठीक पछलावा तो है
0: चला था धीरे धीरे बोला
2: चला था होता
0: हाँ
2: ठंडा ठंडा कर लेवा के था नाचे के
0: हाँ ठंडा ठंडा करा था ना हाँ नहीं अगला गीत क्या कर खाते
2: हाँ ये हमारे पत्नी संजय हमारे हमारे जी अभिषेका आज जी कोई रात के काम करता सब कोई थे
0: डाल दिया। अभी तू रात के काम कर रहे कि घर ही हुआ
2: घर
0: ओके ओके ओके ओके तोहर खातिर भौजी खातिर और हुविष्का खातिर खासम खास अगला गीत ओके जी बाय बाय ओके तो जितना कोई भी रात के काम करता लोग के खातिर भी गीत चली अंसुर या अनंत है गीत तोहरो नाम साथ में गीत चली सुकंज के नाम अनवर रहीम मिकाएल शीला बाबूलाल दामो भी हमके साथ देवत हवन फिर परी हवन जा और मरियम मानिनी पांड्या है गीत और खातिर कैलविन रामगुला बालकृष्णन लतीफ अंसूर्या अनत और नीश रागिनी है गीत और खातिर और जितना कोई भी हमने की सुनते हों जा बहुत प्यार से और देखते हों जा बहुत प्यार से टिकटॉक पर पेज पर तय गीतों के नाम और जितना कोई की जन्मदिन बाद ढेर माना प्यार आशीर्वाद धनवंती कुंज भी हमने के साथ देवत हवन अतः चला एक साथ सुने बिलीला एल्बम से गीत हैप्पी बर्थडे बसंत सुपाल की आवाज़ में

ये प्रोग्राम रोज के चलेला लेंदी से लेके दिमास ले एमबीसी रेडियो पर रात के 9 बजे से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का और तड़का लगावा तीसरे तेलों के संगे संगे अभी रात के 9:45 था। अगला गीत मेविन की ओर से राजेश के नाम रहेलन पोविडांस को अच्छी मिली थे और मांग के सिंदूरवा खूब जोरी लगेला मांग के सिंदूरवा इतना जोरी लगेला कि कहा बोलबा और बेशक यहाँ पर है सामनी तो लोग के साथ देख खातिर जानी ना सर कि मौसम थोड़ा भीगा भीगा बा और ठंड के मौसम शुरू होकर बा तो बेशक ठंड के मौसम के दूर भगा खातिर नहीं से धमाकेदार हो छोड़ गई तो लोग के मनोरंजन खातिर तो चलो एक साथ सुने अगला गीत बीच में आती सांपत की गावल गीत मांग के सिंदूरवा।

पूजन हम करी राज यहाँ बहुत ही प्यारा सन गाना। और अभी कुछ छोटा सन कहानी थोड़ा सुनाओ। अब कहानी के शीर्षक है रामू की मेहनत। एक छोटा सन गांव में रामू नाम के वो गरीब आदमी रहता है। लोकर घर मिट्टी के रहल और परिवार बहुत बड़ा। रामू दिन भर खेत में मजदूरी करता है, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलावता है। कई बार लड़का लोग के खाए के नहीं सकतल देवे। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती भी। वो कबो कोई से झूठ नहीं बोलता है, ना कबो चोरी करता है। दाल भात जो रहता वही खा लेवा सर। गांव के लोग गरीबी दिक्कत दया करते सर, लेकिन कोई ओकर मदद नहीं करी। एक दिन गांव में एक भयंकर बारिश होल, कई लोग फसल सब खराब हो गल। उस समय रामू अपन थोड़ा सा बचा कुचा ना जो है वो एक बूढ़ी औरत के दिलक क्या है, क्योंकि घर में खाए की नहीं रहल। ये देख के गाँव के मुखिया बहुत प्रभावित होल। मुखिया अगले दिन पूरा गांव में एक इकट्ठा करलक और बोलक, रामू गरीब जरूर बा, लेकिन ओकर दिल बहुत बड़ा बा। हमने की छह कर मदद करे कि गांव वाला सब कोई मिलकर रामू के नया घर बनवैलन सा और खेती के लिए ज़मीन देलन सा। कुछ साल बाद रामू मेहनत करके फसल किसान बन गल, लेकिन वो गरीबी के दिन कबू नहीं भुलाल। वो हमेशा याद करलक कैसे वो गरीब लोग के मदद करेगा। कहानी कैसी की है कि गरीब इंसान की गरीबी इंसान के छोटा नहीं बनावेगा। मेहनत, ईमानदारी और अच्छा दिल के इंसान ही असली दौलत है। तो इंसान चाहे गरीब कितना भी क्यों ना रहे, पर अगर उसके दिल में बा दूसर की सहायता करे कि तब भगवान भी उसकर सहायता करेला। रात के 9:55 वंदना हमर सुना है गीतवा चरावती से निशान सिंह चुबा के नाम, ओकर पत्नी, ओकर बेटा, बेटी, दामाद और सब चुबा परिवार के नाम लिस्काजी रह उमा जगन्नायक लिस्काजी से, ओकर बेटी दृष्टि, दामाद और सब बहादुर परिवार खातिर है गीत वंदना हमर सुना। चलो एक साथ सुने।

रात की 10:05 होता है। रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर भोजपुरी तर का प्रोग्राम चलता और मनोरंजन के साथ साथ हमने तो लोग ढेर चीज बताए रहा सभी कार्यक्रम में। और आज बता सकी भाजी खाए के कौन लाभ है, तो भाजी खाए के स्वास्थ्य खातिर बहुत लाभदायक है, करके विटामिन बा, मिनरल बा, फाइबर बा और कई पौष्टिक तत्व बा। और भाजी जो है खेबा तो शरीर के ताकतवर बनावेला, ओकर में आयन बा, कैल्शियम बा, विटामिन बी बा, पाचन अच्छा रहेगा, यानी कि डाइजेशन सिस्टम तो और अच्छा बनेगा भाजी खेला से। और देर को जब भाजी खा रहा तो बार खूब लंबा घनघोर काला होला, लंबा बार खातिर भा

आजी खाइए जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता जिन हम के इम्यून सिस्टम के ये अच्छा करेला भाजी दिल स्वस्थ रहेला और त्वचा और बाल अच्छा रहेला भाजी खाइला से वजन संतुलित में रहेला और आँख के लिए भी भाजी खाइला बहुत फायदेमंद है। ढेर लड़का लोग दिखी रहा सके वो लोग चश्मा पहनेला आँख से निमन से नहीं रखेला तब भाजी खाइबा तो और आँख हमेशा स्वस्थ रही। तो अनेक प्रकार की भाजी बा पालक के भाजी मेथी के भाजी लौकी के भाजी गाजर के भाजी पत्ता गोभी टमाटर और मोरिस में तो जानी रह सके ब्रेड सुसु बा और ब्रेड नेशनल तद निमन से बिलौजे करके पका दे बा भाजी बहुन दे बा तब सब कोई खा ले प्यार से। और जैसे कि बोली भाजी में ढेर तत्व बा है भाजी कोनो भी से मतलब समझ जाए का वो चाहे फजीर के हो 12 बजे या रात के डिनर में पर भाजी एक जो है लड़का लोग को भी नई खुशी रह रखा है कि जानी ना सर पर हमने बड़ा आदमी से लड़का लोग को छा बताया कि भाजी खेबा तो तुम्हार बार लंबा हो तुम्हारा तो आँख अच्छा रही डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा अच्छा रही ठीक बा। तो ऐसे में चलो सुनब जगला गीत कृषि के गावल है बहुत ही प्यारा सन गाना चमेली बेटी जी हाँ बहुत प्यार से और गीत चलावती इस विमला के नाम विमला के घर वाला और कर दुगो लड़का खातिर संजय बिहारी गीत तोरो नाम तोर पत्नी सुरेखा तोर बेटा कुशल बहू बेटी रिंकू दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम सुनन चिटंकी गीत तोरो खातिर तोर बेटी दामाद और तोर सब परिवार के नाम।

सुनवा कौन मोबिलेट फोबिलेट बोला था वा आज हम तोरा रेगिलेट किया।

अगला प्रोग्राम सुनहरे पल बर्बाद रात के 12 बजे से कल फजित के 6 बजे सुन बर्दा नॉन स्टॉप मित्राने हमने की तुलों की मुलाकात हो बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही बहु चोरी तरका तारीख मुलाकात तक हमने की इजाजत दा और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुनहरे पल AM2 यानी कि रेडियो मॉरिशस पर। बस जिंदगी अपनी रफ्तार अपनी गति के साथ चलती जा रही है और हमने भी तो कदम से कदम मिला ही लिया है। कदम से कदम मिलाते हुए बस संगीत का दामन ना छोड़ने की कसम खाते हुए चल रहे हैं संगीत की दुनिया की तरफ, जहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल एवरग्रीन गोल्डन सॉन्ग्स गोल्डन ईरा से। तो बस इंतज़ार किस बात का, हम और आप रहेंगे हम सफ़र, इस सफ़र में चलेगा मिडनाइट तक।

0: कहते हैं कि संगीत सिर्फ कान तक नहीं पहुंचता, ये सीधे दिल से बात करता है। कभी पुराना गाना हमें बचपन में ले जाता है, तो कभी कोई धुन किसी अपने की याद दिला देती है। म्यूजिक वो साथी है जो बिना सवाल किए साथ निभाता है। तो आवाज बढ़ाइए और दिल को गुनगुनाने दीजिए।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: कहते हैं कि जिंदगी में रफ्तार जरूरी है। इंसान जो रुक गया, बैठ गया, टूट कर बिखर गया, वो जिंदगी जीना भूल गया। इसे जरूरी है कि खुद को समेटे, पुरानी गलतियों से सबक ले और निकल पड़े। हाँ, जिंदगी में थोड़ी रफ्तार जरूरी है, लेकिन सुकून उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर वक्त भागते कहाँ रहेंगे, तो थोड़ा सा रुक कर इन गानों को एंजॉय कीजिए। खूबसूरत पल जो पीछे छूट गए हैं, उनको फिर से समेट लें। कभी रुक कर आसमान भी देख लीजिए, चांद आज भी उतना ही खूबसूरत है और तारे यूं ही टिमटिमा रहे हैं।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: कहते हैं कि अपने की जो प्रार्थना होती है और ये जो पुराने गाने होते हैं, दोनों जो होते हैं इंसान की ज़िंदगी में सुकून भर देते हैं। जब दुनिया थका देती है तो यही चीज़ें दिल को संभालते हैं। अपने जो हैं आसपास उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि और कुछ नहीं, यही असली खजाना, यही असली दौलत है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: बस बातों ही बातों में पहुंच गए कार्यक्रम की समाप्ति की ओर और एक बार फिर से आपसे इजाजत चाहूंगा, एक बार फिर से फिर वापस लौट कर आऊंगा सुनहरे पलों के साथ, इन्हीं गानों के साथ, और ये आपका हमारा जो म्यूजिकल कनेक्शन है यही बना रहेगा। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: क्या ठुमका
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस

You're listening RM Free Radio.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: गे ऑन टैक, नाउ टैक।

0: पिला दिया।
1: अरे तो क्या कोई चोरी किया?
0: नहीं दादा।
1: कोई डाका डाला?
0: नहीं दादा।
1: कोई खून किया?
0: नहीं दादा।
1: तो फिर शराब में बुराई क्या? हाँ, ये क्यों हराम है?

0: अरे छोटे
1: आ दादा,
0: देख जैसे ये रेलगाड़ी चली जा रही ना,
1: हाँ दादा,
0: हमारी जिंदगी का सफर भी यूं ही चला जा रहा है, समझा?